0: आवाज नहीं आई।
1: जय माता दी,
0: मिलके बोलो।

0: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
1: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
0: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
1: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
0: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
2: मुरादाबाद से
0: संपर्क कीजिए।
1: नियम और शर्तें लागू।

जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सांसें सही, जिंदगी सही।

0: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।
1: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
2: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
1: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
2: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
1: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
3: मुरादाबाद
1: से संपर्क कीजिए।
2: नियम और शर्तें लागू।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: सलाह। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लवप्रीत सिंह ने भारत्तोलन में रजत और सीमा कालीरमना ने डिस्कस थ्रो कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। संसद के लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया गया है। राज्यसभा ने इसे कल मंजूरी दी। लोकसभा से ये विधेयक बुधवार को पारित हुआ था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विधेयक पर चर्चा के लिए 7 घंटे का समय दिया। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और उनकी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान शामिल है। मामलों के शीघ्र निपटान के लिए राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन विशेष त्वरित अदालतें स्थापित करेंगे। मामले की छानबीन पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के अंदर पूरी करनी होगी। आरोप पत्र दाखिल करने के 3 महीने के अंदर सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए। सदन में विधेयक पेश करते हुए डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों और युवाओं के हित रक्षा के लिए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता की पुष्टि करता है।
1: प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉस्ट नो टाइम।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने बिना समय गवाए घोषणा की है कि छात्रों के भविष्य को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए वर्ष 2024 के अधिनियम में संशोधन करने वाला ये विधेयक लाया है ताकि इसे अधिक कठोर और प्रभावी बनाया जा सके।
1: इन ऑर्डर टू मेक इट मोर स्ट्रिंजेंट मोर डिटरेंट इज बीइंग ब्रॉट इन।
0: चर्चा की शुरुआत में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार ने नए विधेयक में केवल दिखावे के लिए बदलाव किए हैं।
3: ज्यादा जुर्माना, कड़ी सजा, स्पेशल टास्क फोर्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जैसे प्रावधान आपने इसमें रखा है, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन ये जो मजबूत कानून लाने के लिए हमने 2024 में ही इसकी मांग रखी थी, लेकिन तब आपने हमारी इस बात को नहीं माना।
0: वहीं जनता दल यूनाइटेड के संजय कुमार झा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने मेडिकल शिक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की है। विधेयक का समर्थन करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल ने विरोध प्रदर्शन के लोकतांत्रिक अधिकार का समर्थन किया, लेकिन प्रदर्शन के दौरान इस्तेमाल की गई भाषा पर सवाल उठाए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि नीट परीक्षा सभी विद्यार्थियों को शामिल होने का मौका देती है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को बेहतर प्रदर्शन करके देखना प्रेरक है। उन्होंने विपक्ष पर युवाओं को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। आज सदन की कार्यवाही 11 बजे फिर शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विधेयक का स्वागत करते हुए कहा कि इससे परीक्षा प्रणाली और सशक्त होगी। सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक की समस्या को ध्यान में रखते हुए संसद ने कड़े कानूनी प्रावधानों के साथ विधेयक पारित किया है।
4: पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सबको ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा।
0: इससे पहले संसद ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
5: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने पश्चिम एशिया के प्रमुख जलमार्गों में नौवहन सुरक्षा के लिए समुद्री रक्षा गठबंधन बनाया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस बारे में विचार विमर्श के लिए रियाद में संबंधित देशों के सैन्य अधिकारियों की बैठक के बाद ये घोषणा की गई।
2: संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि इस सुरक्षा गठबंधन का उद्देश्य लगातार बढ़ रही समुद्री चुनौतियों से निपटना है। यह तालमेल समुद्री सहयोग, मुक्त नौवहन तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग और ऊर्जा आपूर्ति स्रोत सुरक्षित करने की रूपरेखा तय करेगा। यह गठबंधन अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रावधानों के अनुरूप बाबल मंदीप जलडमरो मध्य, लाल सागर और अदन की खाड़ी में साझा समुद्री हितों की सुरक्षा उपायों का हिस्सा है। सदस्य देशों ने कहा कि यह गठबंधन किसी भी देश गठजोड़ या अंतर्राष्ट्रीय गठजोड़ को लक्षित करके नहीं बनाया गया है, बल्कि पूरी तरह रक्षात्मक उद्देश्य के लिए है। इसकी समस्त गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुपालन में होंगी तथा किसी भी देश की संप्रभुता और नौवहन स्वतंत्रता का सम्मान करेगी। सदस्य देशों में सऊदी अरब को गठबंधन का नेतृत्व सौंपने और स्थायी मुख्यालय बनाने की सहमति बनी। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गजा में हमास और अन्य सशस्त्र गुटों के पूरी तरह निरस्त्रीकरण पर बोर्ड ऑफ पीस में सहमति बन गई है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यह समझौता गजा में नई फलस्तीनी सरकार के शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इस समझौते से इसराइल को भी जरूरी सुरक्षा मिलेगी, क्योंकि गजा का इस्तेमाल आतंकी हमलों के ठिकाने के रूप में नहीं होगा। हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गजा में पूरी तरह निरस्त्रीकरण की योजना पर सहमति बनी है और जल्द आधिकारिक वक्तव्य जारी किया जाएगा। अभी इस समझौते पर इसराइल की प्रतिक्रिया नहीं आई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। स्थानीय अधिकारी अब महिला प्रदर्शनकारियों को निशाना बना रहे हैं। विश्लेषकों का दावा है कि प्रदर्शन शुरू होने के बाद से 125 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति ने संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों संगठनों और लोकतांत्रिक सरकारों से हस्तक्षेप करने की अपील की है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में गुजरात के व्यापक क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। और ब्यूरो के साथ है हमारी संवाददाता।
3: मौसम विभाग ने आज मध्य और दक्षिण गुजरात के 13 जिलों में अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जिनमें अहमदाबाद, आनंद, सूरत, नवसारी और वलसाड़ जैसे जिले शामिल है। सभी उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीमें पूरी तरह से मुस्तैद है। एहतियात के तौर पर अहमदाबाद, नवसारी, भरूच सहित कई प्रभावित जिलों में आज स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। इस बीच राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को निचले और बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को तेजी से शेल्टर होम में अंतरित करने के सख्त निर्देश दिए हैं। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: वहीं केरलम से हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि समुद्र में मछली पकड़ने पर लगी रोक आज आधी रात से हटा ली जाएगी। समग्र राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी शहीद उधम सिंह के 87वीं शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी क्रांतिकारी उधम सिंह के शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में उधम सिंह को अप्रतिम साहस और शौर्य का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि उधम सिंह ने लंदन में माइकल ओडायर को मौत के घाट उतारकर जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लिया और ब्रिटिश सरकार को कड़ा संदेश दिया। आज उपन्यास और कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती है। साहित्य में मुंशी प्रेमचंद का स्थान अप्रतिम है। उन्होंने गोदान, गबन और रंगभूमि जैसी कालजयी कृतियों की रचना की। गृहमंत्री अमित शाह ने उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि इस महान कथाकार ने समाज की पीड़ा, असमानता और शोषण को शब्द दिया। और अब बात खेलों की करते हैं। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में कल रात भारतीय भारोत्तोलक लवप्रीत सिंह ने पुरुषों को 110 किलोग्राम वर्ग में रिकॉर्ड के साथ रजत पदक जीता, जबकि सीमा कलीरामना ने महिला डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक हासिल किया। इसके अलावा दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा समेत तीन भारतीय भी भाला फेंक के फाइनल में पहुंचे, जबकि ट्रिपल जंपर्स के दो भारतीय खिलाड़ी प्रवीण चित्रवेल और सेल्वा प्रभु थिरुमारन ने भी फाइनल में जगह बनाई। वरिष्ठ भारतीय बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने तत्काल प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। श्री रहाणे ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि संन्यास लेने का ये सही समय है।
4: The reality of life is that everything has a beginning.
5: जिंदगी की सच्चाई यही है कि हर चीज की शुरुआत होती है और उसका अंत भी होता है, और जब वो समय आता है तो आपको बस उसका सम्मान करना होता है और आगे बढ़ना होता है। मैंने अपनी बैटिंग में हमेशा टाइमिंग पर भरोसा किया है और हमेशा इसके महत्व को समझा है। मुझे लगता है कि अब आगे बढ़ने और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का सही समय है।
1: अजरबैजान के बाकू में कल अंडर 17 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान निकिता सहरावत ने रजत पदक जीता, जबकि कामना बाबुल और गरिमा ने महिला वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किए। 135वीं डूरंड कप प्रतियोगिता आज शिलांग में शुरू हो रही है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
6: धन्यवाद फरहत। लोकसभा के बाद राज्यसभा द्वारा एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक को मंजूरी देने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी बनी है। हिंदुस्तान लिखता है, लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास, विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट। जनसत्ता के शब्द हैं, लोक परीक्षा संशोधन विधेयक को मंजूरी, राज्यसभा में सत्ता पक्ष विपक्ष में टकराव। दैनिक जागरण ने जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन में पैलेट गन इस्तेमाल किए जाने की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के शब्द प्रकाशित किए हैं। असाधारण हालत में पैलेट गन चलाने का अधिकार। लोकसत्य लिखता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा पैलेट गन के प्रयोग पर रोक नहीं, विशेष परिस्थिति में कर सकते हैं इस्तेमाल। ईरानी सेना के ठिकानों पर अमरीकी हमले, जॉर्डन में अमरीका के जेट तबाह करने का दावा, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। पत्र लिखता है, कुवैत में चीन की कंपनी की इमारत बनी निशाना, पहली बार इजिप्ट तक हुए ड्रोन अटैक। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर अमेरिका ईरान युद्ध के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, अर्थव्यवस्था के लिए बैंकों से आई अच्छी खबर। लेख में बताया गया है कि महंगाई और विश्व युद्ध जैसी स्थिति के बावजूद घरेलू खपत में कमी नहीं आई है, इससे हमारी अर्थव्यवस्था को सहारा मिल रहा है। अब पाठ्यक्रम का एक हिस्सा भारत में, अगला विदेश में पूरा कर सकेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय में सेमेस्टर अवे प्रोग्राम के विरोध के बाद कार्यकारी परिषद से मिली मंजूरी, अमर उजाला की सुर्खी है। अब किताबें पाठकों से करेंगी सीधी बातचीत, एआई ने पढ़ने का बदला अनुभव, अटके तो किताब से ही पूछिए, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को सख्त दंड और जुर्माने का प्रावधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधेयक पारित होने का स्वागत किया, कहा इससे परीक्षा प्रणाली और सशक्त होगी। सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने पश्चिम एशिया के प्रमुख समुद्री मार्गों में नौवहन सुरक्षा के लिए समुद्री रक्षा गठबंधन बनाया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में हमास और अन्य हथियारबंद गुटों के पूरी तरह निरस्त्रीकरण के लिए एक सहमति बनने की घोषणा की। गुजरात के अनेक भागों में अगले 48 घंटों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लवप्रीत सिंह ने भारोत्तोलन में रजत और सीमा कलीरामना ने डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। पार्लियामेंट पासेस पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल विद स्ट्रिक्टर पनिशमेंट फॉर पेपर लीक्स। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वेलकम्स पैसेज ऑफ द बिल, saying it will make examination system more robust. Saudi Arabia and 13 other countries announced maritime defense alliance to protect shipping in key waterways of West Asia. US President Donald Trump announces deal for complete disarmament of Hamas and other armed groups in Gaza. IMD forecasts extremely heavy rainfall in several parts of Gujarat during next 48 hours. Fishermen advise not to venture into sea till tomorrow. And weightlifter Lovepreet Singh wins silver medal at Commonwealth Games. Seema Kali Ramana bags bronze medal in discus throw. And now the news in detail. Parliament has passed the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it yesterday. The bill was passed by the Lok Sabha on Wednesday. The legislation incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of the properties of convicted offenders. To ensure the expeditious disposal of cases, the legislation mandates that every state government and union territory administration establish special fast-track courts for the day-to-day trial. Replying to the discussion on the bill in the Rajya Sabha, Minister of State for Personnel and P.

0: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: क्या मेरी कसम
0: मिस कर दिया तो रीलोड
2: चाय चाय चाय
3: बिंदास मॉर्निंग
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10
4: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
5: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
6: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
5: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

दोस्तों कहते हैं मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला है। अगर आपके अंदर ये दोनों चीज हैं तो फिर आपको किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है। हेलो हाय सुप्रभात नमस्कारम वेरी गुड मॉर्निंग। एक और नई सुबह ताजगी से भरी हुई और एक और नई ब्रांड न्यू मॉर्निंग जहां पर सब कुछ नया नया है, जहां पर सारी चीजें एकदम ब्रांड न्यू है। आज की सुबह जैसे मानो यकीनन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाले ने हमें एक और नया मौका दिया है, एक जिंदगी जीने का एक नया नायाब तोहफा दिया है। तो आज के दिन की सभी को शुभकामनाएं। और श्रोताओं आज का बहुत ही खूबसूरत दिन है। पहली बात तो आज 31 जुलाई यानी कि इस महीने का लास्ट दिन है। आज जुलाई का बिल्कुल आखिरी दिन है, जैसे मानो अभी तो शुरुआत हुई थी जुलाई की, कितनी जल्दी हम लोग जुलाई को टाटा बाय बाय कर रहे हैं। हाँ जी, फिलहाल आपको बता दें दिन की बात अगर मैं करूँ तो आज शुक्रवार का दिन है। शुक्र है कि आज शुक्रवार है। शुक्राना करना तो बनता है उन सभी दोस्तों का जो कहीं ना कहीं हमेशा मेरा इंतज़ार करते हैं और मुझे भी आपका इंतज़ार रहता है हर सुबह। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। आप जुड़ चुके हैं आपके शहर के अपने देसी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आरजे आनंद के साथ। यह है आपके शहर का अपना स्टेशन ऑफ द नेशन, दिस इज फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। लेडीज एंड जेंटलमैन, स्टेशन की घड़ी में वक्त हुआ है 8:22। और जैसे कि मैंने आज के विचार से बड़ी खूबसूरत शुरुआत करी कि मौन रहना एक साधना है, सोच समझ कर बोलना एक कला है, अगर ये दोनों चीज आपके अंदर है तो यकीन मानिए जिंदगी जीने का तो ओए होए वाला मजा हो जाएगा। चलिए श्रोताओं शुरू हो गया है यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया सा डोज वाला सफरनामा। हाँ जी, यहाँ पर जो डोज है ना, ये डोज मैं आपको 10 बजे तक देता रहूँगा। अच्छी एंटरटेनमेंट की डोज, अच्छी बातों की डोज, अच्छे गानों की डोज, एवरीथिंग सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा ना मेरे साथ इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। अगर आप भी आज की सुबह मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, अपने हालचाल मुझ तक पहुँचाना चाहते हैं या फिर मेरे हालचाल जानना चाहते हैं, बिल्कुल जान सकते हैं जी 9837896896 पर व्हाट्सएप करके। हाँ जी, तो जुड़ जाइए मेरे साथ। एक बहुत ही प्यारा नॉस्टैल्जिया वाला गाना, ये गाना मिलेनियल्स को काफ़ी पसंद होगा एंड आई एम श्योर फ्लैश बैक में ले जाएगा ये गाना सुबह सुबह। बहुत ही खूबसूरत ट्रैक। जिंदगी का सफर हर दिन ऐसे ही हंसते बीते खुशियों के साथ अगर गुजरे तो फिर और जिंदगी के बारे में क्या ही कहना है ना। जब अपने परिवार का साथ हो, अपने प्यार का साथ हो तो जिंदगी और खूबसूरत हो जाती है। एक खूबसूरत ट्रैक निकल गया है आपके रेडियो सेट पे कुमार शानू और अलका याग्निक जी की आवाजों में। बहुत ही बेहतरीन ट्रैक, यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से। चलिए एंजॉय करते हैं, लौट कर आएंगे जरा सी देर में। गुड मॉर्निंग।

0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
1: मॉर्निंग। जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।
2: कोई मिल गया,
3: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने, बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: बिल्कुल जी,
1: हम भी तो आपके प्यारे दोस्त हैं, हम भी तो आपके प्यारे साथी हैं सफर के। जब भी हमेशा रेडियो पर आते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा आपके लिए लेकर आते हैं। हमेशा कोशिश होती है कुछ अच्छे गाने और कुछ अच्छी बातों से सफर की शुरुआत हो। श्रोताओं, 8:37 हो गए हैं, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz पे आनंद को। और चलिए बात कर लेते हैं आज के दिन के बारे में। आज 31 जुलाई हो गई है, यानी आज 31 जुलाई की तारीख हो गई है। श्रोताओं, ये तारीख क्यों महत्वपूर्ण है? हर दिन का इतिहास बहुत खास माना जाता है और आज का दिन क्यों खास है, इस पे हम ज़रूर बताएंगे आपको, इस पे हम ज़रूर चर्चा करेंगे। बिकॉज हर दिन हमारे लिए कुछ ना कुछ स्पेशल लेकर आता है इतिहास का पन्ना और हमें बहुत कुछ सीखने को जानने को मिलता है। श्रोताओं, आपको बता दें आज के दिन 1995 में भारत में पहली बार मोबाइल फ़ोन पर बात हुई, जो पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति वसु ने केंद्रीय मंत्री सुखराम से की थी। श्रोताओं, वो आज के दिन हुई थी। हाँ जी, सन 1995 को ये हुई थी। श्रोताओं, और आपको बता दें सन 1980 में हिंदी और उर्दू के महान उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म वाराणसी में श्रोताओं आज ही के दिन हुआ था। इसके अलावा आपको बताते चलें, आज का दिन

इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि आज मोहम्मद रफ़ी साहब की पुण्यतिथि हम मनाते हैं। जी हाँ, आज का दिन था जब 1980 में 31 जुलाई को भारत के महान पार्श्व गायक मोहम्मद रफ़ी जी का निधन हुआ और उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कहा। एक ऐसी आवाज़ जो ना होकर भी हमारे दिलों में और हमारे जहन में हमेशा गूंजती रहती है और हमेशा गूंजती भी रहेगी। श्रोताओं, आपको बता दें, सन 1940 में आज ही के दिन महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह जी को लंदन में फांसी दी गई थी आज ही के दिन। श्रोताओं,

तो श्रोताओं, ये आज के दिन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपके साथ साझा कर रहे थे इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जहां ढेर सारी बातें सुनते हैं और क्या कुछ खास रहता है ये भी हम आपको डेफिनेटली बताते हैं। आपको बता दें, 1998 में सार्क का 10वां शिखर सम्मेलन श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में जो है संपन्न हुआ था आज ही के दिन। और श्रोताओं, एक और खास चीज आपको बताते चलें, आज ही के दिन श्रीजा जी का जन्म हुआ, जो भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं 1998 में। और आज ही के दिन 1947 में मुमताज, जो प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं, उनका भी आज ही के दिन जन्म हुआ था श्रोताओं। तो ये थी आज के दिन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो हम आपके साथ साझा कर रहे थे। और क्या स्पेशल है आज की तारीख में, ये भी हम आपको ज़रूर बताएंगे थोड़ी देर में। लेकिन आप भी हमें अपने प्यारे प्यारे संदेश ज़रूर पहुंचा सकते हैं मैसेज के माध्यम से या टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से 9837896896 के माध्यम से। वैसे तमाम सारे संदेश मेरे पास पहुँच रहे हैं लगातार, उनको हम ज़रूर शामिल करेंगे। बहुत सारे श्रोताओं ने अपने वॉइस नोट भी साझा किए हैं, तो मैं ज़रूर उनको आप तक पहुँचाऊँगा। बस आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, अभी लौट कर आते हैं खूबसूरत गीत के बाद। वक्त हो गया है एक खूबसूरत ट्रैक का, इसके बाद वापस लौट कर आएंगे, फिर आपसे बातचीत करेंगे और आपके संदेश को भी शामिल करेंगे। आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, ये है आपके शहर का अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन एफ एम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। आप सुनते हैं मंडे टू सैटरडे आपका मॉर्निंग मैगजीन शो। अगर आप कोई संदेश देना चाहते हैं, कोई अपडेट देना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 9837896896 पर। चलिए ये खूबसूरत गीत सुनते हुए आगे बढ़ते हैं। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे ITM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद
2: NAC द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक
1: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में
2: चाहे फार्मेसी हो मैनेजमेंट कंप्यूटर इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी लॉ एग्रीकल्चर साइंस एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई
1: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी
2: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट
3: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077
4: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद कॉल 7055011681
5: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग

0: सच में यार ये गाने सुन के ना मतलब कौन बंदा नहीं होगा जो एकदम फीलिंग उसकी ग्लैड नहीं होगी, बिकॉज एकदम वो वापस से पुराना टाइम याद आ जाता है ये गाने सुन के। और सच में ये वो गाने जो हमेशा ना ओल्ड इज गोल्ड वाली कैटेगरी में आने वाले, मतलब एवर ग्रीन ट्रैक है यार। वेरी गुड मॉर्निंग, आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को, लेडीज एंड जेंटलमैन वेलकम बैक है। 8:51 का समय हो रहा है भाई। ढेर सारे श्रोता साथी मेरे साथ जुड़ चुके हैं आज की सुबह, और एक एक करके आइए जरा सबका नंबर लगाते हैं। आई मीन टू से कि सबके वॉइस नोट को यहाँ पर फटाफट सुन लेते हैं, कौन कहाँ से जुड़े हैं।
1: समंदर सारे शराब होते सोचो कितना बवाल होता, हकीकत सारे ख्वाब होते तो सोचो कितना बवाल होता, किसी के दिल में क्या छुपा है ये बस खुदा ही जानता है, दिल अगर बेनकाब होते तो सोचो कितना बवाल होता। थी खामोशी हमारी फितरत में तभी तो बरसों निभ गई लोगों से, अगर मुंह में हमारे जबान होती तो सोचो कितना बवाल होता। हम तो अच्छे थे पर लोगों की नज़र में सदा बुरे ही रहे, हम तो अच्छे थे पर लोगों की नज़र में सदा बुरे ही रहे, कहीं हम सच में खराब होते तो सोचो कितना बवाल होता। सुप्रभात, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम, मैं आपका दोस्त कुलदीप गुप्ता उदौली बाराबंकी उत्तर प्रदेश से, और आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहो, गुनगुनाते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। ओके, धन्यवाद।
0: थैंक यू कुलदीप साहब, बहुत ही अच्छा आप बोलते हैं, मजा आ जाता है, मतलब आपकी बात सुन के ना एकदम फीलिंग ग्लैड वाली हो जाती है। थैंक यू सो मच, जरा इनको भी सुन लेते हैं। हां जी,
2: नमस्कार। राधे राधे, कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे। सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज। सावन चल रहा है, सावन का पवित्र मास, और इस मास की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोलेनाथ की कृपा आप पर बरसती रहे, सदा आपका कल्याण होता रहे। मैं आपका दोस्त भूपी शर्मा नगर पंचायत पागबड़ा से बोल रहा हूँ। आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ, और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए आज फिर से एक सुविचार। तो उन छवियों के जिम्मेदार नहीं हो जो दूसरों के दिमाग में तुम्हारे लिए बनी हुई है। स्वयं के जीवन में अगर हम दूसरों की सफलता को स्वीकार नहीं करते तो वो ईर्ष्या बन जाती है, और अगर स्वीकार कर लें तो वो प्रेरणा बन जाती है। जी हाँ, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद जो देता है आपको विभिन्न जानकारियाँ, और प्रोग्राम है बिंदास मॉर्निंग जो भरा पड़ा है जानकारियों के पिटारे से। सुनते रहिए FM मुरादाबाद आरजे आनंद के साथ, और सुनते रहिए अच्छे अच्छे सॉन्ग, अच्छे अच्छे जानकारियाँ आरजे आनंद के साथ। प्रोग्राम बिंदास मॉर्निंग, और मैं आपका दोस्त भूपी शर्मा नगर पंचायत पागबड़ा से। नंबर 98-398-96-96, इसी पर आप भेज सकते हैं कोई भी जानकारी या कोई भी मैसेज। नमस्कार।
0: थैंक यू भूपी जी, आपको भी नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। देखिए ढेर सारे अपने वॉइस नोट हमारे लिसनर्स हमें पहुंचा रहे हैं। हाय, गुड मॉर्निंग, कैसे हाल चाल है आनंद जी? माय नेम इज प्रेरणा। गुड मॉर्निंग प्रेरणा जी, थैंक यू वेरी मच, हमारे साथ आप जुड़ रही हैं। लिखती हैं सुबह सुबह आपके लिसनर बड़े एक्टिव हो जाते हैं, हम तो वॉइस नोट भेज ही नहीं पाते हैं, इसी सोच में पड़े रह जाते हैं कि यार पता नहीं कैसी आवाज़ जाएगी। मैम यही तो मैं कहता हूँ कि सोचना नहीं है, सुबह सुबह का टाइम है, जुम्मे का दिन है, इतना प्यारा सा ये माहौल है यहाँ पर, तो मैंने सोचा इस माहौल को थोड़ा और कूल बनाते हैं। जुम्मे का दिन, ये गाने ना पक्का फ्लैशबैक में ले जाएगा बॉस आपको।

चलो भाई अब गाना चली गया है, माहौल बनी गया है, तो इसी को सुन लेते हैं, लौट कर आता हूँ उसके बाद में कुछ खास चीजों पे डिस्कस करना है आज की सुबह। जरा सी देर में मैं आता हूँ, आई विल बी राइट बैक। आप कहीं मत जाओ, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाओ। अगर आप भी कोई वॉइस नोट पहुंचाना चाहते हैं तो बिल्कुल मुझे पहुंचा सकते हैं 9837896896 पर। चमन लाल साहब जुड़ चुके हैं पुतली घर रोड से, लिखते हैं आनंद जी गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ सर। ये मुरादाबाद यूपी से रणवीर सिंह जेठालाल लिखते हैं, हेलो आनंद जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। साथ में हमारे पास मैसेज पहुंचा है, हाय गुड मॉर्निंग, माय नेम इज शुभी, गुड मॉर्निंग शुभी। रिहाना जुड़ी है रानी नांगल से, गुड मॉर्निंग पहुंचाती हैं। एंड साथ ही साथ हर हर महादेव पहुंचा रहे हैं बबलू सैनी मुंबई महाराष्ट्र से।

0: Hey, you're tuned into FM Moradabad 89.6 FM.
1: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
2: कहा मेरी कसम?
1: मिस कर दिया तो रीलोड.
3: चाय चाय चाय.
4: बिंदास मॉर्निंग.
1: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10.
5: स्किन एलर्जी मस्त से नाखून बालों की समस्या टैटू हटाना कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद 7983153386.
6: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो.
7: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है.
6: पर पापा.
7: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया.
8: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती. सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है. ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है. गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें. अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं. सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए. सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए अपनों के लिए. ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम. सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद. We'll be right back.

वेलकम बैक। एक बार फिर से आपने ट्यून इन किया है एफएम मुरादाबाद 89.6। देखिए 9 बज चुके हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, इनफैक्ट 9:03 हो गए। 31 जुलाई की सुबह है, फ्राइडे मॉर्निंग में आप सभी को जुमा मुबारक हो, बहुत ही प्यारा दिन। और आपको फटाफट से बता दें भैया, देखिए LPG बैंक से तत्काल रेल टिकट, ये कुछ चीज़ें हैं जिन पर जो है एक अगस्त से चेंज होने की बात हो रही है। और कल टुमारो बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली हैं, बहुत सारे लोगों की जेब पर डेफिनेटली फ़र्क पड़ने वाला है। सो कौन कौन सी चीज़ें, कल भी मैंने कुछ चीज़ों में आपके साथ जो है डिस्कस किया था कि भैया ये चीज़ें चेंज हो रही हैं 1 अगस्त से। और स्पेशली अगर आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आपने कहीं जाने का प्लान किया है तो 1 अगस्त को ये भी चेंज हो जाएगा। एग्जैक्टली फटाफट से बात कर लेते हैं LPG सिलेंडर के दामों की। तो भैया 1 अगस्त को LPG सिलेंडरों की नई कीमतें जारी होंगी। पिछले महीने 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर जो है थोड़ा सा उस पर कुछ पैसे जो है घटे थे, जबकि जो 14 किलो वाले सिलेंडर थे उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया था, लेकिन कल में भी हो सकता है थोड़े से चेंज हो जाए। साथ ही साथ बैंकिंग नियमों में भी थोड़ा सा चेंज बदलाव जो है लाने की बात की जा रही है। 1 अगस्त से कुछ बैंक अपनी सेवाओं में शुल्क में थोड़ा सा जो है बदलाव करने वाले हैं, और कुछ फाइनेंस बैंक SMS अलर्ट एंड 30 पैसा प्रति SMS चार्ज भी लगेगा। वहीं बैंक में भी सर्विस चार्ज में कुछ बदलाव हो सकते हैं, ये कल टुमारो पता चलेगा। तत्काल टिकट के कुछ नियम बदलेंगे। जी हाँ, आपको बता देंगे, अगर आप 1 अगस्त से रेल तत्काल टिकट बुकिंग प्रक्रिया में जो है अगर आपको इसके बारे में पता है तो मैं आपको बता रहा हूं कि कल हो सकता है इसमें भी थोड़ा सा चेंज किया जा सकता है। जी हाँ, इसके तहत अब टोकन देने के समय, तत्काल टिकट बुकिंग शुरू होने के समय, साथ ही जिससे कि रिजर्वेशन काउंटर पर भीड़ कम हो और आपको उससे काफी हेल्प मिलेगी। मतलब कल जो ये है रेलवे के भी कुछ कुछ चीजें चेंज होने वाली, स्पेशली तत्काल टिकट के नियमों में थोड़ा सा बदलाव किया जा सकता है कल। तो देखो बहुत सारी चीज़ें जो है कल बदलने वाली है। GST के कुछ नए रूल्स जो है बताए जा रहे हैं कि वो कल से लागू हो सकते हैं। एंड इसके साथ ही साथ ETF में कुछ नए रेट्स भी कल आ सकते हैं। तो कल 1 अगस्त को बहुत सारे बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, उसके लिए बस कान ऐसे ही लगा के रखिए, मैं आपको अपडेट देता रहूंगा इस स्टेशन ऑफ द नेशन पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अभी बात कर लेते हैं उस चीज़ के बारे में जिसके बारे में मुझे डिस्कस करना डेफिनेटली बनता है, लेकिन उससे पहले वेदर अपडेट आपको बता देता हूँ। बताया जा रहा है यूपी में अगले 24 घंटों में फिर से जो है बादल बरसेंगे और इससे उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। जैसे कल थोड़ी देर के लिए बारिश आई, शाम को अप्रोक्सीमेट 3:30-4 बजे के आसपास वेदर पूरी तरह चेंज हो गया था भाई, लेकिन आज का वेदर भी ठीक ठाक ही हो रहा है यार। 2 अगस्त को जो है मानसून बताया जा रहा है, यानी कि कल और परसों बारिश रहने वाली है अपने उत्तर प्रदेश में। अगले 24 घंटों में जो है बादल बरस सकते हैं, कभी भी मौसम करवट ले सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अभी कुछ और ऐसी लेटेस्ट खबरें हैं जो आप तक पहुंचती देंगी। देश दुनिया में क्या चल रहा है, बॉलीवुड की दुनिया में क्या चल रहा है, सारी अपडेट आपको मिलेंगी ना इसी स्टेशन पे। मुरादाबाद की गलियों में क्या हो रहा है ये भी तो आपको पता लगेगा सिर्फ और सिर्फ RJ आनंद के साथ। अच्छा, आपको बताए ना, कई बारी हमारे जो हम इंडियंस फैमिली है, हमारे घरों में बड़े सारे फंडे मान्यताओं को बड़ी इंपॉर्टेंट दी जाती है। फॉर एग्जांपल, कढ़ाई में मत खाना खाओ भाई, बारिश हो जाएगी, घर में चप्पल उल्टी होगी तो झगड़ा हो जाता है, किसी ने कोई कहीं जा रहा है और किसी ने अचानक से छींक दिया तो ये बड़ा अपशगुन मान लेते हैं, बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो इसको भी अपशगुन मानते हैं लोग। मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे घरों में बड़े टाइम से ना फॉलो होती आ रही है और लोग बिलीव भी करते हैं, मतलब बहुत हार्डकोरली बिलीवेबल हैं लोग इसमें, जो बहुत बिलीव करते हैं, बहुत ज़्यादा मानते हैं इन मान्यताओं को। आपके टाइम में कोई ऐसी चीज़ थी, या अगर आपको लगता है कि हाँ यार आज भी हमारे यहाँ ये चीज़ फॉलो होती है, या हमारे टाइम में मैंने भी आनंद ये चीज़ सुनी है, तो ज़रा मुझे बताओ मैसेज करके 9837896896। ये वाला तो मैंने बहुत सुना है भाई, कढ़ाई में जो खाना खाता है उसकी शादी में बारिश होती है, दवा के झमाझम वाली बारिश हो जाती है, एकदम से ना बारिश पड़ जाती है। एंड ये भी मैंने सुना है कि चप्पल अगर उल्टी करते हैं तो इससे आपके जो है लड़ाइयाँ हो जाती हैं। अब आई डोंट नो, और भी बहुत सारे ऐसे मिथ्स होंगे जिस पे बात करना तो बनता है आज की सुबह। तो आप मुझे बता सकते हैं मैसेज करके 9837896896 पे, व्हाट्सएप करके आप मुझे ज़रा बताओ यार जो मैं पूछ रहा हूँ आज की सुबह क्या लगता है। आप ज़रा मुझे व्हाट्सएप करो, आपके यहाँ पर कोई ऐसा फंडा फॉलो होता था पहले, आपके टाइम में कुछ ऐसा हुआ हो, या अभी भी आपके घर में कुछ ऐसा फॉलो होता है, या आपके आसपास में आप देखते हो, या आप खुद बिलीव करते हो इन चीज़ों में, क्या कहना है आपका बताओ ज़रा मैसेज करके। मैं मिलता हूँ थोड़ी सी देर में। गुड मॉर्निंग।

0: क्या बात है, इतने बढ़िया गाने आप सुनते हो, क्या बात है। किसके साथ? आनंद के साथ। चलो यार आगे बढ़ते हैं, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। 9:15 का समय हो रहा है स्टेशन की घड़ी में। देखो यार ये जो समय है ना बहुत तेजी से भागता है, लेकिन हम भी भाई समय के साथ चलते हैं मेरे दोस्त।
1: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM।
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705-07-0552।
4: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
5: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
4: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
6: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
4: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
7: तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। मिला
6: अरे तो भाई गुस्सा क्यों होते हो, यहाँ इंसाफ भी मिलेगा और एंटरटेनमेंट भी, क्योंकि आप सुन रहे हैं आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, जो कहता है रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और दिल से कहिए जियो बिंदास।
0: ये फ्राइडे की सुबह है और दिल से बिल्कुल बिंदास कहना जरूरी है। आप बिंदास मॉर्निंग जो सुन रहे हैं, वेलकम बैक है। ढेर सारे संदेशों के बीच मेरी यहाँ पर एंट्री हो गई है और अभी जरा काम की बात कर लेते हैं। भाई देखो अभी जो है ना, मैं आपको कल भी बता रहा था, मैं डेली आपको बताता रहता हूँ कि भैया देखो अब सावन का जो पवित्र महीना है वो शुरू हो गया है, और ऐसे में जो है बहुत सारे रूट जो है वो डायवर्जन किए जा रहे हैं। स्पेशली कल की अगर मैं बात करूँ तो कल से दिल्ली हाईवे पर रहेगा रूट डायवर्जन। हाँ जी, और ये बहुत ही बड़ी अपडेट मैं आपको फटाफट से दे देता हूँ। आप सभी को बताया भैया, कांवड़ यात्री जो है वो बिल्कुल किसी भी चीज के शिकार ना हो और उनके लिए सारी चीजें बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से चलती रहे, उसी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी चीजें की जा रही हैं। और आपको बता दें हर रविवार को रहेगा जीरो ट्रैफिक, सोमवार तक नेशनल हाईवे की दोनों लाइनों पर चलेंगे कांवड़िए। हाँ जी, तो भैया देखो हम आपको बता रहे हैं कल जो है आपके किसी भी वाहन की एंट्री नहीं होने वाली, कल से जो है पूरी तरीके से रोक लगा दी जाएगी। स्पेशली दिल्ली हाईवे की मैं बात कर रहा हूँ, तो अब आपको बताया ना ट्रैफिक जो है अब जीरो ट्रैफिक होने वाला है, क्योंकि देखो यार ऐसे में जो है श्रद्धालु निकलेंगे जल भरने के लिए, उधर से निकलेंगे फिर कांवड़ लेकर आएंगे, तो ऐसे में बहुत सारी बातों का जो है ख्याल रखा जा रहा है। तो आपको बता दें भाई साहब बहुत सारी चीजों का ध्यान रखा गया है और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से जो है चीजों को मेंटेन किया जा रहा है। मैंने कल आपको वाइट भी सुनवाई थी, SP ट्रैफिक सुभाष गंगवार जी ने क्या कुछ खास एडवाइस दी थी हमारे मुरादाबादी को, वो कल मैंने रिपीट किया था और आज भी मैं थोड़ा सा फिर से सुनाना चाहूंगा आपको जरूर थोड़ी देर में जब मैं लौट कर आऊंगा। तो 9:18 हो रहे हैं, ढेर सारे लिसनर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बहुत प्यारे प्यारे वॉइस नोट भी पहुंच रहे हैं मेरे पास, जरा इनको

0: सुनते हैं
1: आनंद भाई, गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग।
1: और आज आपने सवाल पूछा है,
0: हाँ
1: बड़ा ही मजेदार है।
0: हाँ जी।
1: और ये मिथ लगभग हमारे सभी घरों में, मोस्टली लोगों में होते ही हैं, घर में होते ही हैं, कि अगर ऐसा करोगे चप्पल उल्टी लड़ाइयाँ हो जाएंगी, कढ़ाई में खाओगे तो शादी में बारिश हो जाएगी। तो डेफिनेटली मेरे साथ ही हुआ था।
0: अरे बाप रे,
1: मैं शादी से पहले कढ़ाई में खाया था तो मेरी शादी में बहुत जबरदस्त बारिश हुई थी।
0: रियली, मतलब ये चीज वर्क करती है? मैं एक्चुअली यही पूछना चाह रहा हूँ, क्या सच में ये चीजें वर्क करती हैं या सिर्फ ये बनी बनाई बातें हैं? मेरा पूछने का आज जो मतलब है वो ये है, मतलब अब आपने मुझे बताया कि आपने कढ़ाई में बहुत खाना खाया तो आपकी शादी में झमाझम बारिश हो गई थी। ओह माय गॉड, इट्स अ फनी यार, बट मुझे सच में बिलीव नहीं हो रहा अभी भी कि सच में ये चीज़ें वर्क करती हैं। वैसे आपको क्या लगता है गाइज, आप भी मुझे मैसेज करके बता सकते हो। जैसे मैंने आज क्वेश्चन किया है कि यार हमारे इंडियन फैमिलीज में इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट दी जाती है कि भैया अगर आप घर से बाहर निकल रहे हो, किसी ने छींक दिया तो आपको 2 मिनट होल्ड करना है, बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो बड़ो अपशगुन उसको माना जाता है, यू नो, या फिर चप्पल घर में उल्टी होगी तो लड़ाई होने वाली है, किसी ने आपको बर्थडे विश पहले से ही कर दिया तो आपका पूरा साल खराब होने वाला, आपका बर्थडे आया नहीं, किसी ने आपको हैप्पी बर्थडे बोल दिया, तो ये तरह तरह की चीजें जो चलती हैं इसके बारे में आज मैं बात कर रहा हूं आपसे। आपको क्या लगता है आप मुझे बताओ। जैसे भाई ने बताया अमित वर्मा जी ने कि भैया वो जो है बहुत कड़ाई में खाना खाते थे लेकिन जब उनकी शादी हुई तो जबरदस्त तरीके से बारिश हो गई, एंड मुझे लगता था कि नहीं यार हवा हवाई बातें होती हैं, बट इन्होंने अपना जो एक्सपीरियंस शेयर कर दिया है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप ही मुझे बता सकते हो आप इन चीजों में बिलीव करते हो क्या, जरा बताओ मुझे। मैसेज करके बता सकते हो आप 9837896896 पे। इंतजार रहेगा हमें आपके प्यारे प्यारे संदेशों का, और ढेर सारे मैसेज मेरे पास ऑलरेडी पहुंच चुके हैं आज की सुबह। हाय, गुड मॉर्निंग आनंद, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, और आज आपने बहुत ही फनी सा क्वेश्चन पूछा है यार। मेरे यहाँ पर बहुत इस चीज को तवज्जो दी जाती है और इन चीजों में बहुत बिलीव किया जाता है। अच्छा जी, थैंक यू संजीव फॉर शेयरिंग योर ओपिनियन, एंड हेलो, हाय, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, कैसे हाल चाल है? गुड मॉर्निंग जी, ये हमीरपुर बुंदेलखंड से हमारे साथ रामशरण विश्वकर्मा जी जुड़ रहे हैं, साथ में साहिल विश्वकर्मा लिखते हैं। आनंद जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, और ये हमारे साथ जुड़े हैं रजा हुसैन साहब, जुड़ चुके हैं आज की सुबह। मयंक शर्मा जुड़ चुके हैं पीतल बस्ती से, गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं। एक बहुत ही प्यारा मैसेज मेरे पास पहुंचा है, कुछ रिश्ते मुनाफे नहीं देते मगर जिंदगी को बेहतर बना देते हैं। ओ माय गॉड, दैट्स सच अ सो ट्रू यार, बहुत अच्छी बात आपने कही है, आई अग्री विद यू। एक और मैसेज आया है, जिन्हें विरासत में सब कुछ मिलता है वो संघर्ष नहीं करते हैं, और जिन्हें जिंदगी में मेहनत करनी पड़ती है उन्हें असली चीजों का महत्व समझ आता है। हाय, मॉर्निंग मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कैसे हालचाल है? माय नेम इज श्रुति, गुड मॉर्निंग। इन्होंने लिखा है, आनंद मैं बहुत कम बिलीव करती हूँ इन चीज़ों में, लेकिन कई बार मेरी मम्मी मुझे कहती हैं कि अगर कोई चीज़ ऐसी होती है तो उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए, मैं कहीं इंपॉर्टेंट काम से जा रही हूँ और अगर बिल्ली रास्ता क्रॉस कर देती है तो। मैं तो खैर इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती हूँ टू बी ऑनेस्ट, बट मैं कभी कभी मम्मी की बात को फॉलो कर लेती हूँ। ऑलराइट, हाय, गुड मॉर्निंग, ये राजा कश्यप मेरे साथ जुड़े हैं, गुड मॉर्निंग आपको भी, वेरी गुड मॉर्निंग। ढेर सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया है, कुछ लोग कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होता है, अगर छींक आ जाती है तो ये तो एक नॉर्मल सी बात है, इंसान को अगर जुकाम होगा तो छींक आएगी यार। और किसी ने लिखा है अगर यार बिल्ली रास्ता काट रही है तो उसमें हमारा क्या लेना देना। आई एग्री विद यू, मैं खुद अग्री करता हूँ, लेकिन अभी देखो अमित जी ने खुद कहा है कि मैं कढ़ाई में खाना खाता था, मेरी शादी में बारिश हुई, तो मतलब कुछ भी हो सकता है यार।
2: बिंदास मॉर्निंग, आरजे आनंद भाई, गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग,
2: मैं मोहसिन मंसारी बनारस से।
0: जी मोहसिन जी,
2: आपके प्रोग्राम में जुड़ गया हूँ।
0: थैंक यू भाई,
2: और न्यू अपडेट के साथ जिसको जुड़ना है जुड़ जाए एफएम मुरादाबाद, यहाँ पे न्यू अपडेट आनंद भाई आपको रोजाना देते हैं और अच्छे अच्छे गाने प्ले करते हैं, तो सभी लोग एफएम मुरादाबाद सुने जो सबको दीवाना बना दे सुबह के टाइम आनंद भाई के साथ।
0: मुझे लगता है भाई साहब गाड़ी चला रहे थे और उन्होंने चलाते चलाते जो है वॉइस नोट भेज दिया, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं, और अभी कुछ और कड़क अपडेट आपको देने वाला हूँ। एक बहुत ही ब्यूटीफुल अभिनेत्री का बर्थडे हम मनाते हैं आज 31 जुलाई को, लौट कर आता हूँ उसके बाद कुछ और खास चीजें आपको बताने वाला हूँ, अपने शहर के बारे में बात करने वाला हूँ, तो आप कहीं मत जाओ। 9:23 हो गए, अपडेट्स के साथ अच्छे गाने भी हैं।

और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: आ गई।
1: यार ये गाना सुन के मैं पक्का फ्लैशबैक में पहुंच रहा हूँ। जितने भी लोग मुझे जहाँ भी आप सुन रहे हैं, ऑल द वे बेस्ट, आप जहाँ भी जा रहे हैं आप सुन रहे हैं आनंद को, वेरी गुड मॉर्निंग। गुरु रंधावा राइट हियर विद मी, एक बहुत ही अच्छा गाना, और ये गाना सुनने के बाद ना मैं फ्लैशबैक में पहुंच गया हूँ। बाय द वे आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 आनंद के साथ, ये है फ्राइडे की सुबह। अगर आप कहीं ट्रैफिक में हैं तो आप मुझे अपडेट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मुझे अपडेट दे सकते हैं 9837896896 पे। लौट कर आ रहा हूँ इस गाने के बाद, आई विल बी राइट बैक। सब मत जाओ यार।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: मैं सुभाष गंगवार एसपी ट्रैफिक मुरादाबाद आप सभी का स्वागत करता हूं। सावन माह 30 जुलाई से आरंभ हो रहा है, 11 अगस्त को शिवरात्रि है। पहले शिफ्ट में हम लोग 28 जुलाई से डाइवर्जन प्लान हम लोग के द्वारा जारी किया गया है। इसमें बिजनौर, मुजफ्फरनगर, हापुड़, सहारनपुर और हरिद्वार जाने वाला भारी वाहन को हम लोग मुरादाबाद से गंगा एक्सप्रेसवे की तरफ वाया संभल रवाना करेंगे और उसी रूट से हमारा आवागमन होगा। इसमें प्रत्येक फ्राइडे को हम लोग रोडवेज की बसों का भी डाइवर्जन करेंगे और संडे को, प्रत्येक संडे को शाम को 6 बजे से गढ़ जाने वाला ट्रैफिक को जीरो करेंगे ताकि कांवड़ यात्रा सकुशल हम लोग सम्पन्न करा सकें।
2: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

0: विजिट करो।
1: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे ITM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
2: NAC द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
1: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में,
2: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
1: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
2: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
3: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
4: अरे भैया, इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आज आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।
5: बिल्कुल सही शो सुन रहे हैं आप, और ये शुक्रवार की सुबह है। आप सभी का स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से। हाँ जी, तो भैया देखिए, बारिश का मौसम है, ऐसे में कुछ चीज़ों को आपने बिल्कुल ध्यान में रखना है, स्पेशली मॉनसून जो है अचानक से होने वाली, इसमें कभी भी बारिश हो जाती है, अचानक से वेदर चेंज हो जाता है, तो ऐसे में जो आपके बैग में आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, आपके पास जो छोटे फोटो है मिनी साइज के, है ना, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, ये कुछ जो भी इंपॉर्टेंट दस्तावेज है, इनको नुकसान ये बारिश पहुंचा सकती है, तो इसीलिए उनको ज़रा आप सही से वाटरप्रूफ जिप या फिर पाउच या फिर एक डॉक्यूमेंट फोल्डर में उनको ज़रूर रखें। आप अगर आप बाहर निकल रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ आप हमेशा रखते हैं, तो आप प्लीज इनको बहुत अच्छे से संभाल कर रखें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको ही पता है आपके लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके डॉक्यूमेंट्स, है ना, और अचानक से बारिश आ जाती है। और भैया आजकल तो हमारे पास हमारा फोन ही होता है, सबसे दिक्कत तो ये हो जाती है कि कभी भी फोन भीग ना जाए, है ना, तो उसके लिए भी कोई ना कोई अल्टरनेट तरीका जरूर रखो भाई अपने पास। भैया अभी बताया जा रहा है कि नो इंटरनेट नो टेंशन, अब बिना इंटरनेट के भी होगा UPI पेमेंट, फ्लाइट और मेट्रो में भी चलेगा आपका फोन। एग्जैक्टली, NPCI बिना इंटरनेट के काम करने वाली एक नई NFC बेस्ड UPI तकनीकी पर जो है काम कर रहा है। इसके जरिए यूजर्स बिना इंटरनेट के फ्लाइट और मेट्रो में या फिर जहां पर इंटरनेट वर्क नहीं करता है वहां पर आप अपने

देखो मुंबई, ये जो मुंबई है ना, जो महाराष्ट्र है, वहाँ पर बड़ा पाव बड़ा फेमस है यार। वैसे में ना महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक बहुत ही नया कड़क रूल निकाला है कि भैया जो महाराष्ट्र के आसपास के स्कूल्स हैं वहाँ पर अब समोसा बड़ा पाव टाइप की चीज़ें जो पूरी तरीके से बैन हो गई, मतलब वहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया। बिकॉज इसलिए बैन लगाया ताकि ये जंक फूड जो है उन बच्चों के आसपास ना तो होगा, ना फिर बच्चे लेंगे, और ना ही बच्चों को फिर जो है बच्चे इससे बीमार पड़ेंगे या फिर इसके एडिक्शन में आएंगे। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, मुझे लगता है कि ठीक है ये स्कूल्स के आसपास एटलीस्ट अगर ये चीज़ नहीं होगी तो शायद थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव होगा यार। कुछ और चीज़ें जो हैं, इन्होंने महाराष्ट्र सरकार ने उन स्कूलों के आसपास के 50 मीटर के दायरे में जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से बैन कर दिए। इसे बड़ा पाव, समोसा, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट्स और ऐसे बहुत सारे जंक फूड हैं जो पूरी तरीके से जो है वहाँ पर अब रोक लग गई है कि भैया स्कूल के 50 मीटर के दायरे में तो जो है ये सब चीज़ें नहीं मिलनी चाहिए। ऐसे कमाल की चीज़ है यार। आपको पता है एक वॉच ने जो है एक शख्स की जान बचा ली। एक शख्स जो है वो बेहोश होते होते, मतलब जो है गिरने वाले थे, लेकिन उनके पास एक स्मार्ट वॉच थी, उसमें एक इमरजेंसी सर्विस अलार्म था जिसकी वजह से जो है इमरजेंसी सर्विस कॉल हुई अपने आप और चीज़ें जो है समय पर मतलब सही हो गई और वो इंसान वहाँ तक पहुँच गया जहाँ उसको पहुँचना चाहिए था। तो आजकल ये स्मार्टफोन्स, हमारे वॉचेस और जो आसपास की चीज़ें बहुत ज़्यादा डिजिटली हो रही हैं ना, जिससे बहुत सारी चीज़ों को हमें फ़ायदा मिल रहा है इन चीज़ों का। एक्चुअली कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें हमारे यूज़ के लिए तो हैं, बट कई बार ही ना हम इनको अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते। हमारी स्मार्ट वॉच, स्मार्टफोन, ये स्मार्ट सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये एक्चुअल में हमारी हेल्प करते हैं, बहुत स्मार्टली हेल्प करते हैं। बट डिपेंड करता है कि हम अपने फ़ोन में किस तरीके से स्मार्ट चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, या अपनी वॉच में, या जो भी हमारे स्मार्ट गैजेट्स हैं उनको कैसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। राइट, 9:36 हो गए हैं, अभी इस्तेमाल करते हैं कि अच्छा सा गाना, बिकॉज ये बहुत जरूरी है। इस गाने को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे, फिर लौट कर आएंगे तो आपसे और बात करेंगे। आप कहीं मत जाओ, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाओ। यह है फिर मुरादाबाद, आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को ऑनली ऑन 89.6 मेगाहर्ट्ज पे। आपके शहर का अपना देसी रेडियो आप सुन रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो। थोड़ी सी देर में मिलते हैं, आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए।

0: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: कहा मेरी कसम?
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय।
3: बिंदास मॉर्निंग
0: सुनिए, बिंदास मॉर्निंग्स आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।

0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
1: मॉर्निंग। 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे ITM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद,
2: NAC द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक,
1: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में,
2: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई,
1: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी,
2: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
3: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
4: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन विलिस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
5: एड ब्रेक हो गए हैं खत्म, 9:45 हो रहे हैं, आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को, यह है FM मुरादाबाद 89.6 जहां पर बातें होती हैं ढेर सारी आपकी और हमारी दिल से दिल तक वाली। हां जी, सब बढ़िया चल रहा है। देखो, शुक्रवार का दिन है, फ्राइडे है, छुट्टी आने वाली है, राइट? तो बहुत सारा फन एंड बहुत सारी जो मौज मस्ती है वो लगातार जारी है ना, बिल्कुल होनी चाहिए यार। चलिए फिलहाल मैं आपको बता दूं, देखिए अभी मैं रिसेंटली रामपुर दोराहे की तरफ गया था, तो मैंने वहां पर देखा कि वहां पर जो रामपुर दोराहा है उसका नाम चेंज हो गया है। वहां पर जो रामपुर दोराहा था उसका नाम अब भरत चौक कर दिया गया है, एंड बड़ी सुंदर, बहुत ही प्यारी मूर्ति भी वहां पर, एक प्रतिमा जो है लगाई गई है बहुत सुंदर, एंड जो रामपुर दोराहा है अब उसका नाम भरत चौक कर दिया गया है बदल करके। और यू नो मतलब काफ़ी खूबसूरत था वहां का नज़ारा, चारों तरफ देखने लायक था, बहुत ही खूबसूरत, यू नो देख के एक पॉजिटिविटी आ रही थी, बहुत ही सुंदर लग रहा था। और वहां पर एक जो स्थापित की गई है ना, मतलब चक्रवर्ती सम्राट और भरत जी की जो एक प्रतिमा बनाई गई है, बहुत ही खूबसूरत वो प्रतिमा लगाई गई है। जब भी आप कभी उधर जाएंगे रामपुर दोराहे की तरफ, तो आप देखेंगे जैसे आप एंटर होंगे तो बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा जो है बीचों बीच सेंटर में लगाई गई है, और बहुत ही खूबसूरत जो है देखने में भी लग रही है, काफी अट्रैक्टिव ये लग रही है। और अब जो है फिलहाल वहां का नाम भी चेंज हो गया, भरत चौक जो है वहां पर उसका नाम कर दिया गया है। अच्छा, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा कड़क क्वेश्चन है जिसका आंसर आप मुझे दे सकते हैं आज की सुबह व्हाट्सएप करके 9837896896 पे। लेकिन आज उससे पहले मैं आपको बता दूं, एक बहुत ही कमाल की कियारा आडवाणी का बर्थडे है, बॉलीवुड की अमेजिंग सेलिब्रिटी है, इनके बारे में बात कर रहा था मैं। आज ही के दिन इनका जन्मदिन सेलिब्रेट किया जाता है, मतलब बढ़िया है यार, काफ़ी अच्छी एक्ट्रेस हैं और काफ़ी अच्छी फिल्में की हैं नो डाउट, और मतलब बहुत ही बढ़िया बढ़िया गाने भी हैं इनके ऊपर पिक्चराइजेशन। सो FM मुरादाबाद 89.6 की पूरी इंटायर फैमिली की ओर से वेरी हैप्पी बर्थडे कियारा आडवाणी को। अगर आज की तारीख में आपका भी बर्थडे होता है तो आप अपना बर्थडे इनके साथ सेलिब्रेट करते हैं। आने वाला गाना आस्था गिल एंड गुरु रंधावा की आवाज़ में। आपको बताता हूँ, हमारे मुरादाबाद शहर के जो हैं बहुत ही लेजेंड जिन्हें हम कह सकते हैं, उन्होंने एक बहुत ही खास मैसेज कन्वे किया है किस तरीके से प्रिपरेशन चल रही है कांवड़ यात्री को लेकर, कांवड़ श्रद्धालु को लेकर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ SP सिटी सर की, उन्होंने क्या स्पेशल मैसेज कन्वे किया है वो अभी मैं आपको सुनवाने वाला हूँ। आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना देसी रेडियो जहां सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है यार आपको। लेकिन उससे पहले आइए जरा एक चुटकी सवाल आपसे पूछ लेते हैं, छोटा सा गाना प्ले करने वाला हूं मैं यहां पर, एक कड़क सवाल है, इसको आपको आइडेंटिफाई करना है। अभी कड़क क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसके बाद जब लौट कर आऊंगा तो आपको वो खास मैसेज भी सुनवाने वाला हूं, ठीक है? तो अभी जरा आप मुझे बताओ, पहचानो ये गाना जो मैं प्ले कर रहा हूं ये कौन सा गाना है। बहुत प्यारा सॉन्ग है, एक चुटकी सॉन्ग में फ्राइडे की सुबह जो गाना प्ले कर रहा हूं ये कौन सा गाना है, यह आपने मेरे को बताना है। व्हाट्सएप करना है आपने मेरे को, उठाना है अपना फ़ोन, टाइप करना है अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना सही वाला जवाब, उसको सेंड करना है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। अभी जो आप म्यूज़िक सुन रहे हैं वो कौन से गाने का है? Yes, अगर आपको समझ में आ गया है ये कौन सा वाला सॉन्ग है तो आप मुझे मैसेज करके बताएंगे 9837896896 पे। एक छोटा सा गेम खेलते हैं आपके साथ एवरी मॉर्निंग, आज की सुबह फ्राइडे मॉर्निंग में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लेकर आया हूँ, बॉलीवुड का बहुत ही प्यारा गाना है एंड यही आपने आइडेंटिफाई करके मुझे बताना है। यस, बहुत ही प्यारा ट्रैक है यार। व्हाट्सएप करिए मुझे अगर आपने पहचान लिया है ये कौन सा गाना है। बहुत ही प्यारा ट्रैक है, बहुत ही कमाल का ट्रैक है। अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया है तो आप मुझे मैसेज करेंगे अपने नाम के साथ, अपना सही जवाब उठाएंगे, अपना फोन टाइप करेंगे, अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना राइट आंसर। ठीक है जी, जल्दी से व्हाट्सएप करो, मैं लौट कर आता हूँ एक खास अपडेट के साथ।

0: क्या बात है यार, एक बेहतरीन गाना जिनका आज बर्थडे होने के ऊपर आपने सुन लिया है। बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक आप सुन रहे हैं आनंद को। लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन 89.6 FM पे। बातें वही जो आपका दिल चाहता है यहाँ पर हमेशा होती रहती हैं आपके साथ। हन जी, फिलहाल आप कहाँ निकल रहे हैं? दिल्ली रोड है या आप स्टेशन रोड है या आप कहाँ छोड़े? भाई स्टेशन रोड पे सच बता रहा हूँ, बहुत ही भयंकर वाली भसड़ मची होती है यार।
1: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। मिला
2: अरे तो भाई गुस्सा क्यों होते हो? यहाँ इंसाफ भी मिलेगा और एंटरटेनमेंट भी, एंटरटेनमेंट भी, क्योंकि आप सुन रहे हैं आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, जो कहता है रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और दिल से कहिए जियो बिंदास।
0: देखिए आपको पता है ना कि कल जो है सावन की शुरुआत।

0: यार मुझे समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर मेरे को ये आवाज नहीं आ रही थी, आपको भी आवाज नहीं आ रही थी मेरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनीवेज अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि एसपी सिटी रणविजय सर ने जो है कुछ स्पेशल बात जो है कन्वे की है, स्पेशली सावन को लेकर, कांवड़ यात्रियों को लेकर किस तरीके की व्यवस्था है, हमारा पुलिस प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है। मुरादाबाद की जनता को ये जानना बहुत जरूरी है, तो जरा सुनवाते हैं सर की ये प्यारी सी वाइट, आपको आप तक पहुँचाते हैं।
1: जनपद से हमारे सभी जो कांवड़ समिति के सदस्यगण हैं और जो संचालक लोग हैं प्लस जत्थेदार हैं और इसमें जो डीजे संचालक हैं उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट के जो यूनियन के लोग हैं प्लस कांवड़ समिति कांवड़ लगाने वाले के जो लोग हमारे श्रद्धालुओं को सेवा के लिए कांवड़ लगाने वाले लोग हैं प्लस प्रशासन के सभी डिपार्टमेंट्स यानी जितने सारे स्टेक होल्डर्स इस पूरे श्रावण मास की कांवड़ सेवा को सकुशल निपटाने के लिए जितने लोग के ड्यूटीज लगे हैं सभी लोग यहाँ पर थे, अपनी जो तैयारी की है उसके बारे में लोगों को बताया है, उनके तरफ से कुछ उनकी जो अपेक्षाएं हैं इस तैयारी में उसको उन्होंने बताया है। हम लोगों ने पुलिस व्यवस्था के हिसाब से जोन सुपर जोन सेक्टर में पूरा ये डिवाइड किया हुआ है, लाइट और हमारी जितनी सारी सड़क की जो टूट फूट है सब पुट्टी कराया गया है, ट्रैफिक का जो हमारे यहाँ इशू रहता है उसके लिए हम लोगों ने प्रॉपर व्यवस्थाएं की है, ट्रैफिक डाइवर्जन का प्लान है हमारा। उसके साथ साथ ट्रैफिक में उस दिन खासकर लास्ट सोमवार को जब हमारे ब्रजघाट से कांवड़िया आते हैं उस दिन जो स्पेशल व्यवस्था की जाती है उसके संबंध में चर्चा हुई है, दिल्ली रोड को कैसे चलाना है, दिल्ली रोड पे क्या समस्याएं आती हैं। हमारे शासन की मंशा बहुत क्लियर है, हम लोग को एक मैंडेट मिला है जीरो इंसिडेंट जीरो एक्सीडेंट, तो हम लोगों ने इस पूरे इस थीम को अपने मन मस्तिष्क में रखते हुए इसकी तैयारी कर ली है। देखिए डीजे के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से बता दिया गया है, यहाँ पे आज भी मीटिंग में इसको रिइटरेट किया गया कि जो हमारे डीजे का साइज है जो परमिसेबल साइज है वो 12x10 का है, 12x10 का है और इसको सब लोगों ने कहा है और प्लस हमारे बीट कांस्टेबल से लेकर के थाने के एसएचओ तक, इंस्पेक्टर तक, सीओ साहबान तक, हम लोगों के लेवल तक हम लोगों ने घूम घूम करके इसको इंश्योर करने का प्रयास किया और हम लोग सुनिश्चित कराएंगे जो हमारे साउंड की तीव्रता है वो 75 डेसिबल से ज्यादा ना हो। इसके बारे में हम लोग पूरी तरह से सब कुछ अवगत करा दिए हैं और इंश्योर भी करा रहे हैं कि ये इसका कंप्लायंस सुनिश्चित करें।
0: क्या बात है, देखिए बहुत ही खूबसूरत जानकारी आप तक पहुंची है किस तरीके से क्या क्या व्यवस्थाएं जो है रहने वाली है, एक बहुत ही प्यारा इनिशिएटिव भी है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने बताया, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग भी उसमें ज़रूर अपनी सहभागिता दिखाएंगे। जी हाँ, जो चीज़ कही जा रही है पुलिस प्रशासन की ओर से उसमें हमें भी जो है अपना कंट्रीब्यूशन देना है। अगर हमें पता है कि भैया संडे को यहाँ से हमें गाड़ी को नहीं निकालना है तो मतलब नहीं निकालना है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी तो बनती है यार। एसपी सिटी कुंवर रणविजय सर से अभी आप एक्सक्लूसिव अपडेट सुन रहे थे, आगे बढ़ते हैं सर। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, जोरदार तालियां हमारी पुलिस प्रशासन के लिए, मुरादाबाद की पुलिस सच में बहुत एक्टिव है यार, बिग शाउट आउट। चलो आगे बढ़ते हैं और आज की सुबह मैंने आपसे एक बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है, अगर अभी तक आपने उसका आंसर नहीं दिया है तो आप बहुत पीछे हैं यार। आज की मॉर्निंग आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा गाना है, चलो मैं आपको क्लू देता हूँ, इस गाने के अंदर वरुण धवन है, सबसे बड़ा क्लू मैंने दे दिया है एंड साथ में अरिजीत सिंह की आवाज है, इससे बड़ा और क्लू क्या ही दूं आज की सुबह, फटाफट से आइडेंटिफाई करो, फ्राइडे मॉर्निंग है, बहुत ही अच्छी मूवी है, बहुत ही बढ़िया गाना है, वरुण धवन पर पिक्चराइजेशन है। व्हाट्सएप करना है आपने अपने नाम के साथ अपना सही जवाब 9837896896 पे, उठाइए अपना फोन, टाइप कीजिए अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना सही जवाब, जल्दी से उसको सेंड कर दीजिए मेरे व्हाट्सएप पर, नंबर आपको पता है ना जी, तो देरी मत लगाओ, देखते हैं आप में से कौन बनेगा आज की सुबह सुपरस्टार।

0: बन के।
1: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग।
2: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
3: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
4: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना, आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
3: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
5: आवश्यक सूचना, 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
6: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारी।
7: मेरा इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है,
8: लेकिन सोनिया
7: डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं,
8: नामुमकिन नामुमकिन नामुमकिन।
9: लेकिन बॉलीवुड के गाने पकड़ना बहुत ही मुमकिन है। सुनिए FM मुरादाबाद 89.6 पे 90s बॉलीवुड के अमेजिंग गाने। ट्यून इन कीजिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

क्या बात है यार, 10:05 हो गए, मेरे जाने का समय हो गया है। लेकिन जाने से पहले आपको फटाफट से अपडेट दे देता हूँ भैया। एक सोशल मीडिया पे ट्रेलर बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, कल रामायण का जो ट्रेलर है वो आउट हुआ है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, 4:15 पे उसको लॉन्च किया गया एंड बहुत ही धाकड़ मुझे तो ट्रेलर लगा। मैंने उसका रिव्यू भी एक छोटा सा शेयर किया इंस्टाग्राम पे, आप जाके डेफिनेटली देख सकते हैं। मेरा ऑफिशियल आईडी है RJ आनंद, यानी रेडियो वाला आनंद के नाम से भी आप डालोगे तो भी मैं आपको दिख जाऊंगा। वहां पे मैंने डाला है, बहुत ही अच्छा ट्रेलर है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा रामायण का तो आप जरूर देखो। इसमें रणवीर कपूर जो है भगवान राम की भूमिका में नजर आने वाले हैं, अरुण गोविल जी इसमें नजर आ रहे हैं राजा दशरथ की भूमिका में, एंड साथ ही साथ रवि दुबे को लक्ष्मण का रोल दिया गया है। एंड इसमें जो ये है एक बहुत ही प्यारी अभिनेत्री है, मतलब बहुत सारी स्टार कास्ट है, बहुत सुंदर जो है ट्रेलर मुझे लगा। कल मैंने ट्रेलर देखा और मतलब मुझे सच में बहुत सारी चीजें लगी। लेकिन इस ट्रेलर के अंदर ना अभी आपको हनुमान जी के दर्शन नहीं दिखाई देंगे, और वो एक्चुअल में जो हनुमान जी का रोल कर रहे हैं वो हैं सनी देओल, जो इस रामायण में भूमिका निभाने वाले हैं वो सनी देओल जी हैं। और अभी जो है ये मूवी के बारे में बताया जा रहा है कि इसको दो पार्ट में जो है रिलीज किया जाएगा। पहला पार्ट इसका दिवाली के आसपास होगा, दूसरा जो सेकेंड पार्ट होगा उसमें हनुमान जी को जो है अच्छे से दिखाया जाएगा। तो रामायण का जो ट्रेलर है आप देखोगे तो आपको बहुत बढ़िया लगेगा। 4:15 का ये ट्रेलर है, बहुत ही अच्छा मुझे तो लगा, मैंने देखा इसको बहुत ही बढ़िया लगा। रघुकुल प्रीत सिंह जो है इसमें वो सुपनखा का रोल कर रही हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं। साथ ही साथ जो केके का रोल प्ले कर रही हैं वो है लारा दत्ता, बहुत ही अच्छी जो है केमिस्ट्री लग रही है, स्टार कास्ट बहुत ही अच्छी है। और ये मूवी से लोगों की एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज्यादा हाई वाली है। फिलहाल मेरा जाने का समय हो गया है, लेकिन एक और इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। अब गूगल पे पे जेमिनी AI की एंट्री हो गई है। हाँ जी, अब खर्च और सेविंग दोनों की जो है आपको एडवाइस देगा ये। जी हाँ, डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म गूगल पे जो है अब केवल पैसे भेजने और बिल भुगतान का माध्यम नहीं रह गया। हाल ही में कंपनी ने इसे जेमिनी AI जो है इसमें एक नया फीचर इनरोल किया है, आस्क गूगल पे। हाँ जी, यानी कि अब जो है आप इस फीचर की हेल्प से बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता कर सकते हैं। तो अब ये एक नया फीचर इसमें ऐड हो गया है। अच्छा, मैंने आज की सुबह बहुत सिंपल सवाल पूछा था आपसे, उसका जवाब आपने देना था, और मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि इतने सालों को पता नहीं है यार। इतना बढ़िया गाना है ये, फर्स्ट क्लास फ्रॉम द फिल्म कलंक। मैं आपको बता देता हूँ यार, अरिजीत सिंह ने गाया है। और इसका आंसर मेरे पास यहाँ पर श्रुति जी का पहुंचा था, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। बहुत सारे लोगों ने गलत जवाब दे दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में अक्सर छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। थैंक यू सो मच, कंग्रेचुलेशन। इसके अलावा मेरे पास रवि जी का भी आंसर आया था राइट वाला, थैंक यू। आप दोनों बनते हैं आज की सुबह सुपरस्टार, फर्स्ट क्लास वाला जवाब आप दोनों ने दिया है, जोरदार तालियां। 10:08 हो रहे हैं, चलिए अब मैं यहाँ से निकलता हूँ, लेता हूँ आपसे जाने की अनुमति। मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी, डॉक्टर सैयद शारिक अली जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। और विक्की सागर जी लिखते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, मैंने भी बहुत सारा कढ़ाई में खाना खाया है, लेकिन मेरी शादी में कभी बारिश नहीं हुई है। अच्छा, मतलब इनकी शादी में बारिश नहीं पड़ी थी, ऑल राइट, ये कहना चाह रहे हैं। ओ भाई, मतलब क्या चाह रहे थे, बारिश हो। हाय, गुड मॉर्निंग जी, बबली अंजान, गीता कश्यप, भाभी लक्ष्मी एंड संतोष भाभी जी जुड़े हैं, गुड मॉर्निंग पहुंचा रहे हैं। साथ में एक मैसेज आ रहा है मोहसिन अंसारी जी का, बनारस से लिखते हैं, दूसरों को देखकर जलना छोड़ दो, अपनी मेहनत से तकदीर को मोड़ दो। वाह, व्हाट अ लाइन। सपना शर्मा मेरे साथ जुड़ गई है, सपना भूपी शर्मा नगर पंचायत पागवाड़ा से, बहुत ही प्यारा थॉट शेयर कर रही है आज की सुबह। राधे राधे आनंद जी, अलका वर्मा बुद्धि बिहार से जुड़ गई हैं, DK अरोड़ा जी चंदन नगर से जुड़ गए हैं, लेकिन गलत जवाब हो गया है, कराची पाकिस्तान से मेरे साथ जुड़े हैं हमारे रेगुलर लिसनर। बहुत सारे और भी मैसेज मेरे पास नॉन स्टॉप पहुंच रहे हैं गाइज, अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि मैं आपसे और बातचीत करूं, बस जो भी कड़क अपडेट होती है, लेटेस्ट चीजें तो आसपास में चल रही होती हैं, वो सब कुछ आपको बताकर ही यहां से जाते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, आप लोगों से बातचीत करके बहुत मजा आया, और अब जो है हम आपसे मिलेंगे टुमारो मॉर्निंग। रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, ऐसे में ढेर सारी बीमारियां जो हैं आ रही हैं, तो भैया आप इन बीमारियों का हिस्सा ना बने, इसलिए प्लीज़ अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, अभी के लिए मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त, जल्दी होगी मेरी आपकी मुलाकात। ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर। ये गाना छोड़ के जा रहा हूँ, हैप्पी फ्राइडे वीकेंड, एंजॉय कीजिए, हैप्पी फ्राइडे मॉर्निंग। 10:10 हो गए, बाय।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
2: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
1: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
2: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
1: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
0: मुरादाबाद
1: से संपर्क कीजिए।
2: नियम और शर्तें लागू।

0: आइए आप भी भागीदार बनिए, वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 से जुड़िए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
2: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
3: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
2: पर पापा।
3: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
4: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद। We'll be right back.

म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल। फ्राइडे वाली मॉर्निंग है जी, बहुत ही ब्यूटीफुल डे। और दोस्तों, ये आपके अपने शहर का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन है एफएम मुरादाबाद 89.6। बाहर कितनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है ना दोस्तों, धूप तो है लेकिन हवाएं चल रही हैं, हवाएं साथ दे रही हैं, तो इतनी गर्मी नहीं लग रही है। और 31 जुलाई का आज तारीख है 31 जुलाई की। जी हाँ, 31 जुलाई है आज, एंड जुलाई का लास्ट डे। फ्राइडे की सुबह खुशी आपके साथ है। एंड दोस्तों देखिए, शुक्रवार हमें याद दिलाता है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो पूरे हफ्ते उम्मीद और मेहनत का साथ नहीं छोड़ते। इसीलिए आज भी मुस्कुराइए, अच्छा सोचिए और पूरे विश्वास के साथ अपने दिन की शुरुआत कीजिए। और दोस्तों, जिंदगी में खुश रहने का सबसे आसान तरीका है जो हमारे पास है, उसके लिए आभार व्यक्त करें और जो पाना है उसके लिए पूरे मन से प्रयास करें। सुप्रभात, आपका शुक्रवार मंगल में हो। इसी मॉर्निंग थॉट के साथ करते हैं अपने दिन की शुरुआत, अपने शो की शुरुआत। वक्त हुआ है 10:21। और अपने आप में हर दिन बहुत स्पेशल होता है एवरीवन। आज क्या कुछ खास है सब आपको पता लगेगा। बहुत सारी बातें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आई है आपके लिए खुशी। आप भी मेरे साथ जल्दी से जुड़ जाइएगा। मोबाइल नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 9837889686।

चलिए एक ब्यूटीफुल ट्रैक से करते हैं अपने दिन की शुरुआत। क्यों दोस्तों, अब खुशी आई है तो कुछ तो इंटरेस्टिंग होना चाहिए ना। और एक प्यारा सा ट्रैक अरिजीत सिंह जी की बड़ी खूबसूरत सी आवाज़।

0: बैटमैन उड़ना छोड़ के धरती पे क्या कर रहे हैं?
1: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
2: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
3: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
2: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
4: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
5: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
4: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

दोस्तों अभी आपने प्यारा सा ट्रैक सुना नजर बटू यमला पंगला दीवाना से। यमला पगला दीवाना से आपने प्यारा सा ट्रैक सुना नजर बटू। और दोस्तों अगर कोई अपना साथ हो ना तो फिर दुनिया की किसी नजर का डर ही नहीं रहता। हाँ कहते हैं ना कि सच्चे रिश्ते और सच्ची दुआएं हर बुरी नजर से बड़ी होती हैं। तो मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि खुशियों पर किसी की नजर नहीं, सिर्फ आपकी मुस्कान का हक होना चाहिए। ओके तो मुस्कुराइए अभी आप सभी का आरजे खुशी स्वागत करती है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। और दोस्तों यहाँ पर अभी बहुत सारे मैसेज आ गए हैं आपके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच एवरीवन। इतना मतलब आप रेडियो से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, जैसे ही 10 बजते हैं आपके मैसेज यहाँ पर आ जाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। चलिए तो सिलसिला शुरू करते हैं आपके प्यारे प्यारे संदेशों का। और हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले मैसेज आया है राजनंद गांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जमुना साहू और प्रेम पूजा जी का। ये हमें गुड मॉर्निंग पहुँचाते हैं आज की सुबह। वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए सावन का जो दूसरा दिन है और बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा दिन, फ्राइडे का वीकेंड स्टार्ट हो चुका है ना। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया सहारनपुर से सैयद मंसूर जी का। और ये कहते हैं कि आरजी खुशी जी आपको आदाब, आपको भी आदाब सब। नेक्स्ट मैसेज हमें मिला है यहाँ पर नेपा नगर एमपी से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह जी का, साथ में कुशल शाह जी भी हैं। उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान जी का, साथ में साइना नवाज हैं, हसन नवाज हैं और इनकी पूरी फैमिली है इस वक्त सुन रहे हैं हमें। और इन्होंने एक प्यारे से गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी है फ्रॉम द मूवी पगला कहीं का। बहुत प्यारी सी खूबसूरत सी आवाज़ मोहम्मद रफ़ी साहब जी की। तुम मुझे यूँ भुला ना पाओगे। आज उनकी पुण्यतिथि भी है एंड उनकी पुण्यतिथि पर हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और उनकी खूबसूरत बातें भी हैं जो आप तक हमें साझा करनी है, तो सब आपको बताएंगे। आप बने रहिए, सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और हाँ अपने संदेश भी पहुंचाते रहिएगा, हमें इंतज़ार है आपके खूबसूरत संदेशों का। नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 9837896

और सुनते हैं रफी साहब जी की आवाज में एक बहुत ही प्यारा सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी पगला कहीं का, बहुत ही प्यारा सा ये गाना है। लौट कर आते हैं इस खूबसूरत से गीत की उस पार, आप कहीं मत जाइए, यूं ही मुस्कुराइए। यह है आपके अपने शहर का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त खुशी।

0: हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग. वंस अगेन आपका वेलकम बैक. आरजे खुशी करती है फिर मुरादाबाद 89.6 पर. और दोस्तों, कुछ आवाजें वक्त के साथ पुरानी नहीं होती, बल्कि हर दिन, हर गुजरते दिन के साथ और भी अनमोल हो जाती हैं. अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी साहब जी का जादुई, मोहम्मद रफ़ी साहब जी की जादुई आवाज़ में ये रेशमी जुल्फे, ये शरबती आँखें. सच कहें तो रफ़ी साहब जी सिर्फ गाते नहीं थे, बल्कि हर एहसास को अपनी आवाज़ में जी लेते थे. दोस्तों, 31 जुलाई को आज उनकी पुण्यतिथि है. और आज इस महान फनकार को दिल से याद करते हैं और जानते हैं उनके संघर्ष, उनकी सादगी और उनके सुनहरे संगीत यात्रा के बारे में. दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी साहब जी का जन्म 24 दिसंबर 1924 को पंजाब के कोटला सुल्तान सिंह गांव में हुआ था. बचपन में उनके भाई, बड़े भाई की नाई की शॉप थी. दुकान के सामने रोज एक फकीर गुजरता था जो बहुत मधुर आवाज में सूफी कलाम गाता था. छोटे रफ़ी साहब जी उस फकीर के पीछे पीछे चलते और उसकी आवाज़ की नकल करते. यहीं से संगीत के प्रति उनका प्रेम शुरू हुआ. परिवार ने उनकी प्रतिभा पहचानी और उन्हें शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दिलाई. दोस्तों, उनका पहला गीत 1944 में पंजाब फिल्म ये बलोच के लिए रिकॉर्ड हुआ था. इसके बाद वे मुंबई आए और धीरे धीरे हिंदी फिल्में संगीत की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज़ बन गए. उन्होंने लगभग 7,000 से अधिक गीत गाए और हिंदी के अलावा कई भारतीय भाषाओं में भी अपनी आवाज़ दी. दोस्तों, एक कार्यक्रम में बिजली चली गई थी. उनका पहला किस्सा है, कार्यक्रम में बिजली चली गई थी और मुख्य गायक प्रस्तुति नहीं दे सके. तब युवा रफ़ी साहब जी को मंच पर गाने का मौका मिला. उनकी आवाज़ ने संगीतकार इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने पहला बड़ा अवसर उनको मिल गया. एंड दूसरा किस्सा रफ़ी साहब जी का, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे. लेकिन उससे पहले कुछ एड ब्रेक का टाइम हो गया है. एड ब्रेक के बाद लेंगे कुछ म्यूजिकल ब्रेक और आप जो ये आपके जो प्यारे प्यारे संदेश आए हैं ना, हम उनको भी शामिल करेंगे. बस आप बने रहिएगा, सुनते रहिएगा फिर मुरादाबाद 89.6. और दोस्तों, अगर आप भी कोई रफ़ी साहब जी का ट्रैक सुनना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा. आप हमें अपने संदेश पहुँचा सकते हैं. हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896. रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए.
1: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे आईटीएम यूनिवर्सिटी मुरादाबाद.
2: नैक द्वारा ए ग्रेड एनआईआरएफ में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक.
1: डिप्लोमा से पीएचडी तक सभी शिक्षा एक कैंपस में.
2: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई.
1: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी.
2: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट.
3: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077.
4: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा. डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है. एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारी वादा.
5: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद.

0: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
1: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
0: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
1: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
0: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
2: मुरादाबाद
0: से संपर्क कीजिए।
1: नियम और शर्तें लागू।

क्या बात है दोस्तों, हाँ ले गए ना हम आपको पुरानी यादों में। वंस अगेन वेलकम बैक। देखिए रेडियो का ना यही तो एक खूबसूरत सा मीनिंग होता है। रेडियो पर हर तरह के ट्रैक आपको सुनने को मिलते हैं और ये सदाबहार गीत आप सुनते हैं ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। दोस्तों अभी आपने प्यारा सा ट्रैक सुना फ्रॉम द मूवी दो रास्ते से, राजेश खन्ना और साथ में मुमताज जी नजर आई इस ब्यूटीफुल ट्रैक में। लता मंगेशकर जी की बड़ी खूबसूरत सी आवाज। और दोस्तों बॉलीवुड की मुस्कान, अदाओं की मालिका और मलिका और सत्तर के दशक की सबसे चहेती अभिनेत्रियों में से एक मुमताज जी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। आज उनका जन्मदिन है। जी हाँ दोस्तों, 31 जुलाई 1947 को जन्मी मुमताज जी ने बेहद कम उम्र में अपने अभिनय सफर की शुरुआत की। महज 11 साल की उम्र में उन्होंने 1958 की फिल्म सोने की चिड़िया में बतौर बाल कलाकार कैमरे का सामना किया। शुरुआत आसान नहीं थी, छोटे छोटे किरदारों से सफर शुरू हुआ, लेकिन अपने टैलेंट, मेहनत और शानदार स्क्रीनिंग के दम पर उन्होंने जल्द ही हिंदी सिनेमा की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में अपनी जगह बना ली। 70 के दशक में मुमताज जी की लोकप्रियता अपने चरम पर थी। उनकी जोड़ी सुपरहिट राजेश खन्ना जी के साथ खूब पसंद की गई। दोनों ने कई यादगार फिल्मों दी। दो रास्ते, खिलौना, हरे राम हरे कृष्णा, चोर मचाए शोर और लोफर जैसी फिल्मों में उनके शानदार अभिनय ने दर्शकों का दिल जीत लिया। साल 1970 में आई फिल्म खिलौना मुमताज जी के करियर का मील का पत्थर साबित हुई। इस फिल्म में उनके दमदार अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। ये सम्मान उनकी मेहनत और अभिनय क्षमता का सबसे बड़ा प्रमाण बना। मुमताज जी की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि उन्होंने हर तरह के किरदार को पूरे आत्मविश्वास और सहजता से निभाया। चाहे रोमांस हो, इमोशन हो या फिर चुलबुलापन, उन्होंने हर अंदाज में दर्शकों का दिल जीता।

एक बार फिर से बॉलीवुड की सदाबहार अभिनेत्री मुमताज जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों आज इन्हीं पर फिल्माई गए अगर कोई भी गीत आप सुनना चाहते हैं तो हमें बता दीजिएगा। समय मैं आपको बता देती हूँ, 10:56 हो गए हैं। और हमारे पास यहाँ पर खूबसूरत संदेश भी आए हैं। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है मुरादाबाद यूपी से रणवीर सिंह जी का, और ये कहते हैं, खुशी मैम गुड मॉर्निंग, किसी के बुरे वक्त में साथ देना ही जिंदगी का सबसे अच्छा काम है। और ये कहते हैं कि मोहम्मद रफी साहब जी का एक गीत हमें सुनवा दीजिएगा। और ये कहते हैं कि मोहम्मद रफी साहब जी की आवाज और धर्मेंद्र जी का अभिनय बहुत ही अच्छा था। एग्जैक्टली सो। उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है। ये मैसेज अपना पहुँचाते हैं जिला अमरोहा नई बस्ती पति खालसा से बहारुल हसन सिद्दीकी जी। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है जिला मुरादाबाद से रजा हुसैन जी का, और ये कहते हैं कि मैम आप हमें कोई भी गीत सुनवा दीजिएगा। श्योर सर। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं, गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग, जनकपुरी सहारनपुर से जोन रोजी पलवलीस जी जुड़े हैं और ये ट्रैक सुनना चाहते हैं फ्रॉम द मूवी नील कमल से तुझको पुकारे मेरा प्यार। मोहम्मद रफी साहब जी की बड़ी खूबसूरत सी आवाज में प्यारा गीत सुनवाएंगे आपको सर, थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। बाकी दोस्तों आप भी अपने मैसेज हमें पहुंचा दीजिएगा। उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, और ये वॉइस नोट हमें पहुंचाती हैं मैम, इनका वॉइस नोट भी हम प्ले करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत। लेकिन गीत से पहले कुछ एड ब्रेक का भी टाइम हो गया है। साथियों कुछ म्यूजिकल ब्रेक के बाद अभी लौटकर खुशी आने वाली है और आपके लिए बहुत सारी अपडेट लेकर आई है, एंड क्या कुछ है वो सब आपको पता लगेगा। बस आप ऐसे ही बने रहिए, जुड़े रहिए, और हाँ जो भी अपना कार्य करें अच्छे से कीजिए, ध्यान से, ठीक है, मन लगाकर काम करो ताकि उसमें सफलता आपको मिल जाए। और जब हम कोई भी काम पूरी शिद्दत के साथ करते हैं ना दोस्तों, तो उसमें सफलता भी मिलती है। और लेकिन सफलता के साथ साथ हमारा

0: भी प्रसन्न होता है जब हम पूरे अच्छे मन से काम करते हैं, है ना। तो चलो आप भी अपने काम पर लग जाओ, फटाफट से मुझे मैसेज पहुंचाओ, इतना आलस मत करो यार।
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

म्यूजिक मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादी अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

0: गुड मॉर्निंग मुरादाबाद, कैसे हाल चाल है आपके? ओहो हो, सब कामों में व्यस्त हैं, बहुत अच्छे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही बिंदास रहना चाहिए और कामों में अपने व्यस्त रहना चाहिए, बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों कहते हैं ना कि खाली दिमाग जो होता है ना वो शैतान का होता है, कुछ ना कुछ सोचता रहता है। लेकिन जब इंसान व्यस्त होता है ना तो वो बिंदास रहता है, नो टेंशन नो ड्रामा, ओनली काम पर फोकस होता है। देखिए आप कितने इंटेलिजेंट हैं, काम भी कर रहे हैं, हमें भी सुन रहे हैं और मैसेज भी लगातार पहुंचा रहे हैं। और अभी आपने ये प्यारा सा ट्रैक सुना फ्रॉम द मूवी शेरशाह से, सिद्धार्थ मल्होत्रा साथ में कियारा आडवाणी की, बड़ी खूबसूरत थी ये, इनके ऊपर फिल्माया गया प्यारा सा ट्रैक आपने सुना अभी। दोस्तों खूबसूरत बेहतरीन अभिनय और अपनी सादगी से लाखों दिलों पर राज करने वाली बॉलीवुड अभिनेत्री कियारा आडवाणी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। जी हाँ दोस्तों, आज इनका भी बर्थडे है। कियारा आडवाणी जी का जन्म 31 जुलाई 1992 को मुंबई में हुआ था। उनका असली नाम आलिया आडवाणी था, लेकिन फिल्मों में आने से पहले उन्होंने अपना नाम बदल कर कियारा रख दिया। उन्होंने साल 2014 में फिल्म पगली से बॉलीवुड में कदम रखा। शुरुआत भले ही साधारण रही, लेकिन उन्होंने हर हाल में मतलब आगे बढ़ती गई, हार नहीं मानी। साल 2016 में आई फिल्म एम एस धोनी में उन्होंने साक्षी धोनी के किरदार ने उन्हें खूब पहचान दिलाई और दर्शकों का खूब प्यार मिला उनको। इसके बाद लास्ट स्टोरीज में उनके अभिनय की काफी सराहना हुई। फिर कबीर सिंह ने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया। इस फिल्म के प्रीति के किरदार ने उन्हें नई ऊंचाई तक पहचान दिलाई। और उसके बाद कियारा ने गुड न्यूज़, शेरशाह, भूल भुलैया 2, जुग जुग जियो और सती प्रेम की कथा जैसी सफल फिल्मों में अपनी शानदार अभिनय क्षमता का परिचय दिया। खासकर शेरशाह में उनकी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की जोड़ी दर्शकों ने दिल से पसंद की। और साल 2023 में कियारा आडवाणी ने अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ शादी की और ये जोड़ी बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत जोड़ियों में शामिल हो गई। आज कियारा सिर्फ अपनी खूबसूरती ही नहीं बल्कि अपनी मेहनत, आत्मविश्वास और दमदार अभिनय के लिए भी जानी जाती हैं। उन्होंने साबित किया कि लगन और समर्पण से हर सपना सच किया जा सकता है। एक बार फिर से बॉलीवुड की टैलेंटेड और खूबसूरत अभिनेत्री कियारा आडवाणी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों मैं कहना चाहती हूँ आपसे कि अगर आज आपका भी बर्थडे है तो देखिए आप कितने सारे सेलिब्रिटीज के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हमारे पास, मैंने कहा था ना कि वॉइस नोट भी आए, तो उनको भी हम क्विकली प्ले कर लेते हैं। क्या पहुंचाती हैं आज की सुबह मैम, उनकी मधुर सी आवाज सुन लेते हैं। अच्छा लगता है जब सुबह सुबह आप अपने वॉइस नोट हमें पहुंचाते हैं।
1: राधे राधे खुशी, आप कैसी हो? मैं तो बढ़िया हूँ खुशी। ये वाला गाना सुनवा देना, मिलन मूवी से है। सावन का महीना, पवन करे शोर, जियरे झूमे ऐसे जैसे मनवा नाचे मोर। और सब बढ़िया है, आज तो मौसम भी बढ़िया हो रहा है, कल से सावन लग गया है तो हर तरफ हरियाली हरियाली नजर आ रही है। हैप्पी सावन
0: आपको भी मैम, मोस्ट वेलकम। सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे आपने अपना वॉइस नोट हमें पहुँचाया है खिलखिलाती आवाज़ में, वैसे ही हम खिलखिलाकर मुस्कुरा रहे हैं और आपको वॉइस नोट सुनकर और भी अच्छे हो गए हैं मैम। थैंक यू सो मच, आपने अपना वॉइस नोट पहुँचाया है। और जिस गाने की आपने रिक्वेस्ट भेजी है ना, इसको भी हम ज़रूर प्ले करेंगे क्योंकि ये गाना मुझे भी बहुत पसंद है। तो दोस्तों एक और वॉइस नोट हमारे पास यहाँ पर आया है और ये वॉइस नोट हमें पहुँचाते हैं कराची पाकिस्तान से। इनका मैसेज सर का सुन लेते हैं।
2: अस्सलामुअलैकुम, आदाब है, मैं कराची पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ, राशनास। आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि आज रफ़ी के गाने भी पसंद लोगों को आ रहे होंगे, तो उसके लिहाज से मैंने भी एक रफ़ी की आवाज़ में गाना सेंड किया है। उम्मीद है आप जरूर सुनाएंगे।
0: बिल्कुल सुनवाएंगे सर, आप इतने हमारे दूर के लिसनर हैं और रेडियो से इतना प्यार करते हैं, तो सुनवाएंगे आपकी रिक्वेस्ट का गाना भी। उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है और ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से रिशाद हुसैन अंसारी जी, साथ में शहीद इरशादी कली जी हैं, महराज अंसारी जी हैं, बाबू अंसारी जी हैं और कहते हैं कि खुशी जी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सर आपको भी। एंड उसके अलावा कहते हैं कि मैम आपका शो मॉर्निंग मसाला हम सुन रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कहते हैं कि आज 31 जुलाई है और आज मोहम्मद रफ़ी साहब जी की पुण्यतिथि है और वह बहुत ही बड़े महान कलाकार थे, उन्होंने बहुत ही अच्छे सॉन्ग गाए और जो दिलों को छू जाने वाले सॉन्ग हैं। और कहते हैं कि बताते हैं कि वह बहुत ही शर्मीले थे लेकिन उन्होंने सॉन्ग रोमांटिक भी गाए हैं और उन्हीं का एक सॉन्ग हमें सुनवा दीजिएगा जो कि मैं सुनवा चुकी हूँ, आई होप आपने एंजॉय किया होगा सर। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आए हैं, हर हर महादेव खुशी मैम कैसे हैं आप, मैं बहुत अच्छी हूँ सर। और ये मैसेज अपना पहुँचाते हैं बबलू सैनी जी मुंबई महाराष्ट्र से। तो चलिए दोस्तों, सावन का पावन महीना है और इतनी प्यारी सी गाने की रिक्वेस्ट हमारे पास आए यहाँ पर, सावन का महीना पवन करे शोर, बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक है, तो चलिए सुनते हैं मिलकर। उसके बाद आपसे भी बातचीत कर रही है और भी अपडेट्स हैं जिन जो आप तक हमें पहुँचानी है, तो बस ऐसे ही सुनते रहिएगा और ये खूबसूरत गाने का आनंद लीजिए ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 पर।

0: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
1: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
0: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
1: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
0: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
2: मुरादाबाद
0: से संपर्क कीजिए।
1: नियम और शर्तें लागू।
3: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।

0: पोस्टिंग पे जाने से पहले मिल के जाऊंगा।
1: देखिए दोस्तों, हम आपसे दूर नहीं जा रहे हैं, हम आपके पास ही हैं। जी हाँ, आप ही के फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने ये प्यारा सा ट्रैक सुना, विपराग जी की बड़ी खूबसूरत सी आवाज़।

और दोस्तों समय हुआ है 11:31। उत्तर प्रदेश की पहचान सिर्फ अपनी संस्कृति और इतिहास से ही नहीं बल्कि यहाँ के हुनरमंद कारीगरों से भी है। और आज की अपडेट भी ऐसे ही खास शहर से जुड़ी है दोस्तों। फिरोजाबाद, जिसे भारत की ग्लास सिटी के नाम से जाना जाता है, आज अपनी कांच और चूड़ी उद्योग के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ की खास बात है कि करीब 1.5 लाख से अधिक लोगों की आजीविका इस उद्योग से जुड़ी है और 400 से ज़्यादा ग्लास इकाइयां इस उद्योग को नई रफ्तार दे रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की ODOP यानी वन साइड एंड वन प्रोडक्ट योजना के तहत फिरोजाबाद के कांच उद्योग को नए बाजार, नई पहचान और बेहतर अवसर मिल रहे हैं। इससे स्थानीय कारीगरों का हुनर देश ही नहीं विदेशों तक पहुंच रहा है। एंड दोस्तों, जब हुनर को मिलती है सही मंच तो वही सिर्फ रोजगार नहीं देता बल्कि पूरे शहर की पहचान बन जाता है। फिरोजाबाद की चमकती चूड़ियाँ और कांच की कलाकृतियाँ इसी मेहनत और कला की खूबसूरत मिसाल हैं। एंड अब हम बात करते हैं अपने श्रोताओं के संदेशों की। और वैसे भी आपको पता है NFG1 कि सावन में चूड़ियों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। ग्रीन ग्रीन चूड़ियाँ, जी हाँ दोस्तों, वो एक गाना भी है ना, गोरी ही कलाइयाँ तो ला दे मुझे हरी हरी चूड़ियाँ। और अभी आपने कुछ खूबसूरत गीत सुने एंड यहाँ पर अगला मैसेज हमें मिला है। ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं उमेश कुमार प्रजापति जी लोधीपुर मुरादाबाद से। कहते हैं, गुड मॉर्निंग मैम, थैंक यू सो मच, आपको हमारी वॉइस पसंद आती है। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, खुशी जी राधे राधे, आपको भी राधे राधे। ये मैसेज अपना पहुंचाते हैं अजीत कसाना जी, साथ में माया देवी जी हैं, ऋतिक हैं और आदित्य कसाना जी हैं। दावली जिला मुरादाबाद से अपना मैसेज हमें पहुंचाते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आए, नमस्कार खुशी जी राधे राधे, आपको भी राधे राधे।

उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर एक और मैसेज आया है, ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं भूपी शर्मा जी। कहते हैं संपत्ति और उपलब्धि, प्रतिष्ठा, सम्मान, पद कुछ भी मायने नहीं रखता अगर आप खुश नहीं। जिंदगी की सबसे पहली जरूरत है आपका खुश रहना। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत विचार आपने हमारे साथ शेयर किया, उसके लिए थैंक यू। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है राशिद नाथ जी का, ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं, शुक्रिया आपका, मोस्ट वेलकम सर। नेक्स्ट मैसेज हमें पहुँचाती हैं ललिता कश्यप जी नवीन नगर मुरादाबाद से। गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। आज मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, बाहर बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो इस प्यारे से मौसम का आनंद लीजिएगा। कहती हैं कि सावन का दूसरा दिन है, भोलेनाथ जी का प्यार नाम खुशियों से आपका अच्छा खुशियों से भर जाए, जीवन में हर पल मिले आपको सम्मान, महादेव जी की कृपा सदैव आपके साथ रहे।

0: तो चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा ट्रैक, उसके बाद लौट कर आते हैं, फिर करेंगे आपसे भी ढेर सारी बातें। आप कहीं मत जाइए, और भी अपडेट्स हैं जो आप तक मुझे साझा करनी है। एंड बताने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन समय का भी ध्यान रखना होता है। और हमारे पास टेक्स्ट मैसेज भी आए हैं, तो टेक्स्ट मैसेज को भी रीड कर लेते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं हमारे जो श्रोता हैं वो हमसे नाराज हों। और ये हमारे पास मैसेज आया है, नमस्ते दीदी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग मोहिनी। सनी जी का मैसेज हमारे पास आया है, एंड इन्होंने अपना बस मैसेज हमें पहुँचाया है कुंदनपुर मुरादाबाद से। थैंक यू सो मच अपना मैसेज पहुंचाने के लिए। चलिए दोस्तों सुनते हैं कुछ खूबसूरत से गीत, उसके बाद करेंगे आपसे भी बातचीत। एंड आप कुछ पहुंचाना चाहते हैं तो पहुंचा सकते हैं, बहुत ही अच्छा चांस है आपके पास।
1: दोनों देसी रानियों को पेश किया जाए।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: कोई मिल गया,
2: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
4: म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। शो का नाम है मॉर्निंग मसाला। खुशी है आपके साथ आपकी दोस्त। जी हाँ दोस्तों, वक्त हुए है अभी 11:47। दोस्तों, किताबें सिर्फ कहानियां नहीं सुनाती, वो समाज का आईना भी होती हैं। और ऐसे ही आईने को शब्दों में ढालने वाले महान साहित्यकार थे मुंशी प्रेमचंद जी। आज 31 जुलाई को हिंदी और उर्दू साहित्य के अमर लेखक मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती है। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास लम्ही गांव में हुआ था। उनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। उन्होंने शुरुआत में नवाब राय नाम से लेखन किया, लेकिन बाद में वे मुंशी प्रेमचंद्र के नाम से पूरे देश में प्रसिद्ध हुए। मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने लेखन में किसानों, मजदूरों, महिलाओं, गरीबी और आम इंसान के संघर्ष को बड़ी सादगी और सच्चाई के साथ प्रस्तुत किया। उनकी रचनाएं केवल मनोरंजन नहीं बल्कि समाज को सोचने की नई दिशा देती हैं। उनके प्रमुख उपन्यास हैं गोदान, गबन, निर्मला, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि। उनकी अमर कीर्तियां, उनकी प्रसिद्ध कहानी में ईदगाह और भी बहुत सारी कहानियां हैं, आज भी उतनी ही लोकप्रिय हैं। मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। उन्होंने लगभग 300 से अधिक कहानियां, 14 उपन्यास, अनेक नाटक, निबंध और लेख लिखे। 8 अक्टूबर 1936 को उनका निधन हुआ, लेकिन उनकी लेखनी आज भी हर पीढ़ी को प्रेरित करती है। शब्दों से समाज को बदलने का सपना देखने वाले महान सत्या साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी को उनकी जयंती पर शत-शत नमन करते हैं। उनकी रचनाएं हमें हमेशा सच्चाई, संवेदनशीलता और इंसानियत का रास्ता दिखाती रहेंगी। और दोस्तों, यहाँ पर आपके और भी संदेश आए हैं, मैं उनको भी शामिल कर लेती हूँ। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं अंसार हुसैन जी दौलत बाग मुरादाबाद से। कहते हैं, मैम आपके द्वारा जो आप प्रोग्राम प्रस्तुत कर रही हैं बहुत ही खूबसूरत होता है एंड बहुत ही आनंद आता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमें पहुंचाते हैं अजीत कसाना जी। थैंक यू सो मच आरजी खुशी, मोस्ट वेलकम सर। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है गायत्री जी का, और ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं प्रकाश नगर से। कहती है, मैम आपको सावन के पावन महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। सेम टू यू मैम। उसके अलावा यहाँ पर एक और मैसेज आया है, और ये मैसेज अपना पहुँचाते हैं राजू जी न्यू मुरादाबाद से। कहते हैं, खुशी जी हमें एक खूबसूरत सा गाना आप सुनवा दीजिएगा। सावन का इतना खूबसूरत सा महीना है, मौसम भी इतना सुहाना है। बिल्कुल सर, सुनवाते हैं, फिर देर किस बात की। चलिए सुनते हैं एक खूबसूरत सा ट्रैक, उसके बाद करेंगे आपसे बातचीत।

0: हाई एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 और शो का नाम था मॉर्निंग मसाला। देखिए दोस्तों, अभी वक्त होने वाला है, राइट नाउ मेरी घड़ी में अभी समय हुआ है 11:59 और अभी मेरे जाने का भी वक्त हो गया है। जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। जब आप सभी से हम बातचीत करते हैं ना, तो मन करता है कि और बातें करें, लेकिन क्या करें श्रोताओं, समय हमें अनुमति नहीं देता है। लेकिन कोई बात नहीं, खुशी आपसे प्रॉमिस करती है, वो आपको 3 से 5 फिर से मिलेगी। तो अभी के लिए सुनते रहिएगा एफएम मुरादाबाद 89.6। अपना ख्याल रखिएगा और यूं ही मुस्कुराते रहिए, अपनों के साथ रहिए। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, कीप स्माइलिंग।
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार, तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: होने पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने सदन के पटल पर अपने मंत्रालय से संबंधित दस्तावेज रखे। ग्रामीण विकास और पंचायती राज से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन ने अपने मंत्रालय से संबंधित फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने की व्यवस्था की समीक्षा पर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की 22वीं रिपोर्ट की सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति के बारे में बयान दिया। इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। कई सदस्यों ने अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाया। हंगामा के जारी रहने पर सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में बैठक शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। वे इस मुद्दे पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल के दौरान सदन की कार्यवाही में बाधा न डालने की अपील की। उन्होंने कुछ विपक्षी सदस्यों द्वारा जानबूझकर डाली गई बाधा पर चिंता भी व्यक्त की।
1: आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए। आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं, उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें।
0: लोकसभा की कार्यवाही एक स्थगन के बाद अब जारी है। इससे पहले कल राज्यसभा की मंजूरी के बाद लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 संसद में पारित हो गया। लोकसभा में यह विधेयक बुधवार को पारित हुआ था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रूपये तक का जुर्माना और उनकी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान शामिल है। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुए प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि अग्रिम पंक्ति में तैनात कर्मियों को भीड़ के हिंसक तत्वों ने घेर लिया, उन पर पत्थर फेंके और शारीरिक रूप से मारपीट की। परिवार वालों ने यह भी दावा किया कि इस घटना में कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में जारी आतंकरोधी अभियान में सुरक्षा बलों ने भंगाई जंगलों में एक संदिग्ध आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि तलाश अभियान के दौरान सुरक्षा कर्मियों ने खाद्य सामग्री और दैनिक उपयोग की वस्तुएं बरामद की, जिससे संकेत मिलता है कि आतंकवादी इस ठिकाने का इस्तेमाल अस्थायी आश्रय और रसद अड्डे के रूप में कर रहे थे। भूटान नरेश जिग्मे खेसा नामग्याल वांगचुक ने आज विदेश सचिव विक्रम मिश्री से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच विकास और सहयोग की प्रगति की समीक्षा की गई। सोशल मीडिया पोस्ट में भूटान नरेश ने विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति की सराहना करते हुए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। आइजोल के सूचना और जनसंपर्क मंत्री पूबी लालचंद जोवा ने कहा है कि आकाशवाणी आइजोल ने मिजो पहचान को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आकाशवाणी आइजोल की हीरक जयंती के अवसर पर अपने संदेश में श्री लालचंद जोवा ने कहा कि 1966 में अपनी स्थापना के बाद से इस स्टेशन ने मिजो भाषा, संस्कृति, रीति रिवाजों और परंपराओं के संरक्षण तथा संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अपने संदेश में आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने कहा कि बदलते समय में भी आकाशवाणी आइजोल मिजोरम के लोगों के लिए सूचना का एक विश्वसनीय स्रोत और मार्गदर्शक बना हुआ है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली रूप से बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 103 अंक बढ़कर 78031 जबकि निफ्टी 44 अंक बढ़कर 24361 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे रीना। पिछले एपिसोड के बाद बहुत सारे कॉल आए, लोगों के मन में ढेरों सवाल है लेकिन ज्यादातर खुलकर बात नहीं करना चाहते, तो आज हम उसी जरूरी कम बोली जाने वाली बात पर सिर्फ चर्चा करेंगे, परिवार नियोजन। और आज हमारे साथ है आपकी हमारी समझदार और प्यारी टीकन भाभी।
1: नमस्कार दोस्तों, आरजे रीना ने मुझे फोन किया तो बोली, भाभी आज का मुद्दा बहुत जरूरी है, आपके बिना बात अधूरी, तो बस मैं चली आई।
0: शुक्रिया भाभी, चलिए ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं सीधे सवाल पर आती हूँ। महिलाएं जानना चाहती है परिवार नियोजन और उनके असल में क्या फायदा होता है, क्या इससे उनका शरीर मजबूत होता है और क्या ये घर की आमदनी पर भी असर डालता है।
1: सही कहा आरजे रीना, अब मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। हमारे गाँव की रेखा दीदी की शादी कम उम्र में हो गई थी। परिवार साधारण था, 5 बहनें थी। 10वीं के बाद पिता ने पढ़ाई छुड़वा दी और शादी कर दी। रेखा पढ़ना चाहती थी लेकिन घर वालों को लगता था अच्छा घर मिल गया तो पढ़ाई की क्या जरूरत है। शादी के कुछ महीने बाद ही सबने पूछना शुरू कर दिया बच्चा कब होगा, लेकिन रेखा जानती थी कि अगर उसने जल्दी माँ बनने का फैसला किया तो उसके सपने वहीं रुक जाएंगे। उसने अपने पति से बात की, कहा कि कुछ साल रुक जाइए, मैं पढ़ाई पूरी करके कंप्यूटर सीख सकती है और अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। पहले तो पति नाराज हुए लेकिन धीरे धीरे समझ गए। उसने अपने परिवार को भी समझाया। रेखा ने घर के सारे काम किए, खेत में भी हाथ बटाया, 12वीं की परीक्षा भी दी और कंप्यूटर क्लासेस ज्वाइन की, फिर BA में एडमिशन लिया और सरकारी नौकरी की तैयारी करनी शुरू कर दी। गाँव वाले ताना मारते थे, अगर बच्चा नहीं चाहिए था तो शादी क्यों की, नौकरी का क्या करेगी, लेकिन रेखा डरती रही और पढ़ाई पूरी होने से पहले ही उसे कलेक्टर ऑफिस में एक अच्छी नौकरी मिल गई। अब वही लोग जो उसे ताना देते थे उसके पास अपने काम लेकर आने लगे। शादी के लगभग 4 साल बाद जब रेखा 22 की हुई, उसने परिवार बढ़ाने का फैसला किया। सोच समझकर खुशी से अब वो शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से तैयार थी।
0: वाह भाभी, रेखा की कहानी तो सब कुछ साफ कर दिया। परिवार नियोजन से महिलाओं को न सिर्फ समय मिलता है अपने सपनों को पूरा करने का, बल्कि वो शारीरिक और मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहे। और जब माँ मजबूत होती है तभी परिवार भी मजबूत बनता है।
1: और सबसे जरूरी बात, ये फैसला जबरदस्ती नहीं होना चाहिए, ये महिलाओं और उसके साथी दोनों की समझदारी आपसी बातचीत से आना चाहिए। सोच समझकर लिया गया फैसला ही परिवार को देता है सही दिशा। सेहत सही तो लाभ कई।
0: भाभी, कई लोग सोचते हैं कि बच्चों में उम्र का अंतर कोई खास मायने नहीं रख, लेकिन असल में इसका सेहत और परिवार दोनों पर बड़ा असर होता है ना?
1: बिल्कुल सही कहा बहन आपने। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने ना समझी में मैंने पहला बच्चा खो दिया था, फिर मैंने और आपके सेहतिया भैया ने निर्णय लिया कि पहले मैं अपनी सेहत सही करूंगी फिर दूसरे बच्चे की सोचूंगी। और हमारे दोनों बच्चों में 4 साल से भी ज्यादा का अंतर, अगर एक बच्चे के पैदा होने के 6 महीने के अंदर ही दूसरा गर्भ ठहर जाए तो माँ के शरीर को पूरा आराम नहीं मिल पाता, इससे माँ कमजोर हो जाती है और आने वाले बच्चे को भी पूरा पोषण नहीं मिल पाता, कई बार बच्चा समय से पहले भी पैदा हो सकता है।
0: मतलब माँ की सेहत के लिए भी जरूरी है कि उसे पूरा वक्त मिले खुद को रिकवर करने का।
1: कम से कम 2 साल का अंतर हो तो माँ का शरीर पूरी तरह से ठीक हो जाता है। याद रखें कि माँ के खून और माँ की हड्डियों से ही बच्चा, हड्डी से ही बीज बनता है। एक बच्चे के बाद कम से कम 3 साल का समय माँ को फिर से तंदुरुस्त होने के लिए मिलना चाहिए। अगला बच्चा तंदुरुस्त होगा और माँ के अंदर भी ताकत बनी रहेगी, इसलिए बच्चे के बीच गैप होना जरूरी है।
0: और अगर देखा जाए तो पूरे परिवार को भी इससे फायदा होता है।
1: हाँ आरजे रीना, जब बच्चे सोच समझकर और सही अंतराल पर हो तो परिवार आर्थिक रूप से मजबूत रहता है। बच्चों की पढ़ाई, उनके खाने पीने और इलाज का खर्च ठीक से उठाया जा सकता है। जल्दी जल्दी बच्चे होंगे तो खर्च भी बढ़ेगा और ध्यान भी बटेगा।
0: बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास पर भी इसका असर पड़ता है क्या?
1: बिल्कुल पड़ता है। जब बच्चों के बीच ठीक ठाक उम्र का फासला होता है तो छोटा बच्चा अपने बड़े भाई बहन से बहुत कुछ सीखता है, बोलना चालना समझना, इससे दोनों का विकास बेहतर होता है। लेकिन अगर दोनों बहुत छोटे हैं तो माँ बाप के लिए दोनों को संभालना मुश्किल हो जाता है।
0: आपने तो बड़े कमाल की बात कह दी।
1: ये बातें हर घर तक पहुँचे तभी तो हर परिवार रहेगा खुशहाल।
0: परिवार नियोजन से महिलाएं मजबूत होती है, ये बात कितनी सच है?
1: आरजे रीना, ये बात बिल्कुल सच है। एक महिला खुद तय कर सके कि कब माँ बनना है, कितने बच्चे चाहिए और अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सके, यही तो असली सशक्तिकरण है।
0: कैसे भाभी?
1: देखो, जब महिला के पास सही समय और सही योजना होती है तो वे अपने लिए सोच सकती हैं। मेरी बहन सरला की बात लो, उसने समझदारी से फैसला लिया, दो बच्चों के बाद परिवार नियोजन अपनाया जिससे वो खुद और अपने बच्चों की परवरिश दे सकी। जब घर की जिम्मेदारियां संभाली गई तो उसने सिलाई का कोर्स किया, फिर धीरे धीरे अपना काम शुरू किया, पहले छोटे मोटे ऑर्डर लिया, फिर हुनर बढ़ाया और कमाई भी बढ़ने लगी। अब वो अपने परिवार को आर्थिक रूप से संभाल रही है, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रही है और खुद भी आत्मनिर्भर है। परिवार नियोजन ने से ये मौका दिया कि वो अपने सपनों को पूरा कर सके और यही सही योजना है, सही दिशा की ताकत है।
0: मतलब परिवार नियोजन से सरला को अपनी जिंदगी संवारने का मौका मिला।
1: हाँ जब महिला पर जल्दी माँ बनने का दबाव नहीं होता तो उसे अपने भविष्य के बारे में सोचने का मौका मिलता है। वो पढ़ सकती है, काम कर सकती है, खुद के पैरों पर खड़ी हो सकती है और जब वो आत्मनिर्भर होती है तो अपने परिवार की भी अच्छी देखभाल कर सकती है।
0: तो भाभी, परिवार नियोजन से न सिर्फ महिला की जिंदगी होती है बल्कि पूरे परिवार का भविष्य भी अच्छा बनता है।
1: बिल्कुल सही कहा रीना, जब सही योजना बनाई जाती है तो पूरा परिवार खुशहाल होता है और सबसे बड़ी बात, महिलाओं को अपने फैसले लेने की आज़ादी मिलती है।
0: श्रोताओं, कई जगहों पर परिवार नियोजन को अपनाने में सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएं भी है, लोग सोचते हैं कि उनकी परंपराओं के खिलाफ है। टीकन भाभी, अपना इस पर क्या विचार है?
1: हमारे यहाँ परंपराएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन हर परंपरा समय के साथ बदलती भी है। अगर कुछ चीजें हमारे जीवन को बेहतर बना सकती हैं तो उन्हें अपनाने में कोई बुराई नहीं है। परिवार नियोजन का मतलब ये नहीं कि हम अपने मूल्यों को छोड़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम अपने परिवार को सही तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। जब सही जानकारी मिलेगी तो लोग इसे अपनाने के लिए आगे आएंगे।
0: वैसे एक और मुद्दा है, पुरुषों की भागीदारी, कई बार महिलाओं को अकेले ही फैसला लेना पड़ता है, लेकिन अगर पति और परिवार साथ है तो फैसला लेना आसान हो जाता है।
1: देखो, परिवार नियोजन केवल महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं, जब पति, पिता और अन्य पुरुष सदस्य इस विषय को गंभीरता से लेंगे तभी सही बदलाव आएगा।
0: लेकिन जब पुरुष नसबंदी की बात आती है तो कई पुरुष इसे अपनाने से डरते हैं। वो सोचते हैं कि इससे उनकी मर्दानगी पर असर पड़ेगा।
1: यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। डॉक्टर कहते हैं कि पुरुष नसबंदी सुरक्षित और प्रभावी है, इससे पुरुष की क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ता। पुरुष नसबंदी परिवार नियोजन को आसान और सुरक्षित बना सकती है।
0: वैसे सरकार भी परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है।
1: सरकार ने कई पहल की हैं, जैसे कि मुफ्त गर्भ निरोधक साधक, जागरूकता अभियान और विपत्ति प्रोत्साहन। कई राज्यों में महिलाओं और पुरुषों को परिवार नियोजन के साधनों को अपनाने के लिए विशेष लाभ दिया जाता है। सरकार कोशिश तो कर रही है, पर साथ ही जागरूकता और सही जानकारी पहुंचाना बहुत जरूरी है। अगर हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझे और सही विकल्प चुने तो परिवार नियोजन का लाभ सभी को मिल सकता है।
0: छोटा परिवार सुखी परिवार, एक बार फिर बताइए, छोटे परिवार से क्या फायदा है?
1: आजकल एक बच्चे को पालने में ही बड़ा खर्च है, उसकी पढ़ाई, अच्छे खाने पीने का ध्यान, कपड़े, दवाई, सब में पैसा लगता है। अगर जल्दी जल्दी कई बच्चे हो तो खर्च इतना बढ़ जाता है कि माता पिता के लिए संभालना मुश्किल हो जाता है।
0: मतलब अगर हर साल एक बच्चा हो तो मुश्किल बढ़ जाती है।
1: अगर हर साल एक बच्चा हो तो माँ के पास ना तो आराम करने का समय होगा, ना ही बच्चों की सही देखभाल करने का। पिता भी बच्चों की जरूरतों को पूरा करने में ही लगे रहेंगे और घर के बाकी खर्च पूरे करने में परेशानी होती है।
0: तो फिर क्या करना चाहिए?
1: समझदारी से योजना बनानी चाहिए। जब बच्चों के बीच सही अंतर रखा जाता है तो माता पिता उन्हें बेहतर पढ़ाई का मौका दे सकते हैं, अच्छा खाना खिला सकते हैं और सेहत का सही ध्यान रख सकते हैं। इससे बच्चे विशेष रूप में सफल होते हैं।
0: तो आप कह रही हैं कि ये सिर्फ खर्च बनाने की बात नहीं बल्कि बच्चों के भविष्य का सही इन्वेस्टमेंट है।
1: सही कहा, जब बच्चों को अच्छी शिक्षा, सही पोषण और बेहतर जीवन शैली मिलती है तो वो बड़े होकर आत्मनिर्भर बनते हैं। इससे पूरा परिवार मजबूत बनता है और भविष्य में आर्थिक रूप से भी सुरक्षित रहता है।
0: तो भाभी, परिवार छोटा करने के लिए कौन कौन से उपाय हैं?
1: अब तो बहुत सारे विकल्प हैं, गोली, कॉन्डोम, इंजेक्शन और यहाँ तक कि इम्प्लांट भी। गांव में हमारी आशा बहन सब समझाती हैं, सब आसानी से मिलता है, गोपनीयता भी रहती है, मतलब कोई और जाने न जाने पति पत्नी को सब पता होता है।
0: तो क्या परिवार नियोजन के उपाय महिलाओं को नुकसान नहीं पहुँचाते?
1: सही जानकारी लेकर उचित इस्तेमाल हो तो ये सब सुरक्षित है। महिलाएं खुद तय करें कि सही क्या है, यही असली सशक्तिकरण है।
0: क्या युवाओं को भी जानकारी होनी चाहिए?
1: बिल्कुल होनी चाहिए। युवा अवस्था में अगर सही जानकारी मिले तो अनचाहे गर्भ अवस्था रोकी जा सकती है। हमारे गांव की रेखा को देखो, उसने शादी के बाद 2 साल तक बच्चा नहीं चाहा, पढ़ाई की, कंप्यूटर सीखा और वो सरकारी दफ्तर में काम कर रही है। सही जानकारी से महिलाएं अपनी जिंदगी खुद तय कर सकती हैं।
0: भाभी, लेकिन कई लोग कहते हैं कि गोली खाने से बांझपन हो जाता है या कॉन्डम से मजा नहीं आता, क्या ये सच है?
1: ये सब अफवाह है। गोली हो या इंजेक्शन, ये सब सिर्फ थोड़े समय के लिए गर्भ रोकता है, बांझ नहीं बनाता। कॉन्डम का तो फायदा डबल है, गर्भ भी नहीं होता और बीमारी भी नहीं होती।
0: ये सारी जानकारी मिली कहाँ से है, कौन समझाता है?
1: हमारी आशा दीदी हर मर्ज की दवा है। वे घर घर जाकर लोगों को समझाती हैं, सही जानकारी देती हैं और दवाइयाँ लाकर देती हैं। अगर किसी को जरूरत हो तो हॉस्पिटल जाने में भी मदद करती हैं।
0: आशा दीदी तो सच में बड़ी काम की है, लेकिन क्या सिर्फ उन्हीं से मदद मिलती है? आशा दीदी के अलावा गर्भ निरोधक उपायों में और कौन मदद करता है?
1: सरकारी अस्पताल के डॉक्टर और नर्स भी मदद करती हैं। अब तो स्वास्थ्य सेवा प्रथाओं को खास परीक्षण दिया जा रहा है जिससे वो लोगों को सही परामर्श दे सकें और गर्भ निरोधक उपायों के बारे में पूरी जानकारी दे सकें। इससे महिलाएं सही फैसला ले पाती हैं और परिवार की सेहत भी बनी रहती है।
0: परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए और क्या किया जा रहा है?
1: सरकार ने भी बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। अब नए गर्भ निरोधक उपाय जैसे इंजेक्शन, इम्प्लांट भी उपलब्ध हैं। इससे महिलाओं को सुविधाजनक तरीके से परिवार नियोजन करने में मदद मिलती है। मिशन परिवार विकास जैसी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, जिससे जागरूकता बढ़ेगी और लोग सही जानकारी पा रहे हैं।
0: पर मिशन परिवार विकास है क्या?
1: मिशन परिवार विकास के अंतर्गत सरकारी नव दाम्पत्ति को परिवार नियोजन किट देती है, साथ ही सास बहू सम्मेलन का आयोजन करती है जिससे कि सास और बहू के बीच बातचीत हो सके और उन दोनों को समझ आ सके परिवार नियोजन कितना जरूरी है।
0: तो क्या इसका मतलब है जो बहुएं अपनी सास पर सास को घर में बात नहीं समझा पाती उनके इस सम्मेलन में संवाद करके आशंकाएं और नियोजन से संबंधित वार्तालाप कर सकती है?
1: जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने।
0: तो इसका मतलब परिवार नियोजन अब पहले से ज्यादा आसान हो गया है।
1: ऐसा ही, अब तो मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के साथ गर्भ निरोधक सेवाएं भी जोड़ दी गई हैं। यानी जब भी कोई सरकारी अस्पताल जाता है उसे परिवार नियोजन के विकल्पों की जानकारी भी दी जाती है। इससे लोगों को सही समय पर जरूरी सलाह मिल जाती है।
0: और ये मोबाइल हेल्थ और टेलीमेडिसिन क्या है?
1: मोबाइल पर भी जानकारियां मिलती हैं, परिवार नियोजन के हेल्पलाइन नंबर हैं, वहां से कॉल करके मदद मिल सकती है। अब तो बस एक फोन कॉल या ऐप डाउनलोड करने से ही सारी सूची मिल जाती है। टेलीफोन मेडिसिन के जरिए लोग डॉक्टर से सीधा बात कर सकते हैं, सही जानकारी पा सकते हैं और हाँ, याद दिलाने वाले रिमाइंडर भी सेट कर सकते हैं, खासकर जो लोग दूर दराज के इलाकों में रहते हैं और उनके लिए ये बहुत ही फायदेमंद है।
0: तो सरकार के प्रयास से डॉक्टर, आशा दीदी और मोबाइल सेवाएं सब मिलकर परिवार नियोजन को आसान बना रहे हैं।
1: अब हर किसी के पास जानकारी है और सही रास्ता चुनने का मौका भी है। जब परिवार नियोजन सही तरीके से होगा तो माँ स्वस्थ रहेगी, बच्चा सेहतमंद होगा और पूरा परिवार खुशहाल रहेगा।
0: भाभी आपने तो आज कमाल कर दिया, आसान भाषा में बड़ी जरूरी बातें समझा दी।
1: अरे बहन, बात सीधी है, सोच समझकर बच्चा पैदा करो, उनके बीच सही अंतराल रखो ताकि माँ का शरीर भी ठीक रहे, बच्चे भी सेहतमंद रहेंगे और परिवार की जिंदगी भी खुशहाल बनी रहेगी। और हाँ, महिलाएं पढ़ें, आगे बढ़ें, कमाएं, तभी तो घर और समाज देश की असली तरक्की होगी।
0: तो साथियों सुन लिया ना, परिवार नियोजन कोई मजबूरी नहीं बल्कि समझदारी भरा फैसला है। जब आप सही समय पर बच्चा पैदा करने का निर्णय लेते हैं तो आप न सिर्फ अपने परिवार की सेहत और खुशहाली की रक्षा करते हैं बल्कि अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य भी देते हैं। याद रखिए, माँ स्वस्थ रहेगी तभी बच्चा मजबूत होगा, बच्चा मजबूत होगा तभी परिवार आगे बढ़ेगा, परिवार आगे बढ़ेगा तभी देश तरक्की करेगा। तो आज की चर्चा को सिर्फ सुनिए मत, अपने घर में, अपने मोहल्ले में और हर उस जगह जहां आपकी बात पहुंच सकती है परिवार नियोजन के संदेश को फैलाइए। सेहत सही लाभ कई यही है हमारा नारा और यही है आगे बढ़ने की राह। सुनते रहिए कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई। अगली बार फिर मिलेंगे नई और रोचक जानकारी के साथ। नमस्कार और सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 FM रेडियो, बजाते रहिए एंड गुनगुनाते रहिए।
2: हम सब मिलकर आज यह शपथ लेते हैं, हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
3: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य और प्राथमिकता देंगे क्योंकि सेहत ही असली धन है।
4: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
2: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
3: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
4: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
2: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
3: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई।
4: शुक्रिया सेहतिया भैया।
2: तो दोस्तों आज का हमारा यह सेगमेंट यहीं समाप्त होता है। याद रखें, सही जानकारी, समय पर इलाज और सामूहिक प्रयास से हम हर बीमारी का मुकाबला कर सकते हैं। अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें, मास ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन के तहत दवाई जरूर खाएं। सेहतिया भैया के अनुभव से हमें बहुत प्रेरणा मिली है। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।
0: This is me, RJ Reena, FM मुरादाबाद 89.6 FM रेडियो, बजाते रहिए एंड गुनगुनाते रहिए जनाब। आज का दिन बहुत ही ज्यादा खास है हमारे लिए क्योंकि आज है 11 जुलाई और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और ये दिन हमें हमेशा याद दिलाता है कि बढ़ती जनसंख्या सिर्फ आबादी नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। और परिवार नियोजन को लेकर क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही है और आम जनता कैसे इसका लाभ उठा सकती है, इसी की जानकारी के लिए आज हम पहुंचे हैं CMO ऑफिस, जहां मेरे साथ है डॉक्टर संजीव जी। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और सर आप अपने बारे में थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताएं और विश्व जनसंख्या दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका क्या उद्देश्य है और 2025 का इसकी थीम क्या रहने वाली है। सर,
5: मैं डॉक्टर संजीव बेलवाल मुरादाबाद से हूं और मेरे पास फैमिली प्लानिंग का भी कार्य मैं देखता हूं और सभी और भी नेशनल प्रोग्राम्स मेरे द्वारा देखे जा रहे हैं। 11 जुलाई को बेसिकली विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और इस बार की जो थीम हमारे यहाँ रखी गई है, हेल्दी टाइमिंग एंड स्पेस बिटवीन द प्रेगनेंसीज ऑफ द प्लांट्स एंड द पेरेंटहुड। माँ बनने की उम्र वही है वह जब तन और मन की तैयारी सही हो। तो बेसिकली हम लोगों को अपना एक पॉपुलेशन कंट्रोल करना है, उसके बारे में हमें ये सारी लोगों को अवेयरनेस के बारे में हमें ब्रीफ करना होता है, सोसाइटीज को बताना होता है और जितने भी हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं वो जगह जगह जाके सारी चीजें कुछ हम इसके लिए प्रसार प्रसार भी करते हैं, ICs भी बनवाया जाता है, सास बेटा बहु सम्मेलन भी इसके तहत हमारे यहाँ पे कराया जाता है जो कि विलेज लेवल पे होता है। जो कपल्स होते हैं उन कपल्स को जितने भी हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल्स करने के मेथड्स होते हैं वो सारी चीजें उसमें समझाई जाती है। तो इस बार जो हमारी गवर्नमेंट ने जो थीम रखी है, हेल्दी टाइमिंग स्पेसिंग बिटवीन द प्रेगनेंसीज ऑफ द एग प्लांट पेरेंटहुड।
0: सर, तो अगला क्वेश्चन हमारा ये होगा कि भारत या विशेष रूप से हमारे जिले में जनसंख्या वृद्धि की वर्तमान स्थिति क्या होने वाली है?
6: वाली है?
5: देखिए मैम, अभी भी कुछ अवेयरनेस की कमी है और कुछ तबका एक ऐसा होता है कि जो अभी इस पे ध्यान नहीं दे रहा, तो उसके लिए हेल्थ डिपार्टमेंट की साइड से विलेज लेवल्स पे, मोहल्लाज में, सभी जगह आशाओं के माध्यम से, आंगनवाड़ी के माध्यम से और हमारे जितने भी आईसीज के माध्यम से हम उसको, तो हमारी पॉपुलेशन है वो ज्यादा इंक्रीज ना हो, तो ये चीजें उसको बताया जाता है और इसीलिए, और अर्ली स्पेसिंग ना हो जल्दी से, बहुत जल्दी मैरिज ना हो, है ना, ये सारी चीजें जो रूढ़िवादी समस्याएं आती हैं उनके बारे में ब्रीफ किया जाता है। और अभी हम डिस्ट्रिक्ट हमारा मुरादाबाद जो अभी इतना ज्यादा ग्रोथ नहीं कर रहा, तो हमारे अच्छे खासे लोग हैं जो हमारी फैमिली प्लानिंग को अडॉप्ट करते हैं।
0: सर, हमारा अगला क्वेश्चन है, सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं जो परिवार नियोजन में मदद करती है?
5: मैडम, बेसिकली क्या है कि इसमें टेम्पररी मेथड और परमानेंट मेथड दोनों ही इसमें प्रकार में यूज होते हैं। टेम्पररी मेथड्स में मेल एंड फीमेल दोनों को लिए होता है, जिसमें हम एनएसबी बोलते हैं और फीमेल स्टरलाइजेशन जो होते हैं, जो कि ट्यूबेक्टमी की जाती है, जिससे इसमें कोई हानि नहीं होती है, ना ही उसको कोई हेल्थ, तो मतलब हेल्थ प्रॉब्लम्स होती कराने के बाद, तो ये परमानेंट मेथड्स के रूप में आते हैं। दूसरे टेम्पररी मेथड्स होते हैं, जैसे इंट्रा कॉन्सेप्टिव होती है, ओरल स्पिल्स होती है, हमारे पास छाया होता है, अंतरा होता है और अन्य डिवाइसेस भी हमारे पास यूज होती है, और जो हमारा कॉन्डम्स यूज किए जाते हैं, ये सारी जो मतलब टेम्पररी में नहीं आती है, ये बेसिकली आदमी इनको यूज करने के बाद अपनी फैमिलीज को एक नॉर्मल उसमें साइज में रख सकता है, और कोई इसमें कुछ इंजेक्टेबल्स भी होते हैं जो कि कुछ 6 महीने के लिए दिए जाते हैं, और कुछ इंटरटाइन डिवाइसेस होती है वो उसमें यूज की जाती है, तो वो लोग सब यहाँ पे अडॉप्ट करते हैं और अच्छी खासी मात्रा में हमारा ये।
0: क्या आज की पीढ़ी परिवार नियोजन को लेकर कितना ज्यादा जागरूक है?
5: अगर मैं बात करूँ तो पुराने जमाने में और आज के जमाने में काफी डिफरेंसेस है। पहले 80s में, 70s की अगर हम बात करते तो एक फैमिलीज में मेल बेबी की लालसा में लोग अधिक बच्चे जन्म पैदा कर लेते थे फैमिलीज में, ये मैंने अपने गांव में भी देखा है, और कि वही एक बेटा आवश्यक है। लेकिन आज की कंडीशंस में जो यंगर्स हैं वो इस तरह की भावना को नहीं सोचते हैं, उनके लिए मेल बेबी और फीमेल बेबी दोनों ही समान होते, तो इस तरह की कंडीशन अब बहुत कम हो गई है कि भाई मेल की अपेक्षा ज्यादा रखते हुए और फैमिली को साइज एक रीजन से ये भी करता था। और आज लोग इसको, जो यंगर्स हैं, आज की जो पीढ़ी है, वो फैमिली प्लानिंग को एक्सेप्ट कर रही है।
0: परिवार छोटा रखने से क्या फायदे हो सकते हैं?
5: देखिए मैम, परिवार अगर आपका छोटा रहेगा तो आपका एक मेंटल पीस रहेगा, फाइनेंशियल समस्याएं नहीं आएंगी, आप अपने बच्चों को अच्छी सी एजुकेशन दे सकते हैं, अगर कभी कोई हेल्थ इश्यूज आता है उसका भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, तो मेंटल पीस हो गया, आपका सोशल एक्टिविटीज आप अच्छे से करा सकते हैं, बच्चे को अच्छे से शिक्षा दे सकते हैं, कोई भी चीज आप किसी भी फील्ड में, किसी भी साइड में अगर आप भेजेंगे तो उसको अच्छे से उसका लालन पालन पोषण किया जा सकता है। अगर बिग फैमिली से आपका जो साधन है, सोर्स ऑफ इनकम कम है और आपका बिग फैमिली, तो आपको मेंटली प्रॉब्लम्स होती है, हर चीजों की समस्या उसको जूझना से पड़ता है। आपका छोटा फैमिली होगा, खुशहाल रहेगा और अच्छे से जीवन जिएगा।
0: क्या आपको लगता है कि भारत की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है?
5: मैम, भारत की जनसंख्या बढ़ रही है इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट्स अभी भी, अभी हमारे जो हम ये फैमिली प्लानिंग के प्रोग्राम से ऑल ओवर इंडिया चल रहे हैं, और आने वाली पीढ़ी इसको समझ रही है कि ज्यादा अगर ये इस तरह से पॉपुलेशन की ग्रोथ होगी तो उसमें आने वाली समस्याएं होंगी, तो बहुत सारी चीजें होती है, एजुकेशन में प्रॉब्लम्स आती है, हेल्थ में प्रॉब्लम्स आती है, ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट्स में समस्याएं आती है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं आपको मतलब ऑक्यूपेशन में, सर्विसेज लेने में, देने में सारी समस्याएं क्रिएट होती है अगर बहुत लार्ज पॉपुलेशन होती है। दूसरा, हमारा एग्रीकल्चर पे, लैंड पे भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो ये सारी समस्याएं पॉपुलेशन की होने की वजह से, कुछ बेसिकली एंटी एलिमेंट्स भी कभी कभी इस तरह से उत्पन्न हो जाते हैं, घर में फाइनेंशियल की क्राइसिस होती है और बच्चे किसी दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं, तो ये सब चीज कंट्रोल होना आवश्यक है, और हेल्दी लाइफ, सुकून की जीवन जीना, पीसफुल लाइफ जीने के लिए आपको एक छोटा परिवार की आवश्यकता है।
0: बिल्कुल, गांव और शहर में परिवार नियोजन को लेकर क्या फर्क है आजकल अगर देखा जाए तो आज के टाइम?
5: देखिए मैम, अभी जो हमारा गाँव में और शहर में दोनों में जो एजुकेटरी लेवल्स है वो लगभग समान सा आता चला जा रहा है, तो दोनों ही साइड में इसकी एक्सेप्टेंस बढ़ रही है। विलेजेस में अभी थोड़ा सा जो हमारा एजुकेशन लेवल है थोड़ा कम है, तो वहाँ के जो अभी पुराने लोग हैं उनमें थोड़ा सा हमने देखने को मिला है, उनके तो अंदर थोड़ी सी हेजिटेशंस रहती है, तो उसी के लिए गवर्नमेंट की साइड से ये प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जैसे सास बेटा बहु सम्मेलन, ये बेसिकली एक छोटे से गाँव में उसमें आंगनवाड़ी, आशा, एनम और अन्य गांव के समाज लोग वहां बैठते हैं एक साथ और उसके पूरी फैमिली प्लानिंग के बारे में चर्चा की जाती है। उस चर्चा करने के बाद लोग इसको समझ रहे हैं धीरे धीरे और हम शहर और गांव को बराबर लाने की कोशिश में लगी हुई है सरकार हमारी, तो जल्दी से जल्दी हम सोचते हैं कि इसका अनुपात बराबर आ जाएगा।
6: ओके सर।
1: हाँ जी सर, जैसे कि हम बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि हम दो हमारे दो, तो सर ये आखिरकार है क्या?
5: हाँ मैम, हम दो हमारे दो का ये स्लोगन तो बहुत पहले से चला आ रहा है, जब से मैंने जन्म लिया तब से मैं सुनता आ रहा हूँ कि हम दो और हमारे दो, ये अच्छा है और इसको लोग एक्सेप्ट करें और इसी स्लोगन को मानते हुए अपने जीवन में इसको लें और पॉपुलेशन को कंट्रोल करें।
1: सर लास्ट क्वेश्चन है कि आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे विश्व जनसंख्या दिवस के बारे में, छोटा

0: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए ईकेसीसी पोर्टल ekcc.nabard.org।
1: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत केसीसी पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
0: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
1: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
2: मुरादाबाद
1: से संपर्क कीजिए।
0: नियम और शर्तें लागू।
3: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: स्वागत है साथियों, नमस्कार। आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 MHz पे, और ये कार्यक्रम है आपका अपना पसंदीदा शो, अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है सेहत सही लाभ कई, और मैं हूँ आपका दोस्त RJ आनंद। आज की बात बहुत जरूरी है क्योंकि आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। श्रोताओं, ये एक ऐसा दिन है जिस पर बात करना बहुत जरूरी है, एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि तंबाकू सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक ऐसा जाल है जिसमें फंसकर इंसान धीरे धीरे अपनी जिंदगी और अपने परिवार की खुशियों को खोता है। और इस साल का संदेश भी बहुत साफ है, अनमास्किंग द अपील, यानी कि इस दिखावे को हटाना है। तंबाकू और निकोटिन कोई स्टाइल या आधुनिकता की चीज है, असल में ये एक लत है, एक बीमारी है जो खासकर हमारे नौजवानों को अपनी तरफ खींच रही है। और इसी कड़ी में बात करने के लिए एक बार फिर से हमारा साथ दे रही है टीकन देवी, यानी कि हमारी प्यारी टीकन भाभी। तो टीकन भाभी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: और मेरे प्यारे श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिल्कुल सही कहा, आज तंबाकू का खतरा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। पहले लोग सिर्फ सिगरेट तक सीमित थे, लेकिन आज नए नए रूप आ गए हैं। ई सिगरेट, फ्लेवर्ड, निकोटीन पाउच, ये सब ऐसे दिखाए जाते हैं जैसे ये सुरक्षित हो, आधुनिक हो, लेकिन सच्चाई ये है सब एक ही चीज है, लत लगने के तरीके। और सबसे दुखद बात तो ये है कि ये खासकर बच्चों और किशोरों को निशाना बना रहे हैं,
0: जिसमें धीरे धीरे इंसान खुद ही फंस जाता है बिना ये समझे कि वो किसकी तरफ जा रहा है।
1: बिल्कुल यही सच्चाई है, कंपनियां बहुत सोच समझकर ऐसे रंग, फ्लेवर और पैकेजिंग तैयार करती है जो खासकर बच्चों और युवाओं को आकर्षित कर रहे हैं। उन्हें ये महसूस कराया जाता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस एक बार ट्राई कर लो, दोस्तों के साथ मजा आएगा, स्टाइलिश लगेगा, लेकिन असल में वही से लत लगनी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे शरीर निकोटीन की आदत हो जाती है और ये सिर्फ चॉइस नहीं रह जाती है, ये एक जरूरत बन जाती है। इंसान चाहकर भी इसे छोड़ नहीं पाता और कोशिश और शरीर और दिमाग दोनों इसकी मांग करने लगते हैं।
0: ठीक है भाभी, अगर हम अपने देश की बात करें, भारत में ये समस्या कितनी बड़ी है, क्या ये सच में इतनी फैल चुकी है जितना हम सुनते हैं?
1: हाँ भैया, भारत में स्थिति काफी चिंताजनक है। करीब हर तीसरा व्यक्ति किसी न किसी रूप में तंबाकू का इस्तेमाल करता है, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां खैनी, गुटखा, बीड़ी जैसे स्मोकर्स और सस्ते तंबाकू उत्पाद ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। और सबसे दुखद बात तो ये है कि हर साल लगभग 10 से 12 लाख लोगों की मौत सिर्फ तंबाकू के कारण होती है। जरा सोचिए ये संख्या कितनी बड़ी है। और इसमें सिर्फ वही लोग शामिल नहीं हैं जो तंबाकू लेते हैं, बल्कि वो भी शामिल हैं जो दूसरों के धुएं के संपर्क में आ जाते हैं।
0: मतलब जो खुद तंबाकू नहीं लेते वो भी इस खतरे से बच नहीं पाते।
1: इसे हम सेकंड हैंड स्मोक कहते हैं। अगर घर में या आसपास कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो तंबाकू लेता है तो उसका असर काफी बाकी सभी लोगों पर भी पड़ता है। खासकर बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। बच्चों में सांस की बीमारी बढ़ जाती है, बार बार खांसी जुकाम होता है। महिलाओं में कमजोरी और गर्भावस्था के दौरान गंभीर समस्याएं हो सकती, यानी व्यक्ति की आदत पूरे परिवार की सेहत पर भी भारी पड़ सकती है।
0: भाभी, लेकिन लोग अक्सर ये कहते हैं कि हम तो बस थोड़ा बहुत लेते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है, क्या इसमें कोई सच्चाई है या ये भी एक गलतफहमी है?
1: नहीं, ये पूरी तरह से एक भ्रम है और बहुत खतरनाक भ्रम है। तंबाकू का कोई भी रूप सुरक्षित नहीं होता, चाहे वो बीड़ी हो, सिगरेट हो, गुटखा हो या कोई नया निकोटीन प्रोडक्ट। हर रूप शरीर को नुकसान पहुंचाता है, इससे कैंसर का खतरा कई गुना बढ़ जाता है, खासकर मुंह, गले और फेफड़ों का कैंसर। इसके अलावा दिल की बीमारियां, स्ट्रोक, फेफड़ों की खराबी, ये सब सीधे सीधे तंबाकू से जुड़े हुए होते हैं। और इतना ही नहीं, तंबाकू शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता को भी कमजोर कर देता है।
0: मतलब ये सिर्फ एक आदत नहीं है बल्कि एक ऐसी जड़ है जिसमें कई खतरनाक बीमारियां निकलती हैं और धीरे धीरे इंसान को अंदर से खत्म करती हैं।
1: बिल्कुल भैया, और यही वजह है कि इसे जितनी जल्दी समझा जाए उतना बेहतर है। तंबाकू छोड़ना सिर्फ एक व्यक्ति का फैसला नहीं होता, ये पूरे परिवार की खुशियों और सेहत को बचाने का फैसला होता है। इसीलिए आज नहीं तो कल, लेकिन ये कदम उठाना ही होगा।
0: चिकन भाभी, कई बार लोग तब तक नहीं समझते जब तक किसी की मतलब असली कहानी से ना जुड़े। ऐसा होता है ना कि जब तक कोई कहानी उनके सामने ना आ जाए तब तक उन्हें वो चीज समझ नहीं आती। क्या आपके आसपास कोई ऐसी कहानी है जो आप हमारे श्रोताओं के साथ साझा करें और हमारे श्रोताओं को सोचने पर मजबूर कर दे?
1: हाँ, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ हमारे ही इलाके के एक आदमी की। उनका नाम था रमेश। रमेश एक मेहनती मजदूर थे, सुबह से शाम तक काम करते थे, परिवार चलाते थे, लेकिन उनकी एक आदत थी बीड़ी पीना। पहले उन्होंने दोस्तों के साथ मजाक मजाक में शुरू किया था, थोड़ा रिलैक्स मिल जाता था। ऐसे धीरे धीरे एक दिन में 2 बीड़ी पीने से लेकर 10-12 बीड़ी पीने तक पहुंच गई। उसकी पत्नी अक्सर उन्हें समझाती, ये मत पियो, बच्चों का ख्याल करो, लेकिन रमेश हंसकर टाल दिया करते थे, कुछ नहीं होता, मेरे बाप दादा भी पीते थे। समय बीतता गया और एक दिन रमेश को खांसी शुरू हो गई। पहले उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे खांसी बढ़ती गई, सांस फूलने लगी और काम करने में मुश्किल होने लगी। जब हालात बहुत ज्यादा खराब हुए तो परिवार उसे अस्पताल लेकर गया। जांच में पता चला कि उसके फेफड़े पूरी तरह खराब हो चुके थे और शुरुआती टीवी भी थी। डॉक्टर ने साफ कहा, अगर अभी भी नहीं रुके तो हालात और बढ़ जाएंगे। उस दिन पहली बार रमेश डर गया था। उसने अपने बच्चों को देखा, अपनी पत्नी की चिंता देखी और फैसला किया, अब बस। शुरुआत आसान नहीं थी, शरीर बार बार निकोटीन मांगता था, चिड़चिड़ापन होता था, बेचैनी होती थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। डॉक्टर की मदद ली, काउंसलिंग ली और धीरे धीरे खुद को उस आदत से दूर किया। कुछ दिनों बाद उसकी हालत सुधरने लगी, खांसी कम हुई, सांस ठीक होने लगी और सबसे बड़ी बात, उसका आत्मविश्वास वापस आ गया। आज रमेश खुद गांव में लोगों को समझाता है, मैंने गलती की लेकिन तुम मत करना। वो स्कूल में जाते हैं, युवाओं से बात करते हैं और कहते हैं जो शुरुआत में मजाक लगता है वही आगे चलकर सबसे बड़ी सजा बन जाता है।
0: सच में भाभी, ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक आईना है जो हमें दिखाता है कि एक छोटी सी आदत कैसे जिंदगी बदल सकती है और सही समय पर लिया गया फैसला कैसे उसे वापस भी ला सकता है।
1: बिल्कुल, और यही संदेश हमें सब तक पहुँचाना है।
0: तो भाभी, अगर कोई व्यक्ति सच में ये ठान ले कि उसे तंबाकू छोड़ना है लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि शुरुआत कहाँ से करे, तो वो क्या करे? क्योंकि कई लोग कोशिश तो करते हैं लेकिन बार बार वापस उसी आदत में लौट जाते हैं।
1: देखिए, सबसे पहला कदम होता है एक पक्का फैसला लेना, अपने मन में ये ठान लेना कि आज के बाद नहीं। जब तक ये अंदर से नहीं आएगा तब तक बाहर की कोई भी सलाह काम नहीं करेगी। उसके बाद अपने घर और आसपास से तंबाकू की हर चीज हटा दें, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, जो भी हो, क्योंकि जितनी आसानी से वो चीज सामने दिखती है उतना ही मन डगमगाएगा। इसके साथ ही अपने परिवार और दोस्तों को भी बताइए कि आप ये आदत छोड़ना चाहते हैं, ताकि वो आपका साथ सकें, आपको रोक सकें। जब आपका मन डगमगाए, आगे आगे अगर जरूरत महसूस हो डॉक्टर या काउंसलिंग की मदद लेना बिल्कुल सही कदम है। आजकल सरकार की हेल्पलाइन भी उपलब्ध है, जहां मुफ्त में सलाह मिलती है, मार्गदर्शन भी मिलता है। और सबसे जरूरी बात, धैर्य। समझना बहुत जरूरी है कि तंबाकू की लत एक दिन में नहीं लगी तो एक दिन में छूटेगी भी नहीं, बीच बीच में मन करेगा, मन बेचैन होगा, लेकिन अगर हर दिन खुद को संभालते रहेंगे तो धीरे धीरे ये आदत कमजोर पड़ जाएगी और एक दिन पूरी तरह छूट जाएगी।
0: भाभी, इस पूरे सफर में परिवार क्या कर सकता है? क्योंकि कई बार परिवार या तो बहुत डांटता है या फिर ध्यान ही नहीं देता है।
1: परिवार की भूमिका सबसे अहम होती है आरजे आनंद। अगर कोई व्यक्ति तंबाकू छोड़ने की कोशिश कर रहा है तो उसे सबसे ज्यादा जरूरत होती है समझ और सहारे की। डांटने या ताना देने से इंसान और कमजोर पड़ जाता है, इसके बजाय उसे समझाइए, उसका हौसला बढ़ाइए, छोटी छोटी सफलताओं पर उसकी तारीफ करें, घर में एक ऐसा माहौल बनाएं जहां वो खुद को सुरक्षित और समर्थ महसूस करे। अगर परिवार साथ दे तो ये मुश्किल सफर भी आसान हो सकता है।
0: सच में बिल्कुल सही कहा टीकन भाभी। साथियों, आज की इस बातचीत से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, तंबाकू कोई फैशन नहीं है। ये एक ऐसा जाल है जो धीरे धीरे इंसान को अपनी गिरफ्त में ले लेता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस जाल से बाहर निकलना नामुमकिन नहीं है। बस एक मजबूत इरादा और सही सहारे की जरूरत है, और ये कदम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने परिवार, अपने बच्चे और अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए उठाना बहुत जरूरी है।
1: याद रखिए, लत से आज़ादी ही असली आज़ादी है। जब आप तंबाकू छोड़ते हैं तो सिर्फ एक आदत नहीं छोड़ते, आप अपनी जिंदगी को एक नया मौका देते हैं। इसलिए आज ही सोचिए और पहला कदम उठाइए, तंबाकू छोड़िए और जीवन जोड़िए। अगर आप अनुमति दें तो मैं एक कहानी साझा करना चाहूँगी जो थोड़ी कठिन है सुनने में, लेकिन शायद हमारे श्रोताओं को सच्चाई का एहसास करा सके। देखिए, ये कहानी है हमारे ही पास के एक गांव के रहने वाले शंभू की। शंभू एक साधारण सा आदमी था, छोटा सा खेत, पत्नी और दो बच्चे, मेहनती था, जिम्मेदार था। एक आदत ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी, गुटखा और बीड़ी की लत। शुरुआत बहुत छोटी थी, खेत में काम करते हुए थकान मिटाने के लिए दोस्तों के साथ थोड़ा गुटखा खा लिया करता था। फिर धीरे धीरे ये आदत रोज की जरूरत बन गई। सुबह उठते ही पहला काम गुटखा और रात को सोने से पहले बीड़ी। उसकी पत्नी कई बार मना करती थी, बच्चे भी कहते थे बाबा मत खाओ, लेकिन शंभू हर बार यही था, कुछ नहीं होता, सब खाते हैं। समय के साथ उसके मुंह में जलन शुरू हुई, फिर एक छोटा सा घाव बना जो भरता ही नहीं था। पहले उसने नजरअंदाज किया, फिर देसी इलाज किया, लेकिन हालात धीरे धीरे बिगड़ गए। खाने में दर्द, बोलने में तकलीफ, और आखिरकार जब वो अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर ने बताया मुंह का कैंसर। ये सुनकर जैसे उसकी दुनिया ही रुक गई। इलाज शुरू हुआ, ऑपरेशन हुआ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसके चेहरे का एक हिस्सा काटना पड़ा, आवाज बदल गई और वो ठीक से बोल भी नहीं पाता था। सबसे ज्यादा असर उसके परिवार पर पड़ा। उसकी पत्नी दिन रात उसकी सेवा करती, लेकिन अंदर से टूट चुकी थी। अपने बच्चे, अपने पिता को उस हालत में देखकर डर जाते थे। जो आदमी कभी उनके लिए ताकत का सहारा था, वही अब खुद सहारे पर था। धीरे धीरे शंभू का काम छूट गया, घर की आमदनी खत्म हो गई और इलाज का खर्च बढ़ता गया। एक छोटी सी आदत जिसने सिर्फ उसकी सेहत नहीं बल्कि पूरे परिवार की खुशियां छीन ली। और आरजे आनंद, सबसे दर्दनाक बात तो ये थी कि आखिरी दिनों में शंभू खुद कहता था, काश मैंने उस दिन सुन लिया होता, काश मैंने ये आदत छोड़ दी होती, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस कहानी का मकसद डराना नहीं बल्कि सच दिखाना है। तंबाकू का असर धीरे धीरे होता है, लेकिन जब सामने आता है तब बहुत कुछ छीन लेता है, सेहत, पैसा, परिवार की खुशियाँ, सब कुछ। इसलिए जो आज फैसला ले सकते हैं वो कल का इंतजार ना करें, क्योंकि कुछ फैसले अगर देर से लिए जाएं तो उनका असर सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे परिवार को झेलना पड़ता है।
0: सच कहूँ टीकन भाभी, ऐसी कहानियाँ सुनकर समझ आता है कि तंबाकू का नुकसान सिर्फ किताबों या पोस्टर तक सीमित नहीं है, इसके पीछे असली जिंदगियाँ हैं, असली परिवार है, और एक ऐसा दर्द जिनकी भरपाई कभी नहीं हो पाती। कई बार लोग सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन बीमारी किसी को पहले से बताकर नहीं आती।
1: बिल्कुल, इसीलिए जरूरी है कि हम डरकर नहीं समझदारी से फैसला लें। अगर आप तंबाकू लेते हैं, छोड़ने की शुरुआत आज से ही कीजिए, और अगर नहीं लेते तो कभी शुरुआत मत कीजिए। साथ ही अपने बच्चों और युवाओं को भी समझाइए कि असली ताकत किसी गलत आदत को अपनाने में नहीं बल्कि उसे दूर रहने में है।
0: और साथियों, याद रखिए, हर नई शुरुआत का सबसे अच्छा समय आज का होता है। हो सकता है शुरुआत मुश्किल लगे, लेकिन आपका एक छोटा सा फैसला आने वाले वर्षों की खुशियां और सेहत बचा सकता है। तो खुद से एक वादा कीजिए, स्वस्थ जीवन चुनेंगे और गलत आदतों को ना कहेंगे। और आज का हमारा संदेश, ना स्टाइल में ना ट्रेंड में, जिंदगी है अपने कंट्रोल में। तंबाकू से दूरी अपनाओ, स्वस्थ जीवन का रास्ता पाओ। इसी के साथ हम आज का अपना प्रोग्राम यही खत्म करते हैं, पर जाने से पहले एक बार फिर हम मिलकर यही शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
1: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
0: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे, दूसरों को भी जागरूक करेंगे,
1: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके,
0: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे,
1: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें,
0: महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
1: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
0: सेहत सही तो लाभ कई। तो दोस्तों, मैं था आपका दोस्त आरजे आनंद, अभी लेता हूँ आपसे इजाजत इस प्रोग्राम से। बस जाते जाते इतना कहना चाहूँगा, अपना ख्याल रखिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और तंबाकू से दूर रहिए। फिर मिलेंगे इसी शो में, यानी कि सेहत सही लाभ कई में, एक और नए विषय और एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। बाय बाय।
2: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।
3: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग, प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त भावना। आप सुन रहे हैं सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 MHz। दोस्तों, आज का शो बहुत ही खास है क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं उस चीज की जिसके बिना हमारा जीवन ही अधूरा है, हमारा पर्यावरण, हमारी संस्कृति। दोस्तों, आज हम अपनी धरती की आवाज सुनेंगे। क्या आप जानते हैं कि हमारे आसपास के पेड़, नदियाँ और हवा लगातार हमसे कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं हमसे। तो चलिए, आज इस यात्रा में हम अपनी धरती को बेहतर बनाने की बात करेंगे। दोस्तों, पर्यावरण सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं है, बल्कि हम सब हैं। हमारी हवा, हमारा पानी, मिट्टी, जीव जंतु, ये सब कुछ। लेकिन आज स्थिति कुछ अलग है। क्या आपको गर्मी के दिनों में असहनीय गर्मी महसूस होती है? क्या आपको सांस लेते हुए प्रदूषण महसूस होता है? जरूर होता होगा, क्योंकि आज का हवा पानी सब कुछ बदल चुका है। भारत में वायु प्रदूषण, पानी की कमी और कचरा प्रबंधन सबसे बड़े मुद्दे हैं। नदियाँ गंदी हो रही हैं, जंगल कट रहे हैं, ये सब इंसानी गतिविधियों का नतीजा है। विकास जरूरी है, लेकिन विनाश की कीमत पर नहीं, बिल्कुल नहीं। तो चलिए, क्यों ना इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं, लेकिन पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गाना जो हमें प्रकृति से जोड़ता है।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं पर्यावरण की पुकार। तो दोस्तों, हम बहुत सोचते हैं कि मैं अकेले क्या कर सकता हूँ, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। लेकिन आपके द्वारा उठाए गए छोटे छोटे कदम ही बहुत मायने रखते हैं, और विश्वास करिए, हर छोटा कदम मायने रखता है। जैसे अगली बार सब्जी लेने जाएं तो घर से कपड़े का थैला जरूर साथ ले जाएं। ब्रश करते समय या नहाते समय नल खुला ना छोड़ें, क्योंकि पानी की हर एक बूंद बहुत कीमती है। अपने जन्मदिन पर एक पेड़ जरूर लगाएं और उसकी देखभाल करें। दिन में खिड़कियां खोलें और बल्ब का इस्तेमाल कम से कम करें। एक पेड़ अपने पूरे जीवन में कई टन कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेता है, आपको पता है? तो क्यों ना हम अपनी बालकनी में ही छोटे गमले रखें। दोस्तों, मनुष्यों द्वारा बनाई गई कई सारी संरचनाएं हैं, जैसे घर, सड़कें और शहर। इन सब को बनाने के लिए बहुत सारे ऐसे संसाधनों का प्रयोग किया जाता है जो कि हमें हमारी प्रकृति से ही मिलती है, और पर्यावरण के बहुत सारे घटक हैं, जैसे पृथ्वी के चारों ओर गैसों की परत, महासागर, नदियां और झीलें, भूमि, चट्टाने और मिट्टी, और वो सभी जीवित प्राणी जो हमारे आसपास हमको नजर आते हैं। दोस्तों, पर्यावरण हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है, और इसके संरक्षण के लिए बहुत सारे हमें काम भी करने होंगे और एक कदम आगे बढ़ाना होगा। जैसे वायु, जल और मिट्टी के प्रदूषण को रोकना होगा, वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होना पड़ेगा, प्लास्टिक के उपयोग को कम करना होगा, प्लास्टिक का उपयोग एक गंभीर पर्यावरणीय खतरा है, और भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम रोक सकते हैं। भारत में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसके संरक्षण के लिए कार्य करते हैं। जलवायु परिवर्तन के लिए प्रमुख रूप से मानव जनित गतिविधियां, जैसे वन कटाव, जीवाश्म ईंधन का जलना, अपशिष्ट को जलाना जिम्मेदार है, लेकिन कुछ प्राकृतिक कारक भी जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। मौसम की गंभीर घटनाओं जैसे जंगल में आग लगना, बाढ़, भूस्खलन, भूकंप, बादल फटना इत्यादि, और इन सब की बढ़ती तीव्रता और आवृत्ति क्षेत्र के स्थानीय लोगों की आजीविका को लगातार प्रभावित कर रही है। जलवायु परिवर्तन का बढ़ता खतरा मानव जीवन के साथ साथ पशुधन को भी प्रभावित कर रहा है। दोस्तों, पशुओं को यह कई प्रकार से नुकसान पहुंचाता है। जहरीली गैसें और धुआं पशुओं की सांस लेने की क्षमता को भी प्रभावित करती है, जिससे उन्हें फेफड़ों की बीमारियाँ हो सकती हैं। गंदा और रासायनिक पदार्थों वाला पानी पीने से पशु बीमार पड़ जाते हैं और कई बार उनकी मृत्यु भी हो जाती है। प्लास्टिक और कचरा खाने से पशुओं के पेट में समस्या होती है। गायें और अन्य जानवर प्लास्टिक खाकर बीमार हो जाते हैं, और दोस्तों, तेज हवाओं से पशु डर जाते हैं, और ये है ध्वनि प्रदूषण, जिससे उनका व्यवहार बदल जाता है और वे तनाव में भी आ जाते हैं। और रही बात वनों की कटाई का, तो इससे पशुओं का प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाता है, जिससे उन्हें भोजन और रहने की जगह नहीं मिलती है। तो दोस्तों, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के और इस पर समझ विकसित करके साथ मिलके एकजुट होके काम करना होगा, आगे बढ़ना होगा, अपने पर्यावरण की सुरक्षा करना होगा और पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाना होगा। तो यूं ही बने रहिए हमारे साथ। आप सुन रहे हैं सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 MHz। नमस्कार।

बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: दिस साइड आर्जेरीना एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और वेलकम बैक है श्रोताओं, और फिर से हम आप सभी के बीच लेकर आ गए एक नई जानकारी जो आप सभी तक ना कोशिश करते हैं यानी कि पहुंचती रहनी चाहिए। तो अब हम बात करने वाले हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में, यानी कि न्यायपालिका का सम्मान और उनके आदरों का पालन करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। सो इसी टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट अनुरुद्ध अरोरा जी हमारे साथ कनेक्ट है। सर आपका बहुत बहुत वेलकम। पहले तो सर आप अपने बारे में हमारे श्रोताओं को बता दीजिए।
1: देखिए, मैं बाई प्रोफेशन एडवोकेट हूँ, मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा नाम अनिरुद्ध अरोरा एडवोकेट है, और जो है हम बेसिकली जो समाज में किसी के साथ शोषण होता है या किसी को सताया जाता है, अगर हमें भी कुछ लगता है डेली लाइफ में, तो हम लोग उसको हेल्प करते हैं, उसको लीगल गाइडेंस देते हैं हम लोग। और मैं समझता हूँ कि सबको अपने कानूनी जितने अधिकार है उसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि डेली रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत देख रहे होते हैं और हम इग्नोर कर देते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो सबसे बड़ी चीज है, ये इग्नोर करने से ही क्राइम पनपता है और बढ़ता है।
0: सही
1: तो पहले लेवल पे ही अगर हम उसको रोक लेते हैं तो एक हम आगे आने वाले बहुत बड़े किसी क्राइम से या किसी घटना से बच सकते हैं।
0: बिल्कुल सर। तो अब तो हमारे श्रोता भी आपके बारे में रूबरू हो चुके हैं।
1: श्रोताओं से ही बात करना अच्छा लगता है मुझे, और मैं उन्हीं के लिए आता हूँ आपके।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही सर। और कोशिश करते हैं कि उनके तक अच्छी अच्छी जानकारियाँ पहुँचती रहे,
1: उनको अच्छी अच्छी मिलनी चाहिए जिससे वो अपने कानूनी अधिकारों को जान पाए।
0: बिल्कुल सर। तो हम शुरुआत करते हैं, यानी कि पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले बताइए कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है।
1: देखिए, आमतौर पर हम लोग बहुत सुनते हैं इस वर्ड को कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है। अब अधिकतर आपने देखा होगा कि भाई कोर्ट का आदेश जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दिया, लोग बोल देते हैं, लेकिन होता क्या है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? तो ये सबसे बड़ी चीज, देखने में एक बहुत छोटा सा वर्ड है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, लेकिन इसका जो मतलब है वो बहुत मीनिंगफुल मतलब है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है यानी अदालत की अवमानना करना। अब जब जो अदालत ने जो बात कह दी है, आप उस चीज को नहीं मान रहे, उस ऑर्डर को नहीं मान रहे हो, अदालत का आप अपमान कर रहे हो, तो उसको हम कंटेम्प्ट की श्रेणी में मानते हैं। आप कोई न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालते हैं या अदालत के आदेश का आप पालन नहीं करते हैं, तो उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बोला जाता है। और भारत में इससे संबंधित जो प्रावधान दिए गए हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में दिए गए हैं। तो आप सोचिए कि अगर कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है और आप उसको नहीं मानते हो, तो आप कोर्ट का अपमान कर रहे हो, तो उसका जो है कोर्ट आपको पनिशमेंट भी देती है।
0: शो आगे बढ़ते हैं, यानी कि म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सो हमारा अगला क्वेश्चन होगा सर, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कितने टाइप के होते हैं?
1: देखिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। एक सिविल कोर्ट का कंटेम्प्ट होता है, क्रिमिनल कोर्ट का कंटेम्प्ट होता है। तो अदालत की अवमानना, अगर सिविल कंटेम्प्ट की हम बात करते हैं, तो कोई व्यक्ति अगर अदालत के आदेश या फैसले का पालन नहीं करता है, तो उसको जो है सिविल कंटेम्प्ट की श्रेणी में लाते हैं। उसमें सिविल में ये होता है कि अदालत उसको सिर्फ फाइन से ही छोड़ देती है, कई बार ऐसा देखा गया है। और क्रिमिनल कंटेम्प्ट जो होता है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट में अगर कोई अदालत का अपमान करता है या न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालता है, तो कोर्ट को इतनी ज्यादा पावर भी होती है, हालांकि पावर सिविल में भी होती है, तो लेकिन क्योंकि क्रिमिनल कंटेम्प्ट है, तो कोर्ट उस पर फाइन और सजा भी उसको दे सकती है,
0: सुना सकती है। बिल्कुल।
1: हाँ, जेल भी भेज सकती है यहाँ तक।
0: अगर कोई व्यक्ति कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है तो उसे क्या सजा हो सकती है?
1: देखिए, अदालत की अवमानना करने पर जो दोषी होता है उसको अदालत के विवेक पे निर्भर करता है वैसे तो सजा, लेकिन वो 6 महीने तक की जेल या जुर्माना दोनों सुना सकती है। रिट होती है वो या तो सुप्रीम कोर्ट में दायर हो सकती है या हाई कोर्ट में दायर हो सकती है। एक प्रकार का रिट जो होती है, एक प्रकार का विशेष आदेश होती है जो अदालत किसी व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने या किसी सरकारी संस्था को उसका कर्तव्य निभाने के लिए जारी कर सकती है। भारत में रिट जारी करने का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दिया गया है। ठीक है, तो अगर हम रिट्स की बात करते हैं तो ये विशेष तौर पर कई श्रेणी में मतलब आती है। अगर हम हाई कोर्ट में अलग रिट दाखिल कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में अलग रिट दाखिल कर सकते हैं।
0: सो इनके टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं सर?
1: विशेष तौर पे 5 तरीके की रिट्स होती हैं ये। भारत में कुल जो 5 तरीके की रिट्स हमारी बताई गई है, इसमें मुख्यतः जो 5 रिट्स हैं उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट है इसमें हैबियस कॉर्पस, नाम नोट करिए हैबियस कॉर्पस। विशेष तौर पे अगर आप बच्चे LLB के मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो उनको तो सब पता ही होगा, तो उनको तो इस समय पढ़ाई में भी वो लोग ये पढ़ते होंगे तो उनको सब पता होगी, सारी अच्छी नॉलेज होगी उनकी। और सेकंड हमारी आते हैं मैंडेमस, और थर्ड होती है प्रोहिबिशन, और फोर्थ बोलती है फोर्थ रिट है हमारी सर्चुरारी, और फिफ्थ रिट है क्यू वारंटो।
0: तो इनके सर अलग अलग, इनके बारे में अगर हम बात करें तो इनके अलग अलग टर्म्स होते होंगे।
1: अलग अलग, हर रेट का अपना अलग महत्व है, अलग अलग चीज के लिए अलग जो लीगल रिलीफ होता है उसके लिए यूज करी जाती है। तो हैबियस कॉर्पस जो रिट होती है, मैं पहले उसके बारे में अपने जो होता है उनको बताना चाहूंगा। विशेष तौर पे जो हैबियस कॉर्पस रिट होती है, ये रिट तब जारी करी जाती है यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रख लिया जाता है या उसका पता नहीं चल पाता है, तो अदालत आदेश देती है कि उस व्यक्ति को तुरंत न्यायालय के सामने पेश किया जाए। क्योंकि हैबियस कॉर्पस जो रिट डाली जाती है वो पिटीशनर की तरफ से इसलिए डाली जाती है कि उसका कोई नोन है, रिलेटिव है, और उसको शक होता है कि उसको पुलिस ने गलत तरीके से कहीं छुपा के रखा हुआ है या उसको पनिश कर रहे हैं जो, और कोर्ट के समक्ष नहीं ला रहे हैं। तो विशेष तौर पर हैबियस कॉर्पस रिट का मोस्टली ज्यादातर प्रयोग तब किया जाता है। सेकेंड जो रिट आती है हमारी मैंडमस रिट है, उसको हम उसका अर्थ है कि हम आदेश देते हैं। ये रिट तब जारी होती है जब कोई सरकारी अधिकारी या संस्था अपना कानूनी कर्तव्य नहीं कर रही होती पूरी। अगर कोई सरकारी संस्था है या कोई अधिकारी है और वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है सही से, और उसकी जो है जो मैटर है उसको विलंबित कर रहा है या कोई और रीजन है, तो मैंडमस रिट उसी मैटर में डाली जाती है कि वो आदेश देता है, जो कोर्ट होती है वो मैंडमस रिट में आदेश देती है कि ये सरकारी अधिकारी या संस्था अपने कानूनी कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, तो वहां से वो रिलीफ के तौर पे उस रिट में वो हाईकोर्ट ऑर्डर करता है उसको।
0: ओके।
1: थर्ड जो रिट आने
2: का आरोप लगाया, आयुष मंत्रालय और इंडिया एआई ने आयुष क्षेत्र में एआई आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज, 120 से अधिक प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की खबर। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट, और राष्ट्र आज स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह के शहीद दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा शुरू की। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक पेश किया। सदन में बिना किसी चर्चा के हंगामे के बीच विधेयक पारित हो गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस विधेयक पर चर्चा में भाग न लेने के लिए विपक्ष की आलोचना की। उन्होंने कहा कि कार्य सलाहकार समिति में चर्चा के लिए समय पहले ही निर्धारित किया जा चुका था। उन्होंने कांग्रेस समेत विपक्ष से बार बार अपील की थी कि ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक पर उचित चर्चा सुनिश्चित की जाए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है।
3: जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह नया विधेयक लाया गया है। इसके तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी एक साल बाद लेकिन दो साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या डीएम द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जांच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना दो वर्ष से अधिक समय के बाद दी जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना सभी के लिए अनिवार्य है और इसके बाद मिलने वाला प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पहले सदन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय को संसद की आगामी शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई। हंगामे के बीच सदन ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। वे इस मुद्दे पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल के दौरान सदन की कार्यवाही में बाधा न डालने की अपील की।
4: आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए। आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं, उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें।
2: राज्यसभा की कार्यवाही भी इसी मुद्दे पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने सदन के पटल पर अपने मंत्रालय से संबंधित दस्तावेज रखे। ग्रामीण विकास और पंचायती राज से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने की व्यवस्था की समीक्षा पर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के बारे में जानकारी दी। इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्षी सदस्यों की आलोचना करते हुए कहा कि वे हर मुद्दे पर व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं और चर्चा से बच रहे हैं।
5: सदन की गरिमा के साथ खेलवाड़ किया जा रहा है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये प्रतिपक्ष केवल अराजकता फैलाना चाहता है, हंगामा खड़ा करना चाहता है। चर्चा से इनको कोई लेना देना नहीं है। हम इनकी घोर निंदा करते हैं माननीय सभापति महोदय। सदन की गरिमा को तार तार करना ये इनका स्वभाव हो गया है। देश इनको देख रहा है और देश की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी।
2: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने मेटा इंडिया के अधिकारियों और कई सोशल मीडिया अकाउंट संचालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये कार्रवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक सामग्री वायरल होने के बाद की गई है। हैदराबाद साइबर क्राइम के पुलिस उपायुक्त अरविंद बाबू ने पुष्टि की है कि भाजपा की सोशल मीडिया इकाई की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच जारी है। भाजपा की तेलंगाना इकाई ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाकर तैयार की गई विकृत अपमानजनक और निंदनीय सामग्री बनाने फैलाने और प्रचारित करने वालों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुए कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि अग्रिम पंक्ति में तैनात कर्मियों को भीड़ के हिंसक तत्वों ने घेर लिया, उन पर पत्थर फेंके और मारपीट की। एक सहायक उपनिरीक्षक के बेटे ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान उनके पिता के सर में चोट आई।
6: मेरे पापा भी जंतर मंतर के फ्रंट लाइंस पे उनकी ड्यूटी लगी थी प्रोटेस्ट में। ऑन 25 मई at 2 PM मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है। जब मैंने फोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4। जब मेरे पापा घर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि जो स्टूडेंट्स की प्रोटेस्ट, उसमें बस स्टूडेंट्स नहीं है, उसमें राउडीज है, उसमें एग्रेसर्स है, इस अपॉर्चुनिटी का यूज कर रहे हैं जस्ट टू क्रिएट केओस।
2: झारखंड के भाजपा सांसदों ने आज संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री तथा कोडरमा से भाजपा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने कांग्रेस पर इस मामले पर दोहरा रुख अपनाने का आरोप लगाया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची से लोकसभा सांसद संजय सेठ ने कहा कि झारखंड में हजारों छात्र जेपीएससी पेपर लीक और जेएसएससी भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।
7: देखो, झारखंड के अंदर हजारों छात्र धरने बैठे हैं पिछले 5 दिनों से, भारी बारिश में भी ऊपर प्लास्टिक लगा वो भी छूरा लेकिन हिल नहीं रहे। उनकी एक ही डिमांड है कि जेपीएससी पेपर लीक मामला और जेएसएससी जो भर्ती घोटाला उसकी सीबीआई जांच कराओ। झारखंड की जनता ने पूरी तरह मन मना लिया, सीबीआई जांच से कम स्वीकार नहीं। क्यों? हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का किसी को अधिकार नहीं।
2: आयुष मंत्रालय और इंडिया एआई ने आयुष क्षेत्र में एआई आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आयुष मंत्रालय ने कहा कि समझौते का उद्देश्य उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके पारंपरिक चिकित्सा में अनुसंधान, डिजिटल स्वास्थ्य, क्षमता निर्माण और नवाचार को मजबूत करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों के हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने रावलकोट और मीरपुर में बड़ी संख्या में एकत्र महिला प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाईं। विश्लेषकों का दावा है कि प्रदर्शन शुरू होने के बाद से 125 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं।

0: जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति ने संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और लोकतांत्रिक सरकारों से हस्तक्षेप करने की अपील की है। पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले के रेनसा टाउनशिप में एक नाटकीय अभियान में बंगाल एसटीएफ ने जैश के एक संदिग्ध आतंकवादी हामिद मंडल को गिरफ्तार किया है। माना जा रहा है कि आतंकवादी सज्जाद भट्ट गुट से जुड़ा हुआ है। आइजोल के सूचना और जनसंपर्क मंत्री पू बी लाल झंझोवा ने कहा कि आकाशवाणी आइजोल ने मिजो पहचान को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आकाशवाणी आइजोल की हीरक जयंती के अवसर पर अपने संदेश में उन्होंने कहा कि 1966 में अपनी स्थापना के बाद से इस स्टेशन ने मिजो भाषा, संस्कृति, रीति रिवाजों और परंपराओं के संरक्षण तथा संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अपने संदेश में आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने कहा कि बदलते समय में भी आकाशवाणी आइजोल मिजोरम के लोगों के लिए सूचना का एक विश्वसनीय स्रोत और मार्गदर्शक बना हुआ है। मौसम विभाग ने गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, केरलम, माहे, पंजाब और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भी मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। गुजरात के कई हिस्सों में आज फिर हुई तेज बारिश से जनजीवन और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मध्य और दक्षिण गुजरात के 13 जिलों में आज तेज बारिश का रेड अलर्ट है।
1: गुजरात में सुबह से ही कई हिस्सों में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण सूरत, खेड़ा और आणंद जिलों में कई जगहों पर गंभीर जलभराव देखने को मिला है। व्यापक जलभराव को देखते हुए आज सुबह से ही वडोदरा, सूरत, आणंद और नर्मदा जिले के निचले इलाकों में रहने वाले 720 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जा चुका है। नदियों के बढ़ते जलस्तर के कारण राज्य के 21 बांधों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 17 टीमें, एसटीआरएफ की 33 प्लाटू और सेना के 6 कॉलम भी पूरी तरह से मुस्तैद है। वही मौसम विभाग ने मछुआरों को 2 अगस्त तक समुद्र में न जाने की चेतावनी दी है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राहत और बचाव अभियान जारी है।
2: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। हालांकि महानदी नदी प्रणाली में अब काफी हद तक नियंत्रण में है क्योंकि इसके ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में बारिश कम हुई है। हालांकि लगभग 2,68,000 लोग बाढ़ के पानी में फंसे हुए हैं जबकि 13 जिलों में करीब 8,00,000 लोग बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। बैतरणी नदी का जलस्तर फिर से बढ़ रहा है। राजुआ नदी के बाढ़ के पानी ने खुर्दा जिले के कई गाँव को प्रभावित किया है। उड़ीसा के राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी ने आज वर्चुअल माध्यम से जिला कलेक्टरों के साथ बाढ़ की स्थिति और राहत कार्यों की समीक्षा की। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: समग्र राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी शहीद उधम सिंह के 87वें शहीद दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उधम सिंह गदर पार्टी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक स्थगित। हैदराबाद पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री फैलाने के आरोप में मेटा इंडिया के अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की। कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों ने पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाने का आरोप लगाया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों के हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज। 120 से अधिक प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की खबर। और गुजरात तथा मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो महिला मंच, और ये है आपके शहर का अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी आरजे खुशी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय की जो घर से जुड़ा हुआ है, महिलाओं की स्वास्थ्य और पोषण पर। दोस्तों अक्सर देखा जाता है कि घर में सबसे पहले महिलाएं उठती हैं और सबके बाद में ही सोती हैं। सुबह बच्चों का टिफिन बनाना, घर का काम संभालना, कई महिलाएं तो ऑफिस भी जाती हैं, यानी पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर होती है। लेकिन एक सवाल है, क्या महिलाएं अपने स्वास्थ्य का उतना ध्यान रखती हैं जितना बाकी लोग रख पाते हैं? अक्सर जवाब होता है नहीं। कई बार महिलाएं जल्दी जल्दी में खाना खा लेती हैं, कई बार अपना खाना ही छोड़ देती हैं। लेकिन हमें ये समझना होगा कि अगर महिलाएं स्वस्थ रहेंगी तभी पूरा परिवार स्वस्थ और खुश रहेगा। इसीलिए आज के इस खास शो में हम बात करेंगे कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखें और अपने खान पान में कौन कौन सी चीजें शामिल कर सकती हैं।
3: क्या बात है, बहुत जरूरी बात तुमने कही आज खुशी। सो अब हम बात करते हैं पोषण का महत्व। महिलाओं के लिए सही पोषण बहुत जरूरी होता है, लेकिन कई बार महिलाएं अपने खान पान पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। कई घरों में देखा जाता है कि महिलाएं पहले पूरे परिवार को खाना परोसती है और बाद में खुद खाती है। कई बार जब तक उनकी बारी आती है तब तक खाना ठंडा हो जाता है या कम बचता है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि शरीर को ताकत देने के लिए सही और संतुलित भोजन बहुत जरूरी है। महिलाओं को अपने खाने पीने में हरी सब्जियां, दाल, फल, दूध और अनाज जरूर शामिल करना चाहिए। ये चीजें शरीर को जरूरी पोषण देती है और शरीर को मजबूत बनाती है। इसी के साथ कोशिश करेंगे कि दिन में 3 बार सही समय पर खाना जरूर खाए। खाना छोड़ना या देर से खाना खाना स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होता है।
2: बिल्कुल रीना जी, आप सही कह रही हो। दोस्तों एक बहुत बड़ी समस्या जो कई महिलाओं में देखी जाती है वह है आयरन की कमी। आयरन की कमी से शरीर में खून की कमी होती है, जिससे कमजोरी, चक्कर आना, जल्दी थक जाना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। कई महिलाएं कहती हैं कि उन्हें हर समय थकान महसूस होती है। इसका एक ही कारण है, शरीर में आयरन की कमी भी हो सकती है। इसीलिए खाने में ऐसी चीजें जरूर शामिल करें जिनमें आयरन भरपूर मात्रा में हो, जैसे पालक, चुकंदर, अनार, गुड़, दाल और हरी पत्तीदार सब्जियां। अगर हम अपने खाने में इन चीजों को शामिल करेंगे तो शरीर को ताकत मिलेगी और कई बीमारियों से भी बचाव होगा।
3: बिल्कुल, बहुत सही बात कही है तुमने खुशी। और अब हम बात करेंगे कैल्शियम का महत्व। दोस्तों महिलाओं के लिए कैल्शियम भी बहुत जरूरी होता है। कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। अगर शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए तो हड्डियां कमजोर होने लगती है और आगे चलकर जोड़ों में दर्द या अन्य समस्याएं हो सकती है। इसीलिए महिलाओं को अपने खाने में दूध, दही, पनीर, हरी सब्जियां और सूखे मेवे का जरूर शामिल करना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं कि दूध सिर्फ बच्चों के लिए जरूरी होता है, लेकिन सच यही है कि महिलाओं के लिए भी दूध और कैल्शियम बहुत जरूरी होता है।

0: साथियों, अब हम बात करने वाले हैं पानी के बारे में, पानी के महत्व के बारे में, क्योंकि आपको पता है गर्मियों का समय है और पानी हमारे लिए कितना जरूरी है। दोस्तों, कई बार महिलाएं दिन भर में काम में इतना व्यस्त हो जाती हैं कि पानी पीना ही भूल जाती हैं। लेकिन पानी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। ये शरीर को तरोताजा रखता है और शरीर को गंदगी से बाहर निकालने में मदद करता है। डॉक्टर भी कहते हैं कि दिन में कम से कम 7 से 8 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। अगर आप चाहें तो इसे अपने पास पानी की बॉटल रख सकती हैं, ताकि आपको याद रहे और आप समय समय पर पानी पीती रहें।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने कि पानी पीना हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन साथ साथ हम बात करेंगे आराम की जरूरत। इस भाग दौड़ की दुनिया में ना, सच बताऊं, औरतें आराम मानो तो उनके जिंदगी में है ही नहीं। पता नहीं वो कहाँ चला गया है, ये कोई जादू है या क्या है कि उनको थकान कभी फील ही नहीं होती है। तो श्रोताओं, स्वास्थ्य के लिए आराम और नींद भी बहुत जरूरी होती है। कई महिलाएं दिन भर काम करती हैं और रात में भी देर तक जागती रहती है। इससे शरीर को पर्याप्त आराम नहीं मिल पाता है। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेना शरीर के लिए बहुत जरूरी है। जब शरीर को सही आराम मिलता है तो मन भी खुश रहता है और शरीर भी स्वस्थ रहता है और आप कोई भी काम फिर आसानी से कर पाएंगे। कहते हैं ना, जब तक आपकी बॉडी आराम नहीं कर पाती है तब तक आप कोई भी काम करिए, आप अच्छे मन से नहीं कर पाएंगे। ऊपर से आपका सर भारी रहेगा और पूरा दिन लगेगा कि यार क्या ही करूँ क्या ना करूँ।
0: इसीलिए
1: बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात कही खुशी ने। आप जैसे सुबह उठोगे, जब तक आपके अंदर थकान होगी ना, आपके सर में दर्द तुरंत बन जाता है। इसीलिए सोना, आराम करना बहुत जरूरी है हमारे जिंदगी में।
0: प्रॉपर 7-8 घंटे की नींद लीजिए, ताकि आपका बॉडी अगले दिन के लिए तैयार रहे और एनर्जेटिक रहे।
1: बिल्कुल। सो मिलते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद। बस आप यूं ही बने रहिए आरजे रीना और आरजे खुशी के साथ महिला मंच शो में। और बहुत ही शानदार ये गाना आप सभी को हमारी प्यारी वुमनिया के लिए डेडिकेट है।

0: दोस्तों, रीना जी ने अभी बात की थी आराम के बारे में और अब मैं बात करने वाली हूँ व्यायाम के बारे में। जी हाँ, सुबह सुबह दोस्तों देखिए, हमारा जीवन जो है ना, वो हमारा जो स्वास्थ्य है वो एक धन है और उस धन को हमें कैसे एकत्रित करना है, कैसे इकट्ठा करना है, वो हम कैसे करेंगे आपको पता है, जब हम आप अपने फिटनेस का ख्याल रखेंगे। क्योंकि कहते हैं ना, स्वास्थ्य ही असली धन है। और अब मैं बात करने वाली हूँ व्यायाम के बारे में। दोस्तों, स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम बहुत जरूरी है। अगर महिलाएं रोज 20 से 30 मिनट की सैर करें या हल्का फुल्का योग करें तो शरीर फिट रहता है। व्यायाम करने से शरीर में ऊर्जा बढ़ती है और मन भी अच्छा महसूस करता है। इसीलिए कोशिश करें कि हर रोज थोड़ा समय अपने स्वास्थ्य के लिए जरूर निकालें।
1: बिल्कुल खुशी, तुमने बहुत अच्छी बात कही है। इस भाग दौड़ की दुनिया में ना, हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाते। इसीलिए सभी वुमनिया से हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने लिए सुबह आधा घंटा निकालिए, इतना ही काफी है आपके लिए।

0: सो अब हम बात करेंगे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। कई बार महिलाएं इतनी जिम्मेदारियों में उलझ जाती हैं कि तनाव बढ़ने लगता है, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य। इसीलिए थोड़ा समय अपने लिए निकालें, अपने मनपसंद गाने सुने, किताब पढ़े या दोस्तों से बात करें। ये छोटी छोटी चीजें मन को खुशी देती है। और बिल्कुल सही बात है, हम क्या है ना, पूरे परिवार की जिम्मेदारी में ना खुद की मनपसंद चीजें भूल ही जाते हैं।
1: अच्छा, इसीलिए आपने बात की है रीना कि भूल ही जाते हैं अपनी दुनिया, अपनी फैमिली को मतलब केयर करने में, उनको
0: संभालने में।
1: हाँ। तो ये बताओ, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ना तो अभी आपकी शादी हुई है और ना ही आपके बच्चे हैं, आप अभी अकेली हैं, तो आप अपनी मनपसंद की चीजें क्या करती हैं जब आप फ्री रहती हैं?
0: देखो, घर पे भी रहती हूँ तो मम्मी से जो बोलती हूँ वो बनाती हैं। और मम्मी से मैं कभी पूछती हूँ ना क्या आपको क्या पसंद है, तो बोलती है जो तुम्हें पसंद है मैं वही खा लूंगी। मैंने कहा नहीं मम्मी, आज ऐसा नहीं चलेगा, आज आप बताओ कि आपको क्या पसंद है।
1: हाँ।
0: तो मेरी मम्मी को ज्यादा कुछ नहीं, बस खीर।
1: अरे वाह,
0: खीर बहुत पसंद है मेरी मम्मी को, सच में। हाँ, वो कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस खीर बना दो मेरे लिए। तो मैंने अपनी मम्मी के लिए ना एक बार खीर बनाया और मेरी मम्मी को सच में बहुत पसंद आया। तो मेरी मम्मी कहती है कि जब भी अगर तू खीर बनाएगी ना घर में, मतलब खीर बनाने की बारी आएगी तो तू ही बनाएगी। तो मैं अपने घर में वही बनाती हूँ, और बल्कि मम्मी ने ही सिखाया मुझे खीर बनाना भी।
1: हाँ।
0: तो देखिए, मतलब हम अपने घर में ना अपने साथ साथ मम्मी का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हीं की वजह से हमारा परिवार आगे बढ़ता है।
1: एग्जैक्टली। और फिर रीना, मुझे ऐसा लगता है कि देखो, जो सबका ख्याल रखती है तो उनका भी ख्याल रखने वाला कोई चाहिए ना।
0: बिल्कुल। और आप गाइस ये पूछोगे ना अपनी मम्मी से कि आज आपकी पसंद का खाना बनाते, बताओ क्या खाना है आपको, तो उनके जो चेहरे पर खुशी होगी ना, नेक्स्ट लेवल वाली होगी खुशी। आगे हम बात करते हैं,
1: आगे हम बात करने वाले हैं अभी स्वास्थ्य के ऊपर। अब मैं बात करने वाली हूँ नियमित जांच।
0: बिल्कुल।
1: तो दोस्तों, महिलाओं को समय समय पर स्वास्थ्य जांच की भी। अच्छा रीना, आपको पता है हमारी जो घर की वुमेन होती है ना, वुमनिया जिसको आप बोल रही हैं, वो सबका ध्यान रखती हैं, लेकिन वो अपने स्वास्थ्य को लेकर अपना ध्यान नहीं रख पाती हैं। लाइक जैसे छोटी छोटी कभी चक्कर आ जाते हैं, कभी वीकनेस फील होती है, तो वो जांच नहीं करवाती हैं, वो नजरअंदाज कर देती हैं कि ठीक हो जाएगा, नॉर्मल है। लेकिन ऐसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी ये जो चीजें होती हैं, जो ये बड़ी प्रॉब्लम कब बन जाए, कब बड़ा रूप ले लें, कुछ नहीं पता है।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने, इसीलिए समय पर जांच करवाना बहुत जरूरी है। और मैं घर की सभी वुमनिया से रिक्वेस्ट करूंगी कि कभी आप ये ना सोचे कि घर के नुस्खे से ही हम ठीक हो जाएंगे, बल्कि कुछ चीजें ऐसी होती है कि आपको डॉक्टर के पास ही जाना जरूरी होता है। सो श्रोताओं, हम लेंगे यहाँ से जाने की इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर से कनेक्ट होंगे और करेंगे और बातें, और फिर हम बोलेंगे आपको बाय बाय।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

0: क्या बात है जी, बहुत ही प्यारा गाना एंजॉय किया आपने आरजे रीना और आरजे खुशी के साथ। सो अब हम लेंगे यहाँ से जाने की इजाजत, लेकिन जाने से पहले आज के शो
1: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा।

0: इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
2: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
1: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
2: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
1: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
3: मुरादाबाद
1: से संपर्क कीजिए।
2: नियम और शर्तें लागू।

नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून, आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। साथियों, वक्त हुआ है अभी स्टूडियो की घड़ी में 3:04 और बहुत ही खूबसूरत सा दिन है आज फ्राइडे का, शुक्रवार का। कहते हैं ना कि शुक्र है, आज शुक्रवार है और बाहर का जो मौसम है ना, बड़ा ही खूबसूरत है। ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। और साथियों, आप इस खूबसूरत शो में मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। उसके लिए आपको कॉल करना होगा, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। और जब तक आप मुझे कॉल करते हैं, तब तक मैं आपको सुनवाती हूँ एक शानदार सा ट्रैक, बहुत ही प्यारा सा है, क्योंकि बाहर हवाएं चल रही हैं तो ये गाना ना आज के वेदर पर एकदम फिट बैठता है। सुनते हैं शानदार गाने को।

0: क्या बात है दोस्तों, बड़ा ही खूबसूरत सा ट्रैक अभी आपने सुना आतिफ असलम जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज में, ये भीगी भीगी यादें। हाँ देखिए दोस्तों, लगता है सुहाने से मौसम में ना सिर्फ बादलों को ही नहीं, किसी की यादों को भी दस्तक, मतलब कोई आप किसी को याद कर रहे हैं ना। हाँ मुझे पता है। तो देखिए, याद करने से अच्छा है कि आप उनको कोई प्यारा सा गाना डेडिकेट करो और उनको कॉल करो कि देखिए हमने आपके पसंद के गाने यहाँ पर प्ले करवाया है और आप भी सुनिएगा, मैं भी सुनता हूँ, तो जो दिन है ना वो और ज्यादा अमेजिंग हो जाएगा। कोई अपना ऐसा खास पर्सन जो आपके दिल के बहुत करीब है, बहुत दिन से आपकी बातचीत नहीं हुई है, तो आज याद कर रहे हैं आप इस गाने के जरिए, आपने उनको याद किया है, तो आप बात भी कर लीजिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि रिश्तों में ना बात करना बहुत जरूरी है। जब तक रिश्तों में बात नहीं करते ना, तब तक रिश्ते और ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं। तो मुझे लगता है कि बॉन्डिंग तभी स्ट्रांग होती है जब आप बातचीत करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। बहुत जरूरी है रिश्ते में बातचीत करना, एक दूसरे को समझना। बाकी हम तो आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप हमें कॉल करें, और हमारे पास एक लिसनर का कॉल आया था, श्याम नारायण जी का, उनसे बातचीत करते हैं। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश। हेलो हेलो हेलो। तो दोस्तों, हमारे जो कॉलर हमारे साथ कनेक्ट हुए थे वो तो फिलहाल हमसे उनकी बातचीत नहीं हो पाई है, शायद कोई नेटवर्क इशू की वजह से। बट हाँ, अगर आप कॉल करना चाहते हैं ना इस कार्यक्रम में, तो बेफिक्र होकर कॉल कीजिएगा, मैं इंतजार कर रही हूँ। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। नेक्स्ट कॉलर का कॉल आ गया है, उनसे बात करते हैं। हेलो फरमाइश। हाँ जी सर, अपना रेडियो सेट का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लीजिएगा प्लीज। जी हाँ जी सर, बताइएगा कैसे हैं आप।
1: सब बढ़िया है, आपका प्रोग्राम सुनना है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं।
0: हाँ जी, ठंडी हवाओं को आप आनंद ले रहे हैं और आपने फिर मुरादाबाद में कॉल भी लगा लिया है, तो बताइएगा सर क्या फरमाइश है आपकी।
1: तो सुनो, देख लो, देख लिया, प्यार बड़ा मुश्किल है, प्यार करने को तैयार है, इतना से बोले जाने से। तो
0: एक बार फिर से बताइएगा।
1: सुनो, सोच लिया, देख लो, देख लिया।
0: अच्छा, और ये गाना किनके साथ सुनना चाहते हैं आप।
1: हमारे पास दवाखाने से दादू से नमस्कार है, हाजी रफ्तार साहब राम रोके हैं, हमारे यहाँ से बेटी माहिन हो रहे मरीजा है, तो वसी में सुनाएगा है दादू
0: अच्छा ठीक है
1: साहब।
0: सर, आपके सभी दोस्तों के साथ सुनवाते हैं प्यारा सा गाना जी। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं सर की पसंद का ये खूबसूरत सा गाना। तब तक आपको भी है मुझे फोन लगाना, आप नंबर हमारा मत भूल जाना, मैं रिपीट करा देती हूँ आपको, अगेन रिमाइंड करा देती हूँ। मोबाइल नंबर हमारा है 9837896896, और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट आरजे खुशी। तो सुनते हैं इस खूबसूरत गाने को, ये इस गीत को गाया है अलका याग्निक जी ने और साथ में अमित कुमार जी की बड़ी प्यारी सी आवाज। सुनते हैं इस खूबसूरत गीत को, आप सब मिलकर, हम सब मिलकर एंजॉय करते हैं।

0: गुड आफ्टरनून दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं अपने शहर का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। और अभी आपने ये प्यारा सा गाना सुना योद्धा मूवी से, एंड इस खूबसूरत गीत को गाया था अलका याग्निक जी, साथ में अमित कुमार जी की बहुत प्यारी आवाज। लिरिक्स थे आनंद बख्शी जी के। और दोस्तों, हवाओं में आज कुछ तो बात है, चेहरे पर मुस्कान और दिलों में किसी अपने की याद है। हाँ, अगर आपके चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई है ना, तो समझ लीजिएगा मौसम ने अपना जादू दिखाना शुरू कर दिया है। अब आप भी अपना जादू दिखाइए, हमें फोन मिलाइए और हम सुनवाएंगे आपको आपका फेवरेट ट्रैक। अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं उनकी फरमाइश यहाँ पर। हेलो फरमाइश। हाँ जी, क्या नाम है आपका?
1: मोहम्मद जुनैद
0: जी। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? ओके, बताइए क्या करते हैं आप?
1: स्टील पॉलिश का काम करता हूँ।
0: अच्छा, और रेडियो कब से सुन रहे हैं आप?
1: करीबन 6-7 साल से।
0: ओके, रेडियो सुनने का शौक है आपको बहुत ज्यादा? हाँ,
1: बचपन से शौक है।
0: अच्छा, बचपन से शौक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। बताइएगा आज क्या सुनना चाहते हैं आप? आप क्या सुनना चाहते हो आज? कौन सा गाना है जिसके लिए आपने कॉल किया है? कोई ट्रैक है आपके पसंद का? बताइएगा।
1: सनम दे।
0: ओके, चलिए सुनवाते हैं गाना। थैंक यू सो मच जुनैद कॉल करने के लिए। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं प्यारा से गाना। और आप भी अगर मुझे कॉल करेंगी ना, तो दोस्तों प्लीज थोड़ा सा लाउड बोलना। आपने खाना वाना खाया है, इतनी एनर्जी तो है, थोड़ा सा दिखाओ ना एनर्जी, क्यों इतना लो फील कर रहे हो आप? हाँ, चलो ये गाना सुनो, अभी आती हूँ वापस में।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है ZIG प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। ZIG करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: दोस्तों, ऐसे खूबसूरत गाने जब हम सुनते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। और देखिए, हर किसी लिसनर्स की फरमाइश जो होती है वो बड़ी स्पेशल होती है, यूनिक होती है। और हमें नए नए गाने सुनने को मिलते हैं, और वो सिर्फ गाने नहीं होते हैं दोस्तों, वो एहसास होते हैं। एक्चुअली ना जज्बात होते हैं उसमें, कुछ चीज़ें होती हैं हमारी यादों से जुड़ी होती हैं। और जब हम रेडियो पर देखिए, आप अभी इतने सारे श्रोता हमारे हैं ऑन द वे, कुछ कार में भी हैं, कुछ ऑफिस में हैं, एंड कुछ अभी घर पर हैं जो आराम कर रहे हैं, और कुछ अभी शॉप पर बैठे हुए हमें सुन रहे हैं। तो सभी की होती है अपनी लाइफ, अपनी एक लाइफ की कहानी, स्टोरी, और कुछ गाने जो हमारी प्यारी सी यादों से जुड़े होते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही कुछ गाने हम अभी लाइव आपके लिए प्ले करें, लेकिन उसके लिए आपको कॉल करना होगा। आप जब तक कॉल नहीं करेंगे तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि आपको ये गाना पसंद है? तो जल्दी से अपनी पसंद के लिए हमें कॉल कीजिएगा, अपने गानों की पसंद के लिए मुझे कॉल कीजिए। आप नंबर है 9837896896। और अभी सुनते हैं अपने अगले कॉलर की बातचीत, उन्होंने क्या आज वो सुनना चाहते हैं एंड क्या उनकी फरमाइश है, उन्हीं से बातचीत कर जानते हैं और आपको भी सुनवाएंगे। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
1: शमशोल
0: जी। कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: ग्राम खेड़ा टाड़ा रामपुर से।
0: जी बताइएगा सर, कैसे हैं आप?
1: ठीक है मैम।
0: ओके, क्या करते हैं आप, बताइएगा अपने बारे में।
1: मैम खेती बाड़ी करते हैं मैम।
0: अच्छा, खेती बाड़ी, तो खेतों में क्या लगाया इस वक्त आपके यहाँ पर?
1: अब तो ऐसे धान लगा हुआ।
0: अच्छा, धान लग गया है। तो आज रामपुर का मौसम कैसा है बताइएगा सर?
1: सही है, ज्यादा धूप भी नहीं है, अच्छा मौसम हो रहा है, अच्छी फिजा।
0: अच्छा, हवाएं चल रही हैं?
1: हवाएं चल रही
0: हैं जी। बताइएगा आज कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं सर?
1: मैम ये सुनना था, ये कैसी मुलाकात है, मैं किस खुमान में हूँ।
0: ओके,
1: वो आगे जा चुका है, मैं इंतजार में हूँ।
0: ठीक है सर, सुनवाते हैं खूबसूरत सा गीत आपको। तो चलिए एवरीवन, हम सर को इंतजार नहीं करवाते हैं, ये प्यारा सा गाना जल्दी से सुनवा देते हैं, और आप भी कॉल कीजिएगा, हमें इंतजार है आपकी फोन कॉल का। और मुझे पता है कि आप हमें जल्दी से कॉल करने में व्यस्त हैं,

0: परफॉर्मेंस सुपर, बहुत ही खूबसूरत था। और म्यूजिक डायरेक्टर थे नदीम शरवण जी एंड लिरिक्स थे समीर जी के। तो आप किस खुमार में हैं, जल्दी से कॉल कीजिए। नंबर हमारा है 9837896896। बात करते हैं अभी अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, आपको भी नमस्कार। क्या नाम है आपका?
1: रामपुर तहसील स्वार से जवेद अंसारी बात कर रहा हूँ मैम।
0: जी बताएगा सर, कैसे हैं आप?
1: बस बढ़िया है मैम, आप सुनाइए आप कैसी हैं और आपके तरफ का मौसम कैसा है?
0: हमारी साइड का मौसम तो बड़ा ही सुहाना है और हम तो ठीक हैं। आप बताइएगा आपकी साइड मौसम कैसा है सर?
1: बहुत तेज है, उसके साथ में सर हवाएं भी तेज चल रही हैं ठंडी।
0: हाँ जी, सेम पिंच उधर भी हवाएं चल रही हैं। और बताइएगा सर, क्या फरमाइश है आज आपकी?
1: गाने की फरमाइश है, सनम फिल्म का गीत है।
0: हम
1: करे के मोहब्बत में तो मकाम आए, तेरे
0: अरे वाह, आपने खुद सुना दिया है। चलिए अब हम आपको सुना देते हैं प्यारा सा गीत। शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं ये खूबसूरत गीत साधना सरगम जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज़।

0: रिलैक्स सनी।
1: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
2: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
1: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में।
2: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
1: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
2: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
3: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
4: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
5: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
4: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
6: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
7: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है FM मुरादाबाद 89.6 पर। शो का नाम है हेलो फरमाइश और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। वक्त हुआ है अभी 3:45 और बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, जानेंगे उनकी फरमाइश। हेलो फरमाइश।
8: हेलो
7: हेलो। हाँ जी सर।
8: हेलो
7: हेलो, आपको आवाज़ आ रही है? सर अपने रेडियो सेट का वॉल्यूम थोड़ा कम कर लीजिएगा प्लीज। जी अपना नाम बताइएगा आप।
8: नाम इरशाद अली नाम है।
7: इरशाद अली जी, मुरादाबाद से बात कर रहे हैं, बताइए सर कैसे हैं आप?
8: बढ़िया मैम, बढ़िया, आप बताओ मैम, ठीक हैं आप?
7: हाँ जी, हाँ जी, हम भी बहुत ही अच्छे हैं सर। बताइएगा मुरादाबाद में कहाँ से हैं आप? हथला से। जी बताइएगा क्या फरमाइश है आपकी?
8: मैम गाना सुनवा दो, काश कोई लड़की मुझे प्यार करते।
7: ओके, और सुनवाते हैं ये गाना आपको। थैंक यू कॉल करने के लिए। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं ये प्यारा से गाना और उसके बाद हम आपसे भी करेंगे बातचीत। तो उसके लिए आपको कॉल तो करना होगा ना एवरीवन, फटाफट से कॉल कीजिएगा। मुझे पता है बहुत सारे श्रोता जो है ना वो कॉल लगाने का प्रयास कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि जल्दी से काश मेरा कॉल भी लग जाए। तो अच्छी बात है दोस्तों, आप कॉल कीजिएगा, मैं इंतज़ार कर रही हूँ।

0: देखिए श्रोताओं, हम तो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए भी जे आपसे मुलाकात करने चले आते हैं 3 से 5। और अभी आपने एक खूबसूरत सा गाना सुना फ्रॉम द मूवी हम है राही प्यार के, जो 1993 में आई थी। और इस खूबसूरत गीत को गाया था कुमार सानू, साथ में अलका याग्निक जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज। आवाज में अभी ये ट्रैक सुना। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, वक्त हुआ है 3:52। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश।
1: हेलो,
0: हाँ जी, क्या नाम है आपका?
1: हेलो
0: हेलो, आपका नाम क्या है बताइएगा?
1: मेरा नाम निशा है।
0: निशा, कहाँ से बात कर रहे हो?
1: मैं कुंदनपुर से बोल रही हूँ।
0: अच्छा, कुंदनपुर से बात कर रहे हो।
1: हाँ।
0: और बताइएगा,
1: आप कैसी हो?
0: मैं ठीक हूँ, आप बताइएगा, क्या करते हो?
1: पढ़ाई करती हूँ।
0: अच्छा, क्या स्टडी कर रहे हो? ओके, और एफएम मुरादाबाद आप कब से सुन रहे हो?
1: जी, मुझे 1 साल हो गया।
0: अच्छा, 1 ईयर हो गया है। ओके, बताएगा क्या सुनेंगे आज आप?
1: मुझे मूवी का नाम तो पता नहीं, पर गाने के बोल मैं सबको करवाना है, और तेरे घर से हाथ तेरे पापा के घर से।
0: ओके, चलो सुनवाते हैं प्यारा से गाना, ठीक है? मोस्ट वेलकम। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं प्यारा सा गाना फ्रॉम द मूवी हीरो नंबर 1 से ही गाना है। करिश्मा कपूर साथ में गोविंदा जी, बहुत ही खूबसूरत नजर आती है इन दोनों की जोड़ी। और सुनते हैं प्यारा से गाना। मैं लौट कर आने वाली हूँ, तब तक आप भी ट्राई करो, शायद आपको भी कॉल लग जाए। हमारे शो के नेक्स्ट कॉलर भी आप बन सकते हो, कुछ भी हो सकता है, बस आप कोशिश मत छोड़िए, कॉल ट्राई करते रहिए।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
2: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
3: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
2: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
3: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
4: मुरादाबाद
2: से संपर्क कीजिए।
3: नियम और शर्तें लागू।

0: हाई एवरीवन, गुड इवनिंग, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6। शो का नाम है हेलो फरमाइश। और देखिए, अभी आपने सुना बहुत ही बेहतरीन सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी हीरो नंबर वन से कुमार सानू, साथ में अलका याग्निक जी की बहुत ही प्यारी आवाज। और म्यूजिक डायरेक्टर थे आनंद मिलन जी, एंड लिरिक्स थे समीर जी के। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, जानेंगे उनकी फरमाइश भी यहाँ पर। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, नमस्कार। जी वेरी गुड इवनिंग, बताइएगा क्या नाम है आपका। जी बताइएगा कैसे हैं आप।
1: How are you?
0: I am good sir, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइएगा कैसे हैं।
1: बढ़िया हैं।
0: ये अच्छा ही रहना चाहिए। बताइएगा कैसा मौसम है आज बाहर का।
1: आज का मौसम बहुत अच्छा है, हवाएं चल रही है, धूप भी निकल रही है, हवा भी चल रही है, अंजलि फुहार भी आई।
0: अच्छा अच्छा, ओके। तो बताइएगा सर, आप क्या सुनना चाहते हैं आज।
1: आज कब्जे जलाइए मोहम्मद रफी साहब की पढ़ती है।
0: हाँ जी,
1: सुनने की आवाज में एक सॉन्ग सुनना चाहता हूँ।
0: जी बताइएगा।
1: मूवी का नाम है साज और आवाज, सॉन्ग है
0: ओके। ठीक है सर, सुनवाते हैं खूबसूरत से गीत।
1: दोस्तों का नाम।
0: हाँ जी हाँ जी, बताइएगा बताइएगा सर।
1: करुणा मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी, डॉक्टर सलीम अंसारी, कासिम अंसारी।
0: ओके ठीक है सर, शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। सुनवाते हैं आपके पसंद के बेहतरीन सर ट्रैक। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं मोहम्मद रफी साहब जी की आवाज में खूबसूरत सा गीत। फिर आपसे बातचीत करेंगे, आप ही कॉल लगाइएगा।

0: दोस्तों अभी आपने सुना ये खूबसूरत सा ट्रैक मोहम्मद रफी साहब जी की आवाज में, शाज और आवाज से, जो 1966 में आई थी, बहुत ही खूबसूरत सी फिल्म। और बात करते हैं अभी अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, नमस्कार
1: जी। नमस्कार
0: जी, अपना शुभ नाम बताइएगा।
1: जी मैं राजू यादव, श्रीरामपुर, हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश।
0: जी जी, बताइएगा सर, कैसे हैं आप?
1: मैं तो बहना जी बढ़िया हूँ, मस्त हूँ, व्यस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, बिंदास हूँ, बगीचे में बैठा रेडियो एफएम मुरादाबाद को भरपूर मजा ले रहा।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं आप। बताइएगा आज क्या फरमाइश है आपकी?
1: मूवी का नाम रहेगा संकरा गीत के बोल होंगे, जाना नन्ने ने मिला के मेरी अखियों से निंदिया, चुरा के तुम्हें मेरी कसम, मेरी कसम।
0: बहुत खूब आपने गुनगुनाया है सर।
1: कुछ लाइनें भी कहूंगा बहन।
0: जी जी तो। जी बिल्कुल कहिएगा, परमिशन है आपको।
1: रुपया पैसा कुछ खास नहीं, सावन में सजना सजनी के पास, ये मौसम अगर तनहा बीता तो बचेगी कोई आस नहीं।
0: तो सुनवाते हैं गीत आपको, धन्यवाद कॉल करने के लिए सर। आपको भी प्रणाम, नमस्कार। तो चलिए श्रोताओं, सुनते हैं ये खूबसूरत से गीत और करेंगे आपसे भी बातचीत। आप भी मुझे कॉल लगाना ना भूलिएगा। मोबाइल नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 98 378 96 896।

0: इतने प्यारे प्यारे श्रोताओं को छोड़कर हम कहाँ जा सकते हैं भाई। श्रोताओं, आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। आरजे खुशी है आपके साथ, जो लेकर आती है आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ। और वो खुशियाँ कैसे मिलती हैं आपको? जब आप अपना फेवरेट गाना सुनते हैं या फिर किसी को डेडिकेट करते हैं। और मैं आपको टाइम बता देती हूँ, 4:12 हो गए हैं, 13 मिनट हो गए हैं। और बात करते हैं अपने अगली कॉलर से। हेलो फरमाइश।
1: हेलो।
0: हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
1: नमस्ते मैडम।
0: आपको भी नमस्कार सर, नाम बताइएगा अपना।
1: उमा शंकर सिंह बोल रहा हूँ
0: जी। बताइएगा उमा शंकर जी, कैसे हैं आप? बहुत टाइम के बाद आपने कॉल किया है आज।
1: हाँ हाँ, टाइम नहीं मिल पा रहा था, अब आज से लगभग टाइम मिला है
0: जी।
1: तो उम्मीद है कि आप कंटिन्यू आपके साथ जुड़े रहेंगे।
0: थैंक यू सर। बताएगा क्या मतलब, किस काम में आप व्यस्त थे जो हमें कॉल नहीं कर पाए?
1: अच्छा ना, कुछ हमारी ट्रेनिंग चल रही थी।
0: अच्छा,
1: तो हाँ इस चक्कर से बिजी हो गया था, ट्रेनिंगों से थोड़ा बिजी हुआ हूँ। तो अब जुड़ना शुरू करूँगा
0: जी। तो बताएगा आज क्या फरमाइश है आपकी?
1: फरमाइश है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है।
0: ओके, तो ये गीत आपको सुनवा देते हैं हम सर, धन्यवाद कॉल करने के लिए। ठीक है सर। तो चलिए सर, चलिए दोस्तों सुनते हैं ये उमा शंकर जी की पसंद पर प्यारा सा गाना, और उसके बाद करेंगे आपसे भी बातचीत।

0: हमारे दोस्तों अभी ये बेहतरीन सा ट्रैक आपने सुना किशोर कुमार जी की आवाज में। लिरिक्स थे आनंद बख्शी जी के और म्यूजिक डायरेक्टर थे लक्ष्मीकांत प्यारीलाल जी। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है और अगर इस समय जो हमारे लिसनर ऑन द वे कार में है, हम उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप केयरफुली ड्राइविंग कीजिएगा और अगर घर के और जा रहे हैं ऑफिस से तो थोड़ा सा मुस्कुरा भी लीजिए। ऑफिस की टेंशन ना ऑफिस में छोड़ दीजिए और जब घर जाए ना तो हैप्पीनेस के साथ जाया कीजिए, क्योंकि घर पर सब आपका भी सब्री से इंतजार करते हैं। और टेंशन लेने ही क्यों है, टेंशन लेने से थोड़ी ना प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलता है। अच्छा सोचने से मुश्किलों का हल मिलता है, तो अच्छा सोचिए, मुस्कुराइए और जीवन में आगे बढ़ते जाइए। तो चलिए भी हम भी आगे बढ़ते हैं, अपने अगले कॉलर से बातचीत करते हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी, क्या नाम है आपका? नाहिद फातिमा जी बात कर रही, रामपुर से बताएगा। कैसी है नाहिद जी आप?
1: अच्छी हूँ मैम, आप कैसी हो?
0: मैं ठीक हूँ। हाँ जी आप बताइएगा, क्या सुनेंगे आप?
1: जी मैम,
0: मैंने बोला क्या सुनेंगे आज आप, क्या फरमाइश है आपकी?
1: तो भाई ये साथ ही सुना देना।
0: अच्छा ओके, क्या करते हैं आप, अपने बारे में बताइएगा।
1: मैं स्टडी करती हूँ।
0: अच्छा, क्या स्टडी करते हैं आप?
1: एमए फाइनल किया है मैंने।
0: ओके, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है आपने? अरे वाह, तो आगे क्या करना है, क्या डिसाइड किया है आपने?
1: आगे मैं नेट की तैयारी कर रही हूँ।
0: ओके, ऑल द बेस्ट हमारी ओर से यार।
1: जी मैम, थैंक यू,
0: मोस्ट वेलकम। तो सुनिएगा ये प्यारा सा ट्रैक आपकी पसंद का।
1: अपने दोस्तों को मिल सकती हूँ?
0: हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बताइएगा। ओके, इतना नाम लेते हुए शर्मा क्यों रही हैं आप? फर्स्ट टाइम बात कर रहे हो क्या?
1: मैम फर्स्ट टाइम ही कर रही, काफी टाइम बात कर रही हूँ।
0: ओके, लॉन्ग टाइम बात कर रहे हो है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। सुनवाते हैं प्यारा सा गीत आपको, मोस्ट वेलकम डियर। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं ये खूबसूरत गीत, उसकी बात करेंगे आपसे भी बातचीत। बस आप ट्राई करते रहिए, मुझे तो उम्मीद है आपका कॉल लग जाएगा।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
4: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
3: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में।
4: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
3: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
4: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
2: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
5: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
6: अरे बेटा बस थोड़ी दूरी तो जाना है।
5: पर पापा।
6: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
2: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद। Thank you.

और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हाय गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी का वेलकम है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। शो का नाम है हेलो फरमाइश और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त खुशी। श्रोताओं, अभी आपने बहुत ही प्यारा से ट्रैक सुना फ्रॉम द मूवी तेरे नाम से, उदित नारायण जी की खूबसूरत सी आवाज में। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम नीरज शर्मा है, मैं सीहोर से बात कर रहा हूँ।
0: जी बताइएगा, क्या करते हैं सर आप?
1: मैम मुझे एक सॉन्ग सुनना है 18 बरस की तो होने को आई मोहम्मद रफी की आवाज में।
0: बिल्कुल सुनवाएंगे, सुनवाएंगे। पहले ये तो बताइए आपके हाल चाल कैसे हैं?
1: मैम मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
0: हाँ जी मैं भी ठीक हूँ। और मैंने आपसे जानना चाहा था कि आप क्या करते हैं, बताइएगा।
1: जी मैम मैं अभी सेकंड ईयर में हूँ, मैं स्टडी करता हूँ।
0: ओके, स्टडी करते हैं और रेडियो सुनने का शौक है आपको, है ना?
1: जी जी
0: जी, तो सुनवाते हैं गीत आपको। शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो चलिए श्रोताओं, सुनते हैं सर की पसंद का ये खूबसूरत सा ट्रैक एंड मोहम्मद रफी साहब साथ में लता मंगेशकर जी की खूबसूरत सी आवाज में ये गाना सुनते हैं। उसकी बात करेंगे आपसे भी बातचीत, नेक्स्ट कॉलर आप भी हमारे शो के हो सकते हैं, तो जल्दी से कॉल कीजिएगा।

0: तो दोस्तों अभी आपने सुना ये प्यारा सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी सुहाग जो 1979 में आई थी लता मंगेशकर जी साथ में मोहम्मद रफी साहब जी की बड़ी प्यारी सी आवाज। और अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, हाय दी।
0: हेलो, गुड इवनिंग, कैसी हैं आप?
1: गुड इवनिंग दी, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताओ आप कैसी हो?
0: आई एम गुड, आई एम हैप्पी, आप बताइएगा।
1: मैं भी बहुत अच्छी हूँ दी, बस बैठे थे आपका शो सुन रहे थे। और अभी अभी मेरी दोस्त को सुना तो बहुत अच्छा लगा उनको सुन के।
0: अच्छा, क्या नाम है आपकी दोस्त का, जरा बताइए हमें।
1: मेरी दोस्त का नाम है दी, वो है नाइस फातिमा।
0: अच्छा, नाम तो जुबान में किसी और का आ रहा था।
1: दी रेडियो पे ना दरक्षा फातिमा का नाम लेते लेते ना वही मतलब ज्यादा क्लोज हो गई है ना, अब ये मतलब लेते हैं। हाँ। पर आदत उनकी है ना लेने की,
0: वही
1: है, पर दोस्ती वही पक्की है हमारी।
0: हाँ जी, हाँ जी। बताइएगा आप आज क्या सुनेंगी?
1: दी आज मैं उसी के लिए एक सॉन्ग सुनना चाहती हूँ।
0: बताइए।
1: क्योंकि काफी दिनों के बाद मेरे कहने में मेरी दोस्त ने कॉल लगाई थी आज रेडियो पे।
0: तो कैसा लगा आपको सुनकर उनकी आवाज?
1: इतना अच्छा लगा ना दी, पुराने दिनों की याद आ गई कि हाँ हम साथ में कितनी कॉल लगाते थे।
0: ओके, कॉल आप नहीं लगाती हैं, आपकी सिस्टर आपको लगा कर देती है। मोहतरमा, आप तो बात ही करती हैं हमसे।
1: मैं ही तो बोलती हूँ ना उनको, पर हाँ जब उनसे लगानी आती है तो वो लगा देती है मेरे को।
0: देखो कितनी सारी हेल्प करती है वो आपको, है ना?
1: बहुत बड़ी सिस्टर है ना दी।
0: हाँ, और आप छोटी सिस्टर होने का पूरा फायदा उठाती हो।
1: उठाना भी चाहिए दी।
0: बिल्कुल, मौका ना मतलब बार बार नहीं मिलता है।
1: हाँ, बार बार नहीं मिलता है दी।
0: इसीलिए बताइएगा ये प्यारा से गाना आप किन के साथ सुनना चाहती है और कौन कौन सी फ्रेंड है आपकी?
1: दी ये सॉन्ग मैं अपनी दोस्तों को ही डेडिकेट करना चाहूंगी।
0: बताइएगा।
1: जैसे कि है मेरी दोस्त दक्षा फातिमा और नाइस फातिमा है, और मेरी अप्पी है अफरोज अप्पी, आसी अप्पी और नजमा अप्पी और लाइबा अप्पी है।
0: ओके,
1: और मेरी बेस्टी दक्षा फातिमा।
0: ठीक है, सुनवाते हैं प्यारा सा ट्रैक आपकी दोस्तों के साथ। कॉल करने के लिए शुक्रिया आपका।
1: थैंक यू दी, बाय।
0: मोस्ट वेलकम, बाय, नाइस टॉकिंग टू यू। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक, ये दोस्ती तेरे दम से है, बहुत ही खूबसूरत सा गाना है।

0: दिल्ली बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
1: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
4: कोई मिल गया, कोई मिल गया।
0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: तो दोस्तों अभी आपने ये सुना फ्रॉम द मूवी वीर ज़ारा का खूबसूरत सा गाना, हम तो भाई जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, अब चाहे कोई खुश हो या हो खफा। एग्जैक्टली दोस्तों, लाइफ बहुत खूबसूरत है, इसको एंजॉय करो अपनों के साथ। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश। हाँ जी सर, नमस्कार, क्या नाम है आपका? जी श्याम नारायण जी, बताइएगा क्या फरमाइश है आपकी।
1: हमारे कोई सावन का महीने में कोई गाना मिल जाता एक है, लेकिन वो सावन का नहीं है, है अलग सावन जैसा माहौल।
0: कौन सा गीत बताइएगा जरा।
1: खो गए हमारो साजेदार।
0: ठीक है सर, सावन का एक प्यारा सा गाना मैं आपको सुनवाती हूँ। की तो चलिए एवरीवन, सावन का सॉन्ग सुनना चाहते हैं सर, तो एक प्यारा सा गाना हमने यहाँ पर डिसाइड किया है और ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना है, आप सभी को सुनवाते हैं। बस आप यूं ही बने रहिए एंड ऐसे ही अपना प्यार एफएम मुरादाबाद 89.6 से बनाए रखिएगा।

0: आपने पुकारा, हम चले आए। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू माय ऑल लवली लिसनर्स, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ। और अभी आपने इतना प्यारा गाना सुना साधना सरगम साथ में कुमार सानू जी की आवाज़ में। सावन आया, बादल छाए और बाहर का मौसम भी बड़ा औसम है। तो बात करते हैं अपने लास्ट कॉलर से, जानते हैं उनकी फरमाइश यहाँ पर। हेलो फरमाइश।
1: हाँ जी, हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, अपना नाम बताइएगा।
1: जिला अमरोहा नेगस्ती कतई खासदर से बहारुल हसन से बोल रहा हूँ मैडम
0: जी। बताइएगा, कैसे हैं आप सब?
1: बस अच्छे हैं मैम।
0: ओके, और मौसम कैसा है आपकी साइड का?
1: फोन लगाना चालू करा था तो फोन भी लग गया तो अच्छा लग गया।
0: जी जी, बताइएगा सर, क्या फरमाइश है आज?
1: तो फिल्म का नाम रहेगा हम है राही प्यार के। और ये बोल उस तरह से हैं जिससे मोहब्बत का इजहार करती काट कोई लड़की मुझे प्यार करती, ये गाने के बोल रहे हैं।
0: ठीक है सर, सुनवाते हैं खूबसूरत सा गीत। शुक्रिया कॉल करने के लिए।
1: तो नाम?
0: हाँ जी हाँ जी, बताइएगा।
1: देखिए, थाना टीम मोहल्ले से टीडब्ल्यू वाले इरफान खान साहब है।
0: ओके, ठीक है सर, आपके दोस्तों के साथ सुनवाते हैं खूबसूरत सा गीत। मोस्ट वेलकम, आपको भी नमस्कार सर। तो चलिए श्रोताओं, सुनते हैं खूबसूरत सा गीत कुमार सानू जी साथ में अलका याग्निक जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज़। और आज बहुत सारे हमने गाने जो सुने हैं वो अलका जी और साथ में कुमार सानू जी की आवाज़ में ज़्यादा सुने हैं ना। तो चलिए दोस्तों, इसी खूबसूरत गाने के साथ मैं लेती हूँ आपसे जाने की अनुमति। मिलूंगी मैं आपको संडे को, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। यूं ही मुस्कुराते रहिए, रेडियो बजाते रहिए, गन गनाते रहिए और गर्मा गर्म चाय का भी आनंद लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।

नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की सीमा संसद के आगामी शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई। लोकसभा ने आज जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने विधेयक पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा शुरू की। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक पेश किया। सदन में बिना किसी चर्चा के हंगामे के बीच ये विधेयक पारित हो गया। महाराष्ट्र के भिवंडी शहर में कल देर रात 4 मंजिला इमारत ढहने से 9 लोगों की मौत हो गई। दमकल विभाग, पुलिस और नगर निगम बचाव और राहत कार्य में लगे हैं।

राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री गिरीश महाजन ने मृतकों के परिजनों के लिए 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना में लोगों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों के लिए 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने दलीलें सुनने के बाद सभी 5 आरोपियों को सजा सुनाई। इसी महीने की 13 तारीख को अदालत ने हुसैन और 4 अन्य को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी पाया था। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके के सैकड़ों विस्थापित लोगों ने पाकिस्तानी सेना द्वारा कब्जे वाले क्षेत्र में किए जा रहे कथित अत्याचारों के खिलाफ आज जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया। ये विरोध प्रदर्शन पीओजेके के विस्थापित परिवारों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन SOS इंटरनेशनल ने आयोजित किया था। प्रदर्शनकारियों पाकिस्तान और उसकी सेना के खिलाफ नारे लगाते हुए पीओजेके को भारत में शामिल करने की मांग कर रहे थे। SOS इंटरनेशनल के अध्यक्ष राजीव चुनी ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान इस क्षेत्र के लोगों का दमन और शोषण कर रहा है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के सोरंग क्षेत्र में एक कोयला खदान में मीथेन गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 34 हो गई। शक्तिशाली विस्फोट के कारण खदान का बड़ा हिस्सा ढह गया और कई मजदूर मलबे के नीचे दब गए। स्थानीय मीडिया ने प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के हवाले से बताया है कि मलबे में फंसे खनिकों को निकालने के लिए बचाव अभियान जारी है। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलन स्पर्धा में पुरुषों के 110 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीतने पर लवलीत सिंह को बधाई दी है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार ने 54 किलोग्राम के फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में प्रीति ने जाम्बिया की कैथरीन मापे को 5-0 से पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
4: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
3: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में,
4: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
3: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
4: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
2: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
2: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए ekcc.nabard.org।
1: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
2: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
1: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
3: मुरादाबाद
1: से संपर्क कीजिए।
2: नियम और शर्तें लागू।

हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग अर्जेरीना के साथ इवनिंग मस्ती शो में। और समय तो समय हो चुका है, यानी कि 5:15 और आप अर्जेरीना के साथ कनेक्टेड। यानी कि आज का डे क्या स्पेशल है और क्या देश दुनिया में चल रहा है उसकी तो हम बात करेंगे करेंगे। साथ ही साथ सावन की शुरुआत भी हो गई है, यानी कि कावड़ यात्रा भी शुरू हो गई है। तो हर टॉपिक पर हर चीज के बारे में बात करने वाले हैं। बस आपसे यही कहना चाहेंगे, अर्जेरीना के साथ कनेक्ट रहिए। और अगर आप ऑफिस से निकल गए हैं तो वेल डन, लेकिन आपने क्या करना है, ट्रैफिक जो नियम है उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आप ये सोचते हैं कि ये जो ट्रैफिक नियम है, रूल है, वो फॉलो सिर्फ सरकार के लिए होता है, नहीं, आप गलत हैं यहाँ पर। यानी कि ये सब हमारी सुरक्षा के लिए होता है। अगर आप फॉलो करते हैं तो आप सेफ रहते हैं, आप बच सकते हैं, आपको चोट नहीं लगेगी। अदरवाइज अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो इसमें कहते हैं ना, मेरा कुछ नहीं जाता तेरा, यानी कि हमारा कुछ नहीं जाता, आपका ही जाएगा जो कुछ जाएगा। इसीलिए ट्रैफिक जो नियम है उसको फॉलो करिए और आर्जेरीना के साथ कनेक्ट रहिए। अगर आप गाड़ी में हैं या फिर घर पर है या आप कहीं पे भी बैठ के सुन रहे हैं, चाहे आप खेत में हैं, तो क्या करना है आपको, वॉल्यूम आपने हाई करना है। क्योंकि जब आर्जेरीना आती है तो देखिए बातों के साथ साथ गाने का भी तड़का लगता है। तो अगर आप चाहते हैं कि भैया गाने का भी मजे ले, तो हम वॉल्यूम तो देखो आपको बढ़ाना पड़ेगा। चलिए जी, फिलहाल गाना सुनते हैं और उसके बाद कनेक्ट होते हैं आप सभी के बीच अरिजीत सिंह की आवाज में। बहुत ही खूबसूरत ये गाना।

कहते हैं शादी करने का कोई सही वक्त नहीं होता, जब कर लो बस तभी से तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो जाता है। अदिति मेरे शेर मेरे चीते, तुझे कुछ साल अकेला क्या छोड़ा, तूने इतना बड़ा झोल कर दिया। बदतमीजी एक बीमारी है, ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे वक्त के साथ बुढ़ापे में बदल जाती है। मैं कहता हूं जब तक बुढ़ापा नहीं आता थोड़ी बदतमीजी ही कर लेते।

0: क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है। बदतमीज दिल, बदतमीज दिल यानी कि माने ना। देखिए, दिल तो बदतमीज होता है और इस दिल को बच्चा बना कर भी रखना पड़ता है। अगर आप सोच रहे कि हम बड़े हो गए हैं, हम सिंसियर हो गए, तो सिंसियर वाला बिहेव करें, तो देखिए आप हो सकते हैं टेंशन में चले जाए, डिप्रेशन में चले जाए। इसलिए अपने दिल को बच्चा बना कर रखना बहुत जरूरी है। दिस साइड आरजेडी ने एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करो इवनिंग मस्ती शो में श्रोताओं, तो समय हो चुका है यानी कि 5:27। और अब हम बात करेंगे कावड़ के ऊपर। देखिए, आपको भी पता है कि सावन का महीना है और सावन का महीना आते ही हर सर जो भक्त है, जो श्रद्धालु है, यानी कि भोले बाबा के ऊपर जल चढ़ाने के लिए, जल अभिषेक करने के लिए, यानी कि कावड़ लेकर निकल चुके हैं। कोई श्रवण कुमार वाला वो कर रहा है कि अपने सास को पालकी में बिठा कर लेकर जा रहे हैं। और इस टाइम देखिए, आप जा रहे हैं तो आई नो कि हर किसी के मन में एक अच्छा भाव होता है कि हम अच्छे भाव के साथ जाए, जो भी हमारी मनोकामना है उसको पूर्ण की जाए। लेकिन साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि हरिद्वार में यानी कि हरि के द्वार, कल बहुत बारिश हुई थी और आज की अगर मैं बात करूं तो वहां पर सड़कों पर भी पानी भरा हुआ है। तो आप कांवड़ लेकर जा रहे हैं और बीच सड़क पर यानी कि कहीं कहीं मौसम, आज का मौसम मतलब आजकल का ऐसा मौसम है, थोड़ी देर में धूप, थोड़ी देर में वेदर खराब हो जाएगा, आंधी तूफान चलने लगा, आपको भी नहीं पता चलेगा। सो इसके लिए आपने क्या करना है, देखिए श्रद्धा भाव अपनी जगह है, लेकिन आपकी हेल्थ भी अपनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी हेल्थ ठीक है तभी आप कांवड़ लेकर जा सकते हैं, अदरवाइज परेशानी हो सकती है। सो अपने साथ यानी कि आपको पता है कि मौसम कभी भी खराब हो सकता है, रेन कोट अपने साथ रखिए, कुछ हल्का फुल्का ऐसा कपड़े अपने साथ रखिए ताकि आप गीले हो रहे हैं तो चेंज कर सके। और साथ ही साथ जिनको भैया लगता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, बार बार सांस फूलने लग जाता है, या फिर भी कांवड़ लेकर जा रहे हैं, तो अपने साथ मेडिसिन जरूर रखें। हालांकि सरकार ने जगह जगह पर यानी कि पुलिस के जो तैनात है, आप सभी के लिए सुविधा के लिए रखी गई है, और कोई भी परेशानी होती है तो आपके मतलब हेल्प करने के लिए पुलिस जो है आपके साथ रहेंगे हर जगह पर। और कोई भी परेशानी होती है तो वो आपकी हेल्प जरूर करते हैं, यानी कि जिस रूट से रूट बनाया गया है उस रूट पर तो ये भी कह दिया गया है कि जो बड़े ट्रैफिक है, जो गाड़ियां हैं वो नहीं आएंगी। और साथ ही साथ हरिद्वार में बच्चों की छुट्टियां भी हो गई है इसी की वजह से, यानी कि 13-14 तक उनकी छुट्टियां रहेंगी, उसके बाद खुल जाएंगी। तो कोई भी परेशानी दिक्कत नहीं हो, आपने नहीं लेनी है। और आपके लिए जगह जगह पर शिविर बनाए गए हैं ताकि आप विश्राम कर सके, भोजन कर सके। तो बस, लेकिन मेडिसिन अपने साथ आपको लगता है कि रहना चाहिए मेरे साथ, तो अपने साथ जरूर रखिए। और यूं ही आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहिए श्रोताओं। और फिलहाल कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम हो गया है, सो पहले हम कमर्शियल एड ब्रेक प्ले करेंगे और उसके बाद आप सभी के लिए एक और फैंटास्टिक वाला गाना और फिर ढेर सारी बातें करेंगे।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद,
4: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक,
3: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में,
4: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई,
3: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी,
4: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
5: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
6: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग है अर्जुरीना के साथ श्रोता। और समय की बात करूँ तो 5:36 हो चुके हैं। आई होप कि बहुतों ने भैया चाय पी लिया होगा। बहुत ऐसे सोच रहे होंगे कि यार चाय मिल जाए। बहुत से ऐसे होते हैं कि भैया अगर उनको चाय ना मिले ना तो हाथ पैर काम करना बंद हो जाता है, क्योंकि उनकी उनको लत हो जाता है कि भाई हमें ना चाय पीना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए हमें तो चाय चाहिए। अगर उनको चाय नहीं चाहिए ना तो मतलब काम करने का भी मन नहीं करता उनको। काम आप बोलोगे ना करने के लिए तो वो काम भी नहीं करेंगे आपको। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप डेली चाय यानी कि 5 से 7 कप पीते हैं तो आपको क्या परेशानी हो सकती है। लेकिन उसके लिए देखिए वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। अब आर्जेरीना के साथ कनेक्ट है तो देखिए इंतजार तो कराना पड़ता है एकदम बता देंगे तो फिर आप सोचेंगे नहीं यार थोड़ा सा क्रेज बनाना चाहिए। तो मैं आपके अंदर क्रेज बना रही हूँ, वेट करिए फिर बताएंगे। अगर आप सुबह से लेकर शाम तक 7-8 कप पी लेते हैं तो क्या आपको परेशानी हो सकती है, क्या दिक्कत हो सकती है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ हम वेदर की बात कर लेते हैं। यानी कि वेदर की बात करूं तो यूपी में ये कहा जा रहा है कि 24 घंटे के बाद यानी कि बहुत तेज बारिश आने की संभावना जताई जा रही है। यानी कि अलग अलग जगहों पर बारिश आ सकती है श्रोताओं। और ये बारिश यानी कि 2 अगस्त तक बताया जा रहा है, रेड अलर्ट यानी कि अलर्ट है। और आंधी तूफान वैसे ही 70-80 की रफ्तार में है। तो खुले एरिया में अगर आप जा रहे हैं तो कोशिश करें कि जब आंधी तूफान आती है तो आप ऐसी जगह जाए जहां पर आप सेफ रहे और खुले एरिया में जाने से बचे। अगर आप खुले एरिया में जाते हैं, आंधी तूफान बहुत तेज आती है तो उड़

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
4: हेलो जी, बिल्कुल आ गए हैं। एक गरम चाय की प्याली हो, उसको पिलाने वाली हो। बताइए आपको गरम चाहिए, ठंडा चाहिए, या बिल्कुल मैसेज करके बता सकते हैं गरम ठंडा क्या होता है। लेकिन वो पूछना है तो आप मैसेज कर सकते हैं, नंबर है 9837896898। आरजे रीना के साथ आप कनेक्ट है श्रोता इवनिंग मस्ती शो में। और समय की बात करूँ तो 5:49 हो चुके हैं, यानी कि 5:49 हो चुके हैं। बहुत से बच्चे मेरे जैसे ही होंगे कि जब मैं छोटी थी ना, जब मेरे को कोई कहता था कि 49 हो चुका है तो मैं समझ नहीं पाती थी। तो 5:49 हो चुके हैं। हमारे जो इंडिया के बहुत आजकल के ऐसे जेंजी है भैया, उनको हिंदी में अगर दो बोलो तो वो भी नहीं पता होता है कि दो किसको बोलते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हर चीज आप हिंदी इंग्लिश दोनों पता होना बहुत जरूरी है आज के टाइम में। सोचिए जिस बच्चे को ये नहीं पता हो कि उस दुकान पर जा रहे और दुकान वाले ने बोल दिया कि 69, मुझे भी नहीं पता 69 को हिंदी में क्या बोलते हैं, सच बताओ, तो उसने हिंदी में बोल दिया कि ये चाहिए, तो वो कन्फ्यूज हो जाते हैं। जैसे मैं कन्फ्यूज हो जाती हूँ, तो और भी बच्चे हैं मेरे जैसे जो कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो हिंदी में पता होना हमें बहुत जरूरी होता है। और जैसा कि मैंने आप सभी से बात करी थी कि अगर आप डेली दिन में अगर चाय 7 से 8 कप अगर पीते हैं तो आपके अंदर क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, यानी कि एक तो आपके अंदर आयरन की कमी हो सकती है, विटामिन डी, जो इंसान के अंदर विटामिन डी होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि विमेन के लिए अगर मैं बात करूँ विटामिन डी, तो उनके अंदर विटामिन डी भरपूर मात्रा में होना चाहिए, क्योंकि जब प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं अगर विटामिन डी की कमी होती है तो बहुत दिक्कत आती है। तो इसीलिए लेडीज़ को खासकर अपने विटामिन डी के चेकअप भी कराते रहना चाहिए और इसका भरपूर ध्यान भी रखना चाहिए। अगर आप सोच रहे कि फैमिली आगे बढ़ाने के लिए अगर आपके अंदर विटामिन डी की कमी है तो आप यहाँ पर आपको डिले हो सकता है, लेट हो सकता है। तो अधिक आपने चाय नहीं पीनी है, चाहे वो बड़े हो, बुजुर्ग हो, खासकर बच्चों को तो आपने चाय बिल्कुल नहीं देनी है। बहुत से घरों में ऐसा होता है कि सुबह सुबह ही बच्चों को कटोरा भर के चाय दे देंगे, ऊपर से ब्रेड दे देंगे, लो बेटा खाओ, आह तुम्हारे ये ब्रेकफास्ट है, बहुत बड़ा लाजवाब वाला है। सो अगर आप बच्चों को ये देते हैं तो जैसे जैसे बड़ा होएगा बच्चा, उसके अंदर से भूख कम हो जाएगी, साथ ही साथ आपके अंदर धीरे धीरे खून की कमियां होने लग जाएगी और जो आपको बार बार भूख लगेगी उस चीज को भी ये कम कर देगा। इसीलिए आपने ज्यादा चाय नहीं पीनी है। सोचिए आयरन की कमी हो जाए तो फिर तो वहां से बीमारियां शुरू हो जाता है। और साथ ही साथ अगर आप ज्यादा चीनी वाला चाय अगर पीते हैं तो उससे तो बॉडी में और भी ज्यादा हार्म होता है। और ये भी कहा जाता है कि सुबह सुबह आपको खाली पेट चाय नहीं पीना चाहिए, यानी कि गैस बहुत ज्यादा बनाता है। अगर जब देखिए सारी बीमारी पेट से होती है, अगर आपका पेट ठीक है तो आप भी ठीक है, अगर आपका पेट ठीक नहीं है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होना क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। आप अपने फेस पर देखेंगे झुर्रियां आने शुरू हो जाएगी, यानी कि आप अभी हैं 24-25 साल के, लेकिन अभी से ही आपके फेस पर ना उसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। इसीलिए मैं तो यही कहती हूँ आप अपनी लाइफ से चाय जितना कम करेंगे उतना बेटर होगा। अगर ज़्यादा आपको चाय की तलब लग रही तो 2 टाइम आप पी सकते हैं, सुबह और शाम के टाइम, लेकिन आपको पूरे दिन चाय नहीं पीना है, ये ज़रूर आपने ध्यान रखिए श्रोताओं। और इसी के साथ म्यूजिकल ब्रेक, अपनी मुलाकात होगी दूसरे घंटे में, यानी कि 6 बजे के बाद, यानी कि न्यूज़ प्ले करने के बाद। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, अगर आप डेली कितने चाय पी लेते हैं, यानी कि कितने कप चाय पी जाते हैं? बहुत से भैया ऑफिस में रहते रहते 7-8 कप पूरे हो जाते हैं, उनको भी नहीं पता चलता है। और फिर अगर देखिए, एक तो अगर ज्यादा चाय की आपको हैबिट हो जाती है तो नींद कहते हैं ना भाई आजकल बच्चे नींद नहीं आ रही है, पता नहीं क्या हो गया, बड़े भी कहते हैं नींद नहीं आ रही है, एक तो दूसरा बात टेंशन इतनी लेते हैं कि नींद कहाँ से आएगी, और सेकंड यानी कि चाय, हम चाय इतने पीते सोते जा सो अगर सोने भी जा रहे ना तो किसी को उसको बहुत तलब होती है कि सोने से पहले एक कप चाय तो मिल ही जाए, तो इस चीज़ को अपना कम करिए और आगे बढ़ते रहिए अपनी लाइफ में। सेहत ठीक है तब आप ठीक है, अदरवाइज आप भी ठीक नहीं है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना के लिए 5 वर्ष की अवधि में कुल 3,15,000 करोड़ रुपए का वित्तीय आवंटन स्वीकृत किया गया है।
1: डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बैंक अकाउंट में जाता है। प्रधानमंत्री जी के एक बटन दबाते ही देश के करोड़ों किसानों के पास ये बेनिफिट जाता है। पिछले 5 वर्षों में क्यूमुलेटिव डिस्बर्समेंट अभी करीब करीब 3,10,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट किसानों के पास जा चुका है। 85% ऑफ दी फार्मर्स हैव रिड्यूस्ड देयर बोरोइंग बिकॉज ऑफ दिस प्रोग्राम। हाई कॉस्ट इनफॉर्मल क्रेडिट पे जो डिपेंडेंस होती थी वो डिपेंडेंस कम हुई है। जो लोकल लोन लेने पर जो डिपेंडेंस थी फार्मर्स की वो बहुत सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुई है।
0: मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को भी मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसके लिए वित्त वर्ष 2030-31 तक 84,084 करोड़ रुपए का स्वीकृत परिव्यय निर्धारित किया गया है। मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों सहित 3,300 फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को भी मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में भी वृद्धि की है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना का नोटिस दाखिल किया है। ये नोटिस पेपर लीक रोकथाम विधेयक पर संसद में हुई बहस के दौरान श्री गांधी की टिप्पणियों के संबंध में है। भारत ने आज कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा निर्दोष नागरिकों के खिलाफ लगातार दमनकारी कार्रवाई की जा रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि

0: 40 से अधिक लोगों की मौत और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। प्रवक्ता ने कहा कि नागरिकों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से इन गैर कानूनी हत्याओं की स्वतंत्र जांच का अनुरोध किया है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान की कार्रवाई की गहन जांच करने और उसके अत्याचारों के लिए जवाबदेह ठहराने का आग्रह किया। प्रवक्ता ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा है। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने आज नई दिल्ली में स्वदेश में विकसित एक्सट्रीम वेदर ग्रेड डीजल का शुभारंभ किया। भारतीय सेना और तेल विपणन कंपनियों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित ये विशेष ईंधन भीषण जलवायु परिस्थितियों में लड़ाकू और रसद वाहनों की आवाजाही, सुरक्षा और परिचालन क्षमता को बढ़ाएगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि अधिक ऊंचाई और भीषण ठंड वाले क्षेत्रों में इस तकनीक का व्यापक नागरिक उपयोग किया जा सकता है। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने दलीलें सुनने के बाद सभी पांचों आरोपियों को सजा सुनाई। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार और अंकुश पंघाल ने फाइनल में जगह बना ली। प्रीति ने महिलाओं के 54 किलोग्राम सेमीफाइनल मैच में जाम्बिया की कैथरीन मुआपे को हराया। भारत 3 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में 10वें स्थान पर है। उधर देविका सिहाग और उन्नति हुड्डा ने ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad, 89.6 FM.
2: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
3: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
4: तुम तकिन दिख

क्या बात है श्रोताओं, बहुत ही शानदार गाना एंजॉय किया आपने। जय जय शिव शंकर, हाय हाय। यानी कि देखिए, विशाल ददलानी की आवाज में ये अपने खूबसूरत गाना एंजॉय किया है। सावन का महीना हो और गलियों में शोर शराबा ना हो तो भैया मजा नहीं आता है। और वो भी मतलब सावन आती अंदर से एक अलग ही सुकून वाला फीलिंग आता है कि हाय कितना मजा आ रहा है। अब गली किसी किसी भी गली से निकल लीजिए, तभी भी आपके भोले बाबा के गाने आपको सुनते जरूर मिलेगा, बजाते हुए सब मिलेंगे। और साथ ही साथ यानी कि 3 तारीख को है यानी कि सावन का पहला सोमवार, जहां पर सड़कों पर कुछ कुछ जगह पर यानी कि जो ट्रैफिक है वो पूरी तरह बंद कर दी जाएगी, मुरादाबाद में भी कर दी जाएगी जी। और इसके लिए यानी कि जो पुलिस है वो आ चुकी है मुरादाबाद में भैया, फौजी की भी ट्रेन मतलब ड्यूटी लगने वाली है, ताकि किसी प्रकार से अगर कोई दिक्कत होती है तो इसमें वो आगे रहे, आपकी सेवा में आपके साथ रहे। और देखिए, अगर आप चाहते हैं कि भैया पुण्य कमाने के लिए, तो आपने क्या करना है, देखिए कुछ भी नहीं करना है। आप उनको कांवड़िया जो होते हैं उनको आप पानी पिला सकते हैं, शिविर लगा सकते हैं जिस रूट से वो जा रहे हैं वहां पर, पानी के लगा लीजिए, पानी पिलाइए। और कहते हैं प्यासे को पानी पिलाओ, उससे बड़ा पुण्य तो कोई है ही नहीं। फिलहाल दूसरे घंटे की शुरुआत हो गई है आरजे रीना के साथ। अब कनेक्टेड समय की बात करूं तो 6:12 हो चुके हैं श्रोताओं, और इसी के साथ मैं बात करूंगी यानी कि हेल्थ के बारे में। आज के टाइम में ना यानी कि देखिए, कोई भी खाना ऐसा नहीं है जो खाद का ना हो, हर खाने में खाद है। और ऊपर से एनर्जी बहुत कम मिलती है, ऊपर से जो बच्चे हैं वो खाने में भी बहुत नखरे करते हैं, हम हरी सब्जियां नहीं खाएंगे, हम दूध नहीं पियेंगे, हम फल नहीं खाएंगे, बस जंक फूड खाएंगे, जंक फूड के तरफ ज्यादा कनेक्ट हो रहे हैं। और इसी जंक के फूड के ऊपर यानी कि बैन भी लग चुका है, वो बैन कहाँ लगा है वो भी मैं बताऊंगी। फिलहाल यानी कि कहते हैं ना, अच्छी सेहत किसी महंगी दवा से नहीं बल्कि सही खान पान से बनती है। आज बात करते हैं छोटे से मखाने की, जो सेहत का बड़ा खजाना माना जाता है। अगर आप दुबले पतले हैं और शरीर को ताकत देना चाहते हैं तो दूध के साथ मखाना अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम और जरूरी पोषक तत्व होते हैं जो हड्डियों और मांसपेशियों को सहारा देती है। लेकिन याद रखिए, सिर्फ मखाना खाने से रातों रात आप वजन नहीं बढ़ा सकते हैं। सही डाइट, पर्याप्त कैल्शियम, नियमित एक्सरसाइज और अच्छी नींद भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है। आप सिर्फ ये सोचेंगे कि नहीं, हम मैं फ्रूट खा रहा हूँ, दूध पी रहा हूँ, कैल्शियम भरपूर मात्रा में ले रहा हूँ, सो आप एक दिन में ही सोचेंगे कि भैया आज मैं खा रहा हूँ, कल तक मैं मोटा हो जाऊंगा, बहुत ताकत आ जाएगी मेरे अंदर, तो नहीं। ये आपको नियम फॉलो करने पड़ेंगे, अपनी रूटीन में शामिल करना पड़ेगा, अच्छी डाइट आपको लेनी पड़ेगी, साथ ही साथ बाहर का जो खाना है वो स्किप करना पड़ेगा, तभी आप अपनी हेल्थ को बूस्ट कर पाएंगे, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। बाहर की जो भी जंक फूड है उसको अवॉइड करिए। अब मैं मतलब जैसे मैं मार्केट में जाती हूँ ना बाहर, तो मैं देखती हूँ जो जूस वाले भैया होते हैं ना, उनके पास बहुत कम भीड़ होती है, लेकिन बर्गर, चाउमीन, समोसे के वहां पर इतनी ज्यादा भीड़ होती है कि चिल्लाना पड़ता है, अरे भैया कब मेरी प्लेट आएगी, अरे बताओ भैया इतना लेट क्यों कर रहे हो, मुझे घर जाना है। लेकिन वही उतने ही रुपए के आप जंक फूड खा रहे हैं, अगर उसमें और 10 रुपए लगा के अगर आप अच्छी चीजें खाए तो आपकी बॉडी के लिए भी सही रहेगी और वेट भी आपका कंट्रोल रहेगा और आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, है ना। तो इस चीज का आपने जरूर ध्यान देना है श्रोताओं, और बने रहिए आरजे रीना के साथ। आरजे रीना आप सभी के साथ है और आप सभी को हर हर महादेव। चलिए, फिलहाल कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम हो गया है और मेरे पास मैसेज भी आ गए हैं, तो वो भी शामिल कर ही लेते हैं साथ ही साथ। हर हर महादेव। रीना जी, मैं आपका प्रोग्राम सभी परिवार के साथ सुन रहे हैं और गाने बहुत अच्छे प्ले कर रही हो आप। और इनका कहना है कि आपका शो हम बहुत दिल से सुनते हैं, थैंक यू सो मच जी। और ये सावन के महीने का गाना सुनना चाहते हैं, बिल्कुल

0: अगले मैसेज की बात करूं श्रोताओं, तो बबली अनजान, गीता कश्यप, लक्ष्मी कश्यप, संतोष कश्यप कनेक्ट हो गई हैं और इनका कहना है कि हमारी तरफ से गज वाली इवनिंग है जी, आपके प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं हम, थैंक यू जी। और ये हमारे पास यूपी से रणवीर सिंह जेठालाल जी कनेक्ट होते हैं, खुश रहने का सही तरीका यही है, कम शिकायतें करो, ज्यादा धन्यवाद दो, कम उम्मीद रखो, ज्यादा प्रेम बांटो, जिंदगी लंबी नहीं अच्छी होनी चाहिए। ये लाइन बिल्कुल परफेक्ट है, जिंदगी लंबी नहीं अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल जी, और परफेक्ट अच्छा भी रहता है, आप इसमें टेंशन नहीं लेते हो। जितनी लंबी मतलब जिंदगी लंबी का क्या करना है, बस खूबसूरत रहे, अच्छा रहे, सुकून मिलता रहे, यही बहुत अच्छी बात है। फिलहाल कुछ कमर्शियल एड ब्रेक, उसके बाद कनेक्ट होते हैं।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM।
2: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे ITM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद,
3: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक,
2: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में,
3: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई,
2: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी,
3: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
4: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।

क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने हरियाणवी गाना एंजॉय किया है श्रोताओं। और समय की बात करूँ तो 6 बजकर यानी कि 22 मिनट हो चुके हैं इवनिंग मस्ती शो में श्रोताओं। और देखिए, कहते हैं ना कि आप कोई भी खाना बना रहे हो उसके लिए तेल बहुत इम्पोर्टेंट होता है, यानी कि सब्जी के लिए सबसे पहला यानी कि ऑयल। और ऑयली शुद्ध ना हो तो क्या करें, यानी कि आप कोई भी चीज़ पैकेट वाला ले रहे हैं, बंद सील वाला ले रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, तो एक बार उसकी जांच पड़ताल ज़रूर कर लीजिए। क्या पता उसमें मिलावट हो जो कि पूरी फैमिली को नुकसान पहुंचा सकती है। और ये ऐसा ही हुआ है एक परिवार में, यानी कि 6 मेंबर, और छः मेंबर थे या छः नहीं रहे हैं। और ये हुई कि जो सरसों का तेल लेकर आए थे बाहर से, यानी कि उसमें कुछ मिलावटें थी और उससे खाना बनाया जाता था, धीरे धीरे बीमार रहने लगे और ऐसा सिचुएशन आया। इसीलिए हम मैं आपसे बार बार भी कहती हूँ कि कोई भी आप पैकेट का सामान लेते हैं, एक बार उसको

से देखिए कि वो सही है या नहीं है। इनफैक्ट बच्चों के लिए यानी कि कचड़ी लेने जाते हैं बाहर, वो रंग रंग बिरंगी होती है, ग्रीन पिंक कलर का होता है, वो भी अच्छा नहीं होता, वो हार्म होता है बॉडी के लिए। इससे बेटर ये है कि अगर देखिए आप सरसों का तेल यूज़ करते हैं तो आप सीधा सरसों खरीदिए और सरसों को फिर उसका तेल निकलवाइए, ताकि वो शुद्ध तेल है और आपके घर का तेल है, और बालों में अगर लगाएंगे तो वो भी बहुत अच्छा होता है और खाने के लिए तो हेल्दी है ही। इसीलिए बाहर से अगर आप वही तेल ले रहे हैं, 2 पैसे ज़्यादा लगाकर सरसों खरीद लीजिए, उसका घर पे तेल निकलवा लीजिए, ताकि वो शुद्ध रहेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाहर की जो भी आप चीज़ें खा रहे हैं उसको सोच समझ कर खाइए, अदरवाइज कुछ भी स्टेप उठ सकता है। और भी बातें करेंगे, फिलहाल सावन का महीना हो और ये गाना ना हो भैया, हो ही नहीं सकता है। चलिए फिलहाल ये गाना

माफ नहीं करेंगे जी राणा जी। हरजी रीना के साथ आप कनेक्टेड श्रोता हो FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी, यानी कि 90s के गाना और अब 2026 का ये गाना न्यू ट्रेंडिंग, राणा जी मुझको माफ करना। यानी कि ये गाना मतलब पुराने जो गाने होते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड कहते हैं ना, उन गानों का क्रेज ही अलग होता है गाइस, उनको सुनकर भी वाइब लगता है। यानी कि जो किरदार निभाते हैं यानी कि उनकी अलग ही बात होती है, लेकिन उसी गाने को नए वर्जन में बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है और फिर वो वाली वाइब नहीं आती, क्योंकि एक गाने की, एक एक्टर की वो छवि बन जाती है ना, तो हर इंसान के दिल में भी वही छवि रहती कि नहीं यार ये गाना तो वही पुराना वाला ही देखना बहुत अच्छा लगता है। फिलहाल आपने बताना जी मैसेज करके जो राणा 2 वाला जो गाना आया है वो आपको कैसा लगा है, ये आपको अच्छा लगता है या फिर पुराने वाला गाना अच्छा लगता है। फिलहाल अब हम बात करेंगे रामायण मूवी जो कि दिवाली के मौके पर रिलीज होने वाली है और कल यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में इसका ट्रेलर है वो रिलीज कर दिया गया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसका ट्रेलर रिलीज हो गया है और ट्रेलर देख के लग रहा है कि भैया भौकाल मचने वाला है थिएटर में। और इसी के ऊपर यानी कि कहते हैं ना, एक ऐसी कहानी जिसे हर पीढ़ी अपने अपने अंदाज में जीती है और सब पर यानी कि इन्हीं सब पर नितेश तिवारी के फिल्म रामायण का ट्रेलर सामने आया है जो हर तरफ तहलका मचा हुआ है और हर कोई बस यही सोच रहा है कि भैया जब ये मूवी रिलीज होगी तो इसको देखना जरूरी है। और कि औरों का तो बहुतों का ये कहना है कि भैया जो हमने फर्स्ट ट्रेलर देखा है तो फर्स्ट शो भी देखना हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा, यानी कि जब हमने ट्रेलर फर्स्ट देखी है तो हम शो भी इसका फर्स्ट देखने वाले हैं। और इसी के ऊपर रणवीर कपूर को एक संदेश दिया गया है यानी कि नीतीश भारद्वाज ने दी है जो कि महाभारत में कृष्ण बने हैं और उनकी छवि लोगों के दिलों में आज भी कृष्ण वाली छवि है, जब भी उनको देखते हैं तो लोग अलग से ही उनको नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो कृष्ण वाली छवि दिखाई देती है और उनको सब मानते भी है कि ये तो आप ही कृष्ण हैं। और बल्कि उन्होंने तो एक किरदार निभाया है और किरदार इस तरीके से निभाया है कि हर बच्चे बच्चे के दिल में उन्हीं की छवि बनी हुई कि ये तो कृष्ण जी है, यही असली वाले कृष्ण जी। तो नीतीश भारद्वाज ने यानी कि रणवीर कपूर से ये कहा है कि रामायण में भगवान राम की भूमिका निभाने के बाद यानी कि अपनी अगले फिल्म का चयन यानी कि सोच समझ कर करना। नीतीश भारद्वाज ने कहा कि जब कोई अभिनेता भगवान राम जैसे आदर्श चरित्र को निभाता है तो दर्शक उसे केवल एक कलाकार नहीं बल्कि उसे उस छवि से भी जोड़कर देखने लगते हैं। ऐसे में आगे की फिल्म एक अन्य बहुत सी सोच समझकर आप करना और इसका जो सार्वजनिक यानी कि पॉजिटिव छवि आती है लोगों के ऊपर। और सेकंड ये भी कहते हैं कि रामायण जैसे फिल्म के बाद रणवीर कपूर को कि एनिमल्स जैसे फिल्म यानी कि अत्यधिक अहिंसक या विवादिक छवि वाले फिल्मों से दूर आपको रहना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि आपने रामायण की भी शूटिंग करी है, रामायण का किरदार निभाया है और पता चले कि अगली बार आप एनिमल्स जैसे मूवी कर रहे हैं तो वो नेगेटिव छवि जाती है लोगों की तरफ से। तो इस चीज का खासकर आप ध्यान रखिए और अगर आप इसका ध्यान रखते हैं तो एक सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव वाइब आती है और उसी छवि को उसी छवि की तरह फिर आपको लोग देखते भी हैं। और तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। भारतीय सिनेमा की सबसे चरित्र फिल्मों में से एक फिल्म यानी कि रणबीर कपूर जो है कि भगवान राम की भूमिका निभा रहे हैं और साथ ही साथ इसमें साई पल्लवी यानी कि माता सीता का किरदार निभा रही है और बड़े पर्दे पर यानी कि बहुत धमाकेदार धमाल मचाने वाली ये फिल्म। तो बस नीतीश भारद्वाज का रणवीर कपूर के लिए यही एक संदेश है कि आगे अब कोई भी फिल्म बना रहे हैं तो उसको सोच समझकर फिल्म बनाइएगा, क्योंकि एक छवि जब लोगों के अंदर बस जाती है तो उसी छवि को देखते हैं, अगर आप उस छवि से नेगेटिव अपोजिट जाते हैं तो नेगेटिव
जो प्रभाव है वो पड़ता है लोगों का, बिल्कुल, क्योंकि भगवान राम का किरदार निभाना मतलब टफ, क्या डिफिकल्ट कह सकते हैं, और एक अच्छे कर्म कह सकते हैं कि भगवान का किरदार निभाने को, निभाने का मौका मिल रहा है, तो इसको अच्छे से निभाना चाहिए। और अगली जो फिल्म हो, जो भी फिल्म आएगी, उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, ताकि लोग भाई

0: प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
2: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
1: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में।
2: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
1: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
2: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
0: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
3: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

आता जी, बहुत ही गाना, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया श्रोताओं। इसी बीच मैं लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए बहुत ही शानदार और बहुत ही आसान कड़क सवाल, यानी कि आज का कड़क सवाल बहुत ही आसान होने वाला है, जिसके लिए मम्मी भी डांट लगाती है, जो कोई देखे वही डांट लगाता है भैया। तो आज का कड़क सवाल ये है कि ऊपर ऊपर भी जाती है ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना सूखा वो उतना ही गीला होता जाता है, उतना ही गीला होता जाता है, और घर पर हर कोई डांट लगाता है कि इसको हमेशा सुखाओ सुखाओ, गीला ऐसे नहीं छोड़ना है, वो क्या है जी? सोचिए और मैसेज करिए। फिलहाल कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम हो गया है श्रोता, उसके बाद मिलते हैं। बस आपने ये याद रखना है, आज का कड़क सवाल ये है कि जिसको आप जितना सूखा वो उतना ही ज्यादा

0: गीला हो जाता है और उसके बिना किसी का काम नहीं चलता है।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM।
2: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।
3: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा।
0: तो आज का कड़क सवाल बहुत ही आसान है श्रोताओं। जब भी आप नहाने जाते हैं तो अगर उसके बिना बाथरूम में चले गए तो मम्मी को आवाज लगाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आपको मिल गया है, यानी कि आज का कड़क सवाल यही है, वह चीज जिसे जितना सोखता है वो उतना ही गीला होता जाता है। मैसेज करना है आपने 9837896896, व्हाट्सएप नंबर है। और वंस अगेन एक बार और रिपीट करती हूँ, जो जितना सोखता है उतना ही गीला होता जाता है, जो जितना सुखाता है वो इतना ही डबल गीला हो जाता है। क्या है वो, सोचिए। फिलहाल के लिए एक और गाना आप सभी के बीच।

आप अतिथि जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया श्रोताओं, और वंस अगेन एक बार और रिपीट करती हूँ, फिर अगली बार सिर्फ और सिर्फ आपकी मैसेज की।

यानी कि आज का कड़क सवाल ये है कि जो जितना सूखता है वो उतना ही गीला हो जाता है, जो जितना सूखता है वो इतना गीला हो जाता है, सोचिए। और अगली बारिश सिर्फ और सिर्फ आपकी मैसेज की है फिलहाल दिलजीत सिंह की आवाज में।

0: क्या बात है श्रोताओ, बहुत ही बहुत ही बहुत ही शानदार आपने भजन एंजॉय किया है। महाकाल यानी कि बी परा की आवाज में ये जो खूबसूरत भजन है ना, मतलब मुझे सच में बहुत बहुत पसंद है। आई होप कि आपने भी एंजॉय किया होगा। गाड़ी में वॉल्यूम बढ़ाकर जब आप सुनते तो और भी मजा आ जाता है, फिंटास्टिक वाला। और आरजेडीना के साथ कनेक्टेड श्रोताओ, समय की बात करूं तो 6:56 हो चुके हैं। इवनिंग मस्ती शो में कनेक्ट हैं
1: पीले अमृत
0: और मैंने आप सभी से आज का कड़क सवाल यही पूछा है कि जो जितना सूखता है वो उतना ही गीला हो जाता है।
1: किसे
0: जब भी बाथरूम में जाते हैं उसके बिना अगर आप बाथरूम में चले गए, अगर आपने बोला मम्मी दे दीजिए तो मम्मी चार बातें सुनाती है, वो अलग। अगर आपने वो गीला बेड पर छोड़ दिया तो उसके लिए और भी 10 कड़क बातें सुनने को मिल जाती है। तो वही है यानी कि जो जितना सूखता है वो उतना गीला हो जाता है, इंसान को सुखा देता है। लेकिन चलिए देखते हैं कि इनका क्या आंसर आता है।
1: मिल जाएगा, पता नहीं
0: नहीं किस
1: किस रूप
0: में
1: में
0: आकर।
1: आकर नारायण मिल जाए।
0: मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी कनेक्ट होते हैं। सैयद शारिक अली जी कनेक्ट हो गए। भैया गुड वाली इवनिंग पहुंचाते हैं, वेरी गुड इवनिंग सर। इनका कहना है कि आपका शो इवनिंग मस्ती सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और गाने भी बहुत अच्छे प्ले कर रही हो। थैंक यू। अगले मैसेज की बात करूं,
1: वेद नहीं करती जो लेती है वो।
0: बबली अनजान जी, गीता कश्यप जी, लक्ष्मी कश्यप जी, संतोष कश्यप जी, और इनका कहना है कि रीना मैडम जी आज आपने कोई कड़क सवाल नहीं पूछा है। अरे दीदी जी, हमने पूछा है, आपने सुना नहीं है। तो मैंने आज का कड़क सवाल ये पूछा है। अभी अभी आपके पास वक्त है, जितने और मैं मैसेज पढ़ रही हूँ उसका आप राइट आंसर पहुंचा दीजिए। यानी कि जो जितना सूखता है वो उतना ही गीला हो जाता है, सोच लीजिए अब आप। आई नो कि आज मैंने लेट पूछा है, मतलब मैं शो में इतनी मगन हो रही थी कड़क अपडेट के चक्कर में कि मेरे को ध्यान ही नहीं रहा आज का कड़क सवाल पूछना है। बाद में मेरे को ध्यान है यार, कुछ तो छूट रहा है इसलिए लेट पूछा है मैंने, अभी सोच लीजिए। अगले मैसेज की बात करूं तो हर हर महादेव। रीना जी, बबलू सैनी जी कनेक्ट होते हैं मुंबई महाराष्ट्र से, और इनका कहना है कि कड़क सवाल का आंसर होता है तौलिया। ओके।

0: कावल, और क्या बात है जी, पवन जी कनेक्ट हो गए हैं। पवन पवन चले, ठंडी हवाएं सनन सनन।
1: मत्ता काम करता
0: हाय हाय,
1: काल उसका क्या बिगाड़े,
0: जो काल महाकाल का
1: काल, मृत्यु मत्ता काम करता जो चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े।
0: दीपक जी का मैसेज आता है और इनका कहने की मैडम कावल है, जिसके लिए मैं डेली अपनी मम्मी से डांट सुनता हूँ।
1: काल उसका क्या बिगाड़े, भक्त जो महाकाल का।
0: पलवली जी कनेक्ट हो गई है मुरादाबाद से और इनका कहना है कि ये है मैडम, यानी कि जो किचन में जो कपड़ा होता है, जो डस्ट डस्टिंग करते हैं, वो बता रही है। ओके जी,
1: लेकिन आप पे चलती है दुनिया पार,
0: लेकिन आप मुद्दे से भटक गई हैं।
1: भोले के नाम के दीवाने हुए हम, फिर भूल गए।
0: शालिनी जी कनेक्ट होती है और इनका कहने की टावल है, जिसको मैं बार बार सुखाती रहती हूँ। क्या बात है जी, और वो मुझको सुखाता रहता है, बिल्कुल सही काम है।

0: बम भोले। अंजी अगले मैसेज की बात करूं तो ये मैसेज आते हैं हमारे पास, ऋतिक जी कनेक्ट हो गए मुरादाबाद से, और इनके कहने की मैडम जी हर हर महादेव। और गाना बहुत अच्छा प्ले किया आपने, थैंक यू सो मच। और मैं गाना सुन रहा हूँ, बिल्कुल ये अच्छी बातें सुनिए, कावड़ियों की हेल्प करिए, क्योंकि 3 तारीख को है पहला सावन का व्रत, और इस टाइम अपने सड़कों पर बहुत सी सड़कें जो सील यानी कि बंद कर दी जाएगी, जहां पर सिर्फ कावड़िया ही यात्रा करवाएंगे।
1: भोलेनाथ का सर पे मेरे हाथ, भोले तेरे आशीर्वाद का, शिव शंभू
0: शंकर
1: तेरा नशा है चढ़ा।
0: अब मैं यहां से लेती हूं भैया जाने की इजाजत। भोले का नशा हर किसी को चढ़ा हुआ होता है सावन के महीने में, सावन के महीने में के हर यानी कि ऑल टाइम हर हर महादेव बोलिए। जो भक्त महाकाल का है उसका कोई काल नहीं बिगाड़ सकता। चलिए जी, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, कल मिलेंगे। सेम टाइम सेम जगह तो नहीं मिल सकते जी आपको, हम मिलेंगे मॉर्निंग में सलाह शो में, धमाल मचाएंगे जी। बाय बाय, टेक केयर। फिलहाल ये गाना तो सुनाऊंगी बाद में, न्यूज का टाइम हो गया, मुझे ये गाना सुन के जाना है, सच में बहुत अच्छा लग रहा है और समय हो चुका है, इसीलिए मेरे को यहाँ से जाना पड़ेगा रे बाबा। अगर जाएंगे तभी तो कल आएंगे ना। फिलहाल कुछ न्यूज है उसको सुनिएगा, ठीक है जी। चलिए,
2: फ्लोरेशन और प्रोडक्शन का प्रोग्राम है, 84,000 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम है। इसके दो कंपोनेंट है बड़े, तो पहला कंपोनेंट है ऑफशोर सीज़मिक डेटा एक्विजिशन, 28,000 करोड़ रुपीस का ये प्रोग्राम है। दूसरा कंपोनेंट है एक्सेलरेटेड ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम, ये 43,200 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम।
3: मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने को भी मंजूरी दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना के लिए 5 वर्ष की अवधि में कुल 3,15,000 करोड़ रुपए का वित्तीय आवंटन स्वीकृत किया गया है। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों सहित तैरते सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इस योजना को 5,070 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है। और मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को भी मंजूरी दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित चुनाव पाकिस्तान की नीतियों को सिरे से खारिज किए जाने का प्रमाण है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि पाकिस्तान द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में निर्दोष नागरिकों के खिलाफ लगातार दमनकारी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई में 40 से अधिक लोगों की मौत हुई है और कई गंभीर रूप से घायल हुए हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि नागरिकों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से इन हत्याओं की स्वतंत्र जांच कराने का अनुरोध किया है। श्री जायसवाल ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर, लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा है। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने आज नई दिल्ली में स्वदेश में विकसित एक्सट्रीम वेदर ग्रेड XWG डीजल का शुभारंभ किया। भारतीय सेना और तेल विपणन कंपनियों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित ये विशेष ईंधन चरम जलवायु परिस्थितियों में लड़ाकू और रसद वाहनों की आवाजाही, सुरक्षा और परिचालन क्षमता को बढ़ाएगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि अधिक ऊंचाई और भीषण ठंड वाले

0: क्षेत्रों में इस तकनीक का व्यापक नागरिक उपयोग किया जा सकता है। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने दलीलें सुनने के बाद सभी पांचों आरोपियों को सजा सुनाई। रिजर्व बैंक ने बड़ी जमा राशियों पर ब्याज दरों के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। एक आधिकारिक घोषणा के अनुसार बैंकों को अपनी वेबसाइट पर सभी तरह की जमा राशियों के लिए ब्याज दरें पहले से ही स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होंगी। इनमें बड़ी जमा राशियों के लिए ब्याज दरें भी शामिल हैं। जानकारी के अनुसार नए दिशा निर्देश 1 अक्टूबर से लागू होंगे और निर्धारित की गई दरों के हिसाब से ब्याज देय होगा। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार और अंकुश पंघाल ने फाइनल में जगह बना ली है। प्रीति ने महिलाओं के 54 किलोग्राम सेमीफाइनल मैच में जाम्बिया की कैथरीन मापे को हराया। वहीं अंकुश पंघाल ने पुरुषों के 80 किलोग्राम सेमीफाइनल में कनाडा के जोशुआ ओफोरी को मात दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
2: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
3: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
2: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
3: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
1: कॉल 7500153841।
4: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर, और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी खुशी। आप सुन रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां हम बात करते हैं उस मिट्टी की जो परंपरा में भी आगे है और विकास में भी सबसे आगे है। और मेरे साथ,
1: और आज का हमारा सफर है स्वादों की नगरी, आध्यात्मिक की धरती और संस्कृति की धड़कन काशी की ओर।
0: आज हम जानेंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश सरकार की एक जनपद एक व्यंजन योजना बनारस के पारंपरिक स्वादों को लोकल से ग्लोबल बना रही है।
1: तो तैयार हो जाइए काशी के जाए कहानियों और संस्कृति से भरे इस खास सफर के लिए,
0: क्योंकि यही है विकास का प्रदेश
1: उत्तर प्रदेश।

0: जहां सुबह गंगा के घाटों पर उतरती है और गलियों में कचौड़ियों की खुशबू बहती है, वो शहर है बनारस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी खुशी और हम आपको लेकर चलने वाले हैं उस शहर में जहां स्वाद सिर्फ जुबान पर नहीं दिलों में उतरता है।
1: और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे रीना। अरे भैया, ये वो शहर है जहां सुबह अलार्म से नहीं गर्मा गर्म कचौड़ियों की खुशबू से खुलती है।
0: वाह क्या बात, काशी की गलियों में सुबह सुबह छनछनाती कचौड़ियां, जलेबी की मिठास, पान की गुलियां और ठंडाई की ठाट सब मिलकर ऐसे एहसास देते हैं जैसे पूरा शहर स्वाद की कविता लिख रहा हो।
1: और अब यही है स्वाद लोकल से ग्लोबल बनने जा रहा है। योगी सरकार की एक जनपद एक व्यंजन यानी ODOC योजना के तहत काशी पारंपरिक व्यंजनों को नई पहचान मिल रही है।
0: ये सिर्फ आर्थिक योजना नहीं बल्कि सांस्कृतिक पूर्ण जागरण। सोचिए, बनारस की गलियों से उठती खुशबू अब विदेशों तक पहुंचेगी।
1: और सिर्फ पहुंचेगी नहीं, दिल जीत लेगी।
0: तो चलिए शुरुआत करते हैं उस स्वाद से जिसके बिना बनारस की सुबह अधूरी है, बनारस की कचौड़ी।
1: अरे वाह, नाम सुनते ही भूख लग गई। बनारसी कचौड़ी की खासियत ही अलग है। पूरे देश में कचौड़ी मिल जाएगी लेकिन बनारसी कचौड़ी का जवाब नहीं।
0: देसी घी से सना हुआ कड़ा आटा, अंदर उड़द की दाल, मसाले पिट्ठी और धीमी धीमी आंच पर तली गई कुरकुरी कचौड़ी, फिर उसके साथ आलू टमाटर की सब्जी, कोहरा चना, घुंघरी और मीठी इमली की चटनी। उफ,
1: अरे भैया, साथ में गर्मा गर्म जलेबी हो जाए तो फिर बनारस की सुबह सफल है।
0: सबसे खूबसूरत बात तो ये है कि फास्ट फूड के दौर में भी बनारसी कचौड़ी ने अपना परंपरागत स्वाद बरकरार रखा है। पीढ़ियों से लोग इसी कारोबार से जुड़े हैं।
1: और अब ODCO योजना के तहत इस दुकानदारों को आधुनिक पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग की मदद मिलेगी ताकि बनारसी कचौड़ी का स्वाद दुनिया तक पहुंचे।
2: हमारा नाम है विकास श्रीवास्तव और हम यहाँ के मैनेजर बानी। हम योगी जी के ये पहल से बड़ा खुश बानी और कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी के करतनी जो उनकी पहल एक जनपद एक व्यंजन बहुत ही बढ़िया है। इससे जैसे हमन के व्यापारी गण बाणी तो बहुत हमन के भी फायदा बा और जौन हमारी जनता आवत या वह लोगन के बहुत जौन बा।
0: दोस्तों, योगी सरकार की ODOC पहल सिर्फ बनारस के स्वादों को पहचान दिलाने की योजना नहीं है बल्कि उन हजारों परिवार के सपनों को नई उड़ान देने का अभियान भी है जो पीढ़ियों से इन पारंपरिक व्यंजनों को जीवित रखे हुए हैं।
1: बिल्कुल, सोचिए जो कारीगर, हलवाई, पान व्यवसायी और छोटे उद्यमी वर्षों से अपने हुनर के दम पर बनारस की पहचान बनाए हुए हैं, सरकार की योजनाओं का भी मजबूत सहारा मिल रहा है।
0: ODOC के माध्यम से पारंपरिक व्यंजनों से जुड़े लोगों को परीक्षण, कौशल विकास, आधुनिक तकनीकों की जानकारी और व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा रहा है।
1: इतना ही नहीं, विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से ऋण सुविधाओं, वित्तीय सहायता और स्वरोजगार के अवसर तक उनकी पहुंच को भी मजबूत किया जा रहा है ताकि छोटे कारोबार बड़े उद्यमों में बदल सके।
0: सरकार की सोच साफ है, स्थानीय स्वाद को व्यावसायिक बाजार तक पहुंचाना और स्थानीय लोगों की आय को बढ़ावा देना।
1: यही कारण है कि अब बनारसी कचौड़ी, ठंडाई, तिरंगा बर्फी, लौंग लता, मलियों और बनारसी पान जैसी व्यंजनों आकर्षक पैकेजिंग, आधुनिक ब्रांडिंग और डिजिटल मार्केटिंग से जोड़ा जा रहा है।
0: पर्यटन मेलों, खाद उत्सवों और बड़े आयोजनों में भी इन पारंपरिक व्यंजनों को विशेष स्थान दिया जा रहा है ताकि देश विदेश से आने वाले पर्यटक काशी के स्वाद से रूबरू हो सके।
1: इसका सीधा लाभ स्थानीय दुकानों, मिठाई निर्माताओं, पान व्यवसायियों, उद्योग उत्पादकों, किसानों और छोटे व्यापारियों तक पहुंचेगा।
0: यानी ODOC योजना सिर्फ व्यंजनों का विकास नहीं कर रही बल्कि पूरी संस्थानीय अर्थव्यवस्था को गति दे रही है।
1: और यही तो योगी सरकार की विकास परक सोच की खासियत है। विरासत की सुरक्षा रहे, रोजगार भी बढ़े और काशी के स्वाद की मह तक दुनिया भर में पहुँचे।
0: सचमुच अब वह दिन दूर नहीं जब बनारस की गलियों में जन्मे ये पारंपरिक स्वाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी अपनी अलग पहचान बनाएंगे।
1: अब बात करते हैं बनारस की शान ठंडाई की।
0: अरे बनारस और ठंडाई, जैसे गंगा और घाट, यहाँ साल भर ठंडाई पी जाती है, लेकिन होली पर इसकी बात ही अलग होती है।
1: पक्के महल की गलियों में जब सिल पर काले मिर्च, बादाम, पिस्ता और इलायची पीसी जाती हैं, तो उसकी खुशबू पूरे मोहल्ले को बनारसी बना देती है।
0: ठंडाई बनाने की प्रक्रिया भी कम दिलचस्प नहीं। रात भर भीगी बादाम, पिस्ता, गुलकंद, केसर, गुलाब जल, फिर सबको पीस कर दूध में मिलाना और आखिर में कपड़े से छान कर मलाई के साथ परोसना। आजकल तो मूंगी, चॉकलेट और रोज फ्लेवर तक आ गए हैं, लेकिन असली बनारसी ठंडाई वही है जिसमें मिट्टी, महक और बनारस का दिल हो। दोस्तों अब जिस मिठाई की बात होने जा रही है वो सिर्फ स्वाद नहीं, इतिहास भी है।
1: जी हाँ, तिरंगा बर्फी जिसे स्वतंत्रता आंदोलन में भी अपनी भूमिका निभाई।
0: जब अंग्रेजों ने तिरंगा झंडे पर रोक लगाई थी तब बनारस के हलवाइयों ने तिरंगे जैसी मिठाई बनाकर लोगों में देशभक्ति का जोश जगाया था।
1: सोचिए मिठाई भी आंदोलन का हथियार बन सकती है।
0: हरे रंग के लिए पिस्ता, सफेद के लिए बादाम और केसरिया रंग के लिए केसर। खोई से बनी ये मिठाई सिर्फ स्वादिष्ट नहीं बल्कि देशभक्ति का प्रतीक भी है।
1: और अब इसे GI टैग भी मिल चुका है, यानी इसकी पहचान अब आधारिक रूप से बनारस से जुड़ गई है।
0: राष्ट्रीय पर्वों पर इसकी मांग इतनी बढ़ गई है कि दुकानों पर लंबी कतारें लग जाती हैं।
1: अब बारी उस मिठाई की जिसका नाम भी अनोखा और स्वाद भी लौंगलता।
0: वाह, मैदे की कुरकुरी परत, अंदर खोया और मेवे का भरपूर मिश्रण, ऊपर से लौंग की खूबसूरत सजावट और फिर मीठी चाशनी में डुबोकर तैयार होती है लौंग लता।
1: इसका हर निवाला ऐसा लगता है जैसे मिठास का कोई त्योहार मनाया जा रहा हो।
0: पहले इसका आकार बड़ा हुआ करता था, लेकिन समय के साथ इसे छोटा और सुविधाजनक बना दिया गया है ताकि लोग आसानी से खा सकें और साथ ले जा सकें।
1: शाम के समय बनारस की मिठाई की दुकानों में गरम समोसे और लौंग लता की जोड़ी बस दिल खुश कर देती है।
0: अगर बनारस आए और कुल्हड़ वाली लस्सी ना पिए तो समझिए यात्रा अधूरी है।
1: बिल्कुल, ताजे दही को मथनी से खूब फेटा जाता है, फिर उसे हल्की मिठास, बर्फ और ऊपर मलाई की मोटी परत
0: और कुल्हड़ की सौंधी खुशबू, वाह जैसे खुद स्वाद बन गई हो। ये सिर्फ पिए नहीं गर्मी से राहत देने वाला बनारस की पहचान है।
1: अब बात उस चीज की जिसके बिना बनारस की पहचान अधूरी है।
0: जी हाँ, बनारसी पान।
1: और भाई यहाँ पान खाया नहीं जाता, पान जमाया जाता है।
0: ताजे महकते पत्ते, कत्था, चूना, गुलकंद, सौंफ, इलायची, नारियल बारूदा और फिर प्यार से तैयार की गई ग्लोरी।
1: साधारण पान से लेकर शाही पान तक हर स्वाद का अपना फैन क्लब है।
0: हिंदी फिल्मों और गीता में भी बनारसी पान को दुनिया भर में मशहूर कर दिया और इसी सांस्कृतिक पहचान को देखते हुए इसे GI टैग भी मिला है।
1: बनारस में पान सिर्फ स्वाद नहीं, मेहमान नवाजी और अपनापन है।
0: अब हम बात करेंगे उस मिठाई की जो सिर्फ सर्दियों में मिलती है और मुंह में जाते ही गायब हो जाती है।
1: मलाई और काशी की बेहद खास और पारंपरिक मौसमी मिठाई।
0: इसे बनाने की प्रक्रिया किसी कला से कम नहीं। दूध को उबालकर पूरी रात खुले आसमान के नीचे रखा जाता है ताकि ओस की नमी उसमें उतर जाए।
1: सुबह उठते मथकर झाग निकाला जाता है, फिर उसमें केसर, इलायची और पिस्ता बादाम मिलाए जाते हैं।
0: इतनी हल्की कि मुंह में रखते ही घुल जाए, यही वजह है इसे बादलों की मिठास भी कहा जाता है।
1: और खास बात, ये सिर्फ सुबह घंटों तक ही मिलती है, देर हुई तो मलाई खत्म।
0: काशी के इन व्यंजनों में सिर्फ स्वाद नहीं, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पीढ़ियों की मेहनत छिपी है।
1: और अब एक जनपद एक व्यंजन योजना इस स्वादों को वैश्विक मंच देने जा रही है।
0: इसके तहत पारंपरिक व्यंजनों की ब्रांडिंग, आधुनिक टेक्नोलॉजी, आकर्षक पैकेजिंग और प्रभावी मार्केटिंग पर काम किया जा रहा है।
1: सबसे अहम बात गुणवत्ता, स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। सभी उत्पादकों को खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुसार प्रमाणित किया जाएगा।
0: यानी अब बनारस का स्वाद सिर्फ गलियों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि दुनिया के हर कोने तक पहुँचेगा।
1: और इसे स्थायी रोजगार बढ़ेगा, पर्यटक को नया आयाम मिलेगा और बनारसी कारीगरों की मेहनत को वैश्विक पहचान मिलेगी।
0: तो दोस्तों, आज की इस स्वाद भरी यात्रा में हमने जाना कि काशी सिर्फ मंदिरों और घाटों की नगरी नहीं बल्कि भारत की पाक विरासत का धड़कता हुआ दिल है।
1: यहाँ की कचौड़ी में सुबह की रौनक है, ठंडाई में त्योहारों की मस्ती, पान में अपनापन और मलाइयों में मौसम का जादू।
0: जब ये स्वाद दुनिया तक पहुँचेगा तब सिर्फ व्यापार नहीं होगा बल्कि भारत की संस्कृति का वैश्विक उत्सव होगा।
1: तो अगली बार बनारस जाए तो सिर्फ घूमिए मत, बनारस को चखिए भी।
0: नमस्कार, फिर मिलेंगे एक नए सफर, नए स्वाद और नई कहानी के साथ।
3: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारी

0: रवादा।
1: हेलो दोस्तों, आज हमारे बीच में खास मेहमान विदिशा सिंह, जो एक काउंसलर, पीयर सपोर्टर एवं पॉजिटिव साइकोलॉजी कोच हैं, जो बच्चों के साथ उनके माता पिता और महिलाओं के इमोशनल वेलबींग, सेल्फ ग्रोथ और सेल्फ लव के क्षेत्र में निरंतर कार्यरत हैं। दोस्तों, उनका मानना है कि सशक्त मन ही सशक्त जीवन की नींव होता है। माइंडफुलनेस और मोटिवेशन के माध्यम से वह बच्चों को आत्म जागरूकता, भावनात्मक संतुलन और आत्मविश्वास की दिशा में प्रेरित करती हैं। उनका कार्य केवल काउंसलिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह विश्वास, आत्म स्वीकृति और सकारात्मक परिवर्तन की एक सतत यात्रा है। मैं हूं भावना और मेरे साथ है मेरे साथी आशीष। हमारे बीच में स्वागत करते हैं दोनों मिलके विदिशा सिंह जी का। हेलो मैम।
2: हेलो भावना जी।
3: और जैसा हम लोग हमेशा से किसी ना किसी विषय पर चर्चा करते हैं, तो आज आपके साथ विशेष चर्चा हम बच्चों को लेकर करना चाहेंगे कि जब हम बच्चों के एग्जाम्स के रूटीन में जा रहे होते हैं तो बच्चों पर बहुत ज्यादा प्रेशर काम कर रहा होता है, और भले ही पेरेंट्स उनको ये समझाएं कि बेटा तुम बहुत मेहनत से पढ़ो, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन के अंदर बहुत सारे डर घर कर गए होते हैं क्योंकि उनको अच्छे मार्क्स चाहिए। तो ऐसे में आप उन्हें क्या यहाँ से कोच करना चाहेंगी और कैसे उनके अंदर की ये एंग्जाइटी, ये डर हम दूर कर पाएंगे मैम?
2: जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं हम बड़े ही उस डर की शुरुआत करते हैं। आमतौर पर कभी भी आपने देखा होगा, जब बोर्ड एग्जाम्स या नॉर्मल एग्जाम्स की शुरुआत होती है तो हम हमेशा बच्चों को सिर्फ एग्जाम्स आ रहे हैं नहीं बोलते, एक तरह से एक एनवायरमेंट सेटअप कर देते हैं जिसमें कि हम बोलते हैं एग्जाम फीवर, एग्जाम स्ट्रेस,
3: फोबिया।
2: Exactly. तो कहीं ना कहीं हमने ऑलरेडी बच्चों को ये बता दिया कि ये जो एग्जाम है ये आपको स्ट्रेस देगा ही देगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर शुरुआत से हम थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान दें कि एग्जाम्स हैं, साल भर आपने जो पढ़ा है वो बस एक तरह से आपका एक टेस्ट लेने की उसमें कोशिश है कि आपने कितना सीखा, कैसे सीखा और उसको आप कैसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे अपनी लाइफ में।
3: फटाफट उठो, पढ़ाई करो, रात में जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी जाग जाना क्योंकि तुम्हें पढ़ाई करनी है, सुबह का पढ़ा हुआ बच्चों को याद ज्यादा रहता है। तो उसको हम कैसे क्या ऐसा बताएं कि वो उनके लिए स्ट्रेस बस्टर का काम करें और वो अपने उस फ्लो चार्ट पर काम करें, उस पैटर्न पे काम करें जिससे उनके मार्क्स पर उसका असर दिखाई पड़े।
2: एग्जैक्टली। अब मैं आपको आप ही के इस लाइन से एक चीज बताना चाहूंगी कि ऐसा क्यों होता है कि जैसे ही एग्जाम्स के बारे में बात आती है तुरंत उसका जो रिलेशन होता है वो मार्क्स, कितने स्कोर करोगे, कैसा परफॉर्म करोगे, उसके ऊपर हो जाता है।
3: एग्जैक्टली।
2: सबसे पहले मैं हर माता पिता को ये बोलना चाहूंगी कि जब एग्जाम है तो उसको आप एक पर्टिकुलर चीज लेकर के चलिए। आज टाइम है कि बच्चे एग्जाम्स दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम पूरा फोकस दे देते हैं जैसा अभी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करोगे वैसा ही रिजल्ट आएगा।
3: एग्जैक्टली।
2: रिजल्ट एक सेकेंडरी ऑप्शन है जो एग्जाम्स देने के बाद आता है। आई अंडरस्टैंड कि एग्जाम है तो रिजल्ट आएगा ही आएगा, लेकिन अभी जो फोकस है वो सिर्फ इस पे होना चाहिए कि हमारे बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं तो उस वक्त हम क्या ऐसा कुछ करें कि जिससे हमारे बच्चे जो हैं वो थोड़े से शांत मन से रहें, एंग्जाइटी कम रहे उनके अंदर और एक जो डर है वो खत्म हो। और उसके लिए इस वक्त मैं आपको बताऊं कि माता पिता के लिए बहुत ज्यादा जरूरी ये हो जाता है कि आपका बच्चा ऑलरेडी परेशान है, और खास करके ये बात मैं माओं के लिए कहना चाहूंगी कि जितना बच्चा परेशान नहीं होता शायद उससे 50-60% ज्यादा उनकी माताएं परेशान हो जाती हैं। आप एक ऐसा एनवायरमेंट ऑलरेडी अपने घर में सेटअप कर दे रहे हैं, टीवी नहीं चलेगा, खेलने नहीं जाना है, हम बाहर खाना नहीं खाने जा सकते, किसी की वेडिंग अगर, क्योंकि देखिए मार्च ही सीजन होता है, फेब्रुअरी मार्च जिस टाइम पे शादियां भी हो रही होती हैं और इसी टाइम पे एग्जाम्स भी आ रहे होते हैं, ऑल ऑफ अ सडन घर में एक कर्फ्यू जैसा माहौल बन जाता है। ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं इस बात पे भी हमें थोड़ा सा रुककर सोचने की जरूरत है कि अब आपके बच्चे बड़े हो गए हैं और जितना उनको पढ़ना था उन्होंने ऑलरेडी अपनी पढ़ाई अब पूरे साल भर कर ली है।
3: एग्जैक्टली।
2: अब खाली जो उन्होंने पढ़ा हुआ है उस चीज को वो कितना याद कर पा रहे हैं, उस चीज को रिवाइज कितना कर पा रहे हैं, उसके ऊपर पूरा फोकस होना चाहिए।
3: लेकिन नहीं लगता भावना कि एक साइकोलॉजी ऐसी है जो कहीं ना कहीं बच्चों की कंडीशनिंग के साथ में आती है क्योंकि हम जब बच्चा छोटा है, जैसे अभी आपने कहा कि बड़े बच्चे हैं वो अपनी पढ़ाई कर चुके हैं, उनको भी पता है कि उन्हें क्या तैयार करना है, लेकिन कंडीशनिंग वैसी हुई है ना फ्रॉम द रूट्स, तो वो फ्रॉम द रूट वाली कंडीशनिंग का कहीं ना कहीं एक ओवर शेडो बनता बनता उनके हायर क्लासेस में भी दिखाई पड़ता है और वो एक फोबिया उनके चारों तरफ क्रिएट करके हम रख देते हैं। और मुझे लगता है कि अगर वो स्वतंत्र होकर दिमाग से काम करें जैसे आपने कहा।
1: और आशीष एक बात और मैं कहूं कि बड़े बच्चे के साथ साथ अब हम लोग छोटे बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर डालने लगे हैं कि आपका बच्चा नर्सरी या फर्स्ट में ही रहता है फिर भी आप उससे इतनी ज्यादा उम्मीदें करने लगते हैं कि हमारा बच्चा जितने भी क्षेत्र है उसमें बिल्कुल अव्वल ही आए और वो बच्चा पीठ पर बोझ लादे किताबों का, वो कहां से बढ़ता साइकोलॉजिकल चेंजेस कहां से शुरू हो रहे हैं।
2: बहुत समय लगेगा और कहीं ना कहीं मेरा जो काम है मेरी भी कोशिश इसी क्षेत्र में है कि सबसे पहले ये जो कंडीशनिंग हो गई है कि एग्जाम्स चाहे सेकेंड थर्ड फोर्थ क्लास के बच्चे का हो या क्लास टेंथ और ट्वेल्थ के बच्चे का हो, एक कंडीशनिंग के साथ हमने ये मान लिया है कि एग्जाम्स हैं तो हमें वो प्रेशर बनाना ही है, हमें पढ़ाना ही है और बच्चों को अच्छा स्कोर करना ही है। इसमें आपको पता है मैं एक बात बहुत इम्पोर्टेंट ये करना चाहूंगी कि आपको सबसे पहले अपने बच्चे का जो शेड्यूल है ना उसके ऊपर ध्यान देना शुरू करना होगा कि क्या आपका बच्चा जिस चीज को आप पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें इंटरेस्ट ले रहा है
3: जी।
2: क्या वो कभी भी एग्जाम आने से पहले, एक अलग बात हो गई, लेकिन पूरे साल में क्या वो पूरे दिन भर में एक बार भी उन किताबों को, अगर उसको होमवर्क नहीं मिला है उसके अलावा भी क्या वो उन किताबों को खुद कभी उठा करके बैठता है या सिर्फ उन पन्नों को खुद पलट करके ऐसे देखने की कोशिश करता है कि आज मुझे स्कूल में क्या पढ़ाया गया। तो शुरुआत हमें वहां से करनी है
3: जी।
2: ये नहीं कि जब बच्चा क्लास टेंथ में आ गया तो उस चीज को आपने एक फोबिया बना दिया कि अब आपके बोझ आ गए हैं और आपको बिल्कुल करो या मरो की स्थिति को में पहुंच चुके हैं और इसको आपको पूरा करना ही करना है
3: जी।
2: कहीं ना कहीं एक और बात मैं बोलना चाहूंगी दोबारा से कि ये जो मार्क्स है ना ये इतना बच्चों के लिए ट्रॉफी सिंबल नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं माता पिता के लिए एक बहुत बड़ा ट्रॉफी सिंबल है कि मेरे बच्चे ने 99% स्कोर किया, 95% स्कोर किया। आप अपने बच्चों से उम्मीदें रखते हैं, हर माँ बाप रखते हैं और ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस उम्मीद को पूरा करने के लिए कब आपने उसका हाथ पकड़कर साथ उसके बैठ करके ये बताया कि कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा कितने भी नंबर आ जाएं,
1: बिल्कुल
2: तुम लाइफ में कुछ बन पाओ नहीं बन पाओ, आगे बढ़ पाओ नहीं बढ़ पाओ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूं। सिर्फ ये एक लाइन एक बच्चे को जो आत्मविश्वास दे सकती है वो कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं दे सकता, कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं दे सकता, कोई काउंसलर नहीं दे सकता
3: जी।
2: क्योंकि ये एक ऐसा कनेक्शन फॉर्म करता है जहां बच्चे को ये एहसास होता है कि मुझे ये पढ़ाई किसी को दिखाने के लिए नहीं करनी है लेकिन Correct. एक विश्वास जो मेरे माँ बाप का मेरे ऊपर है, जो माता पिता ने मेरे ऊपर विश्वास जताया है उसे मुझे आगे बढ़ाना है,
3: उसे प्रूव करना है कहीं। लेकिन नहीं लगता आपको कि ये एक स्टिग्मा हो चुका है सोसाइटी लेवल पर, या जैसे आपने पेरेंट्स का जिक्र किया तो एक मजबूरी भी है शायद पेरेंट्स की, क्योंकि जब बच्चों का परसेंटाइल देखे जाते हैं, परसेंटेज देखे जाते हैं, पता चला कि साहब किसी का 92% आ रहा है, किसी के 95, अब तो 99% नंबर भी मिलने लगे बच्चों को, हालांकि हमारे टाइम पे ऐसे हम लोगों को तो नहीं मिलते थे, लेकिन जहां 99 के स्कोर तक कुछ बच्चे पहुंच रहे हैं और वहां पर अगर कोई बच्चा 90% भी ला रहा है तो ये माहौल बन जाता है कि अरे इसके तो 90% आए, मतलब इतने कम ये क्या कर पाएगा। ये पेरेंट्स में जो बना हुआ एक डर है, आपको नहीं लगता कि पहले ये निकल जाए?
2: ये जो डर है ना ये कलेक्टिवली नहीं निकल पाएगा क्योंकि जब कलेक्टिवली हम इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं तो आप भी ये मानेंगे कि हर अभिभावक जो होता है ना वो हामी जरूर भरता है कि हाँ आप सही कह रहे हैं, परेशान होने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जैसे ही वो भीड़ से अपने घर के दरवाजे के अंदर पहुंचता है तो उसको अगर आंख बंद करके वो सोचे ना तो वो कह सच में ये बात बोलता होगा अपने आप से, बात तो सही कह रहे हैं लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया।
3: वही चीज।
2: यहाँ मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये जो सोच बदलने की बात हो रही है ये हमें इंडिविजुअल स्तर पे करनी पड़ेगी। हर एक पेरेंट जब इस विश्वास के साथ अपने बच्चे से बात करेगा कि जो कंपटीशन का माहौल हो रहा है, जिस तरह से हमें आगे बढ़ना है, जिस तरह से चीजें चल रही हैं, उसमें एवरेज हो करके भी आप कुछ अलग कर सकते हैं, लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको पता लगाना पड़ेगा। देखिए, बहुत नॉर्मल सी बात है, हर कोई इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन सकता,
3: राइट।
2: आजकल के टाइम में भी जिस तरह से कंपटीशन है, या बहुत पहले से चला आ रहा है, जितनी सीट्स हैं, जिस हिसाब से बच्चे परफॉर्म करते हैं, जो लोग निकलते हैं, लेकिन मेरा आज भी ये मानना है कि अगर आप 99% नहीं स्कोर कर पा रहे, तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि आप कुछ लाइफ में कर नहीं पाएंगे।
3: एग्जैक्टली और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं हमारे आपके बीच में, जहां पर बहुत कम स्कोर करने वाले भी इतिहास रच के चले गए। क्यों भावना?
0: बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी मैम, आपने अभी कहा है कि ना कि 99% के बावजूद भी 90% लाने वाले भी लोग बेस्ट हो सकते हैं, लेकिन ये बात जो है माता पिता के मन में ये कैसे बिठाए जाए, क्योंकि वो इतना प्रेशर कर देते हैं कि बच्चा इंटर किया नहीं। आप आज हर माँ बाप ये चाहता है कि उसका बच्चा सरकारी नौकरी में आए ही आए, क्या इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है? ये माता पिता के दिमाग में कैसे लाई जाए ये बात?
2: भावना जी, ये जो मार्क्स है ना, कब तक? जब तक आप ग्रेजुएशन करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड की पोजीशन कब तक?
0: जी,
2: जब तक आप वहां पर पहुंच रहे हैं, ठीक है, उसके बाद जो चेंजेस आपके अंदर आने वाले हैं, कहीं ना कहीं लाइफ में, आज मैं फिर इस बात को बोलूंगी कि वही इंसान सक्सेसफुल हो पाता है जो उस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा होता है कि कोई बात नहीं, ये नहीं हुआ तो क्या, मैं कुछ और जरूर तलाश लूंगा अपने लिए। फेल हो जाना या नंबर कम लाना, वो आपको एक दूसरी अपॉर्चुनिटी भी उसके साथ साथ देते हैं कि ये एक पर्टिकुलर चीज है जहां मैं अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाया, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि अब समय मेरे लिए रुक गया। इनफैक्ट अब तो जिंदगी की शुरुआत हुई है, असली समय तो अब शुरू हुआ है जब वो आपके घर के उन बाउंड्रीज, उन सेफ स्पेस से आगे निकलेगा।
3: एग्जैक्टली,
0: बहुत अच्छी बात आप बोल रही हैं मैम, और ये बात सिर्फ और सिर्फ माता पिता के लिए ही नहीं है, ये बात उन सारे बच्चों के लिए है कि सिर्फ जिंदगी यहीं खत्म नहीं हो जाती। बहुत ही अच्छी बात आप बोल रही, क्योंकि ये बात सिर्फ माता पिता ही नहीं समझा सकते, ये बात आप जैसे काउंसलर भी समझा सकते हैं।
2: एक माता पिता अपने बच्चे का सबसे बड़ा सपोर्टर होता है।
0: जी,
2: विश्वास मानिए, आज भी हर बच्चा जो मेहनत करता है और जब उसके पिताजी घर में आ रहे होते हैं और एक नजर जब उस बच्चे की अपने पिताजी पे, अपने माता जी पे पड़ती है, तो उसे आज भी ये लगता है मुझे दुनिया को नहीं, मुझे इनको प्रूव करना है।
3: Correct.
2: और सिर्फ उस वक्त अगर आप अपने बच्चे के कंधे पे हाथ रख के ये कह देंगे ना कि बेटा मुझे पता है तुमने मेहनत की है, चाहे जितनी भी की हो, जितना पढ़ लिया है उतना ही परफॉर्म कर लो। यकीन मानिए, अगर बच्चे ने अपना सिर्फ 60% कोर्स भी पूरा करा हुआ है ना, और उस 60% को वो अगर 100% लगन से रिवाइज कर लेगा, जो टाइम पीरियड इस वक्त चल रहा है, बिल्कुल एग्जाम्स 2-3 दिन ही बाद हैं, शुरू होने वाले हैं, उसके परफॉर्मेंस में 70-80% इम्प्रूवमेंट आ जाएगा।
3: करेक्ट, और वैसे भी देखिए, स्काई इज द लिमिट, आपके पास खुला आसमान है, आप अपने आप को जैसा भी मोल्ड करना चाहते हैं ढाल सकते हैं, बशर्ते आपको एक अच्छा गाइडेंस मिले। और शायद रेडियो खीरी 88.4 मेगाहर्ट्ज़ अपने तमाम लिसनर्स को इसी तरीके से गाइडेंस देने की कोशिश कर रहा है। अगर आप पेरेंट्स हैं तो बीइंग अ पेरेंट आप हमारे शो को सुनिए, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो बीइंग अ स्टूडेंट आप हमारे शो को सुनिए, और कुछ ऐसी बातें अपने अंदर बदलने की कोशिश कीजिए जो आपके फ्यूचर को और बेहतर तरीके से डिजाइन कर सकती हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान विदिशा सिंह जी हमारे साथ में हैं, जो काउंसलर हैं और जो आपको ये बता सकती हैं कि एक साइकोलॉजी कौन सी काम कर रही होती है कि बच्चा उस फोबिया को अपने अंदर से निकाल सके। लेकिन विदिशा जी, आपने कामनेस की बात की कि पेरेंट्स जब आए तो एक बच्चों को कंसोल करते हुए कामनेस दें कि बेटा तुम चिंता मत करो। हमें भी ऐसा लगता है कि अगर हम लोग अपने थोड़ा सा जिंदगी में थोड़ा सा पीछे जाकर देखें, तो जब हमारे माता पिता हमारे सामने आते तो हमें डर ये लगता था कि हमसे कोई गलती ना हो जाए, कि डांट पड़ जाए। लेकिन आज बच्चे मुझे लगता है कि उस गलती के बारे में नहीं सोचते कि डांट पड़ेगी अगर कुछ गलत करेंगे, लेकिन हाँ, उनके दिमाग में ये जरूर है स्कोर अच्छा नहीं हुआ तो जरूर हमारी खिंचाई होने वाली है, डांट पड़ने वाली है। साइकोलॉजी जो काम कर रही होती है, क्योंकि मैं आपसे थोड़ा सा टेक्निकली जानना चाहूंगा कि ऐसा क्या होता है कि हम बच्चे

0: है कि ऑलरेडी मैं कुछ ऐसे पेरेंट्स से डील कर रही होती हूँ जिनको मैं समझाने में बहुत असमर्थ रहती हूँ कि इतनी प्रेशर की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद भी बहुत रिलक्टेंट होते हैं, वो मेरी बात को सुनने को नहीं तैयार रहते. लेकिन इन सब में सबसे पहले मैं बोलूंगी कि जो सबसे ज्यादा कम समय हम देते हैं वो शायद हम देते हैं इमोशंस के ऊपर ध्यान नहीं देकर के. बच्चा आया और उसने बोला, मम्मी मुझे डर लग रहा है. तुरंत क्या जवाब आता है? डरने की कोई जरूरत नहीं है.
1: या फिर कंपेयर कर देते हैं हम किसी से, देखो वो तो नहीं डरता.
0: एग्जैक्टली. लेकिन आपको मैं सच बताऊं, इसका शायद सही तरीका ये होता है कि उस वक्त आप बच्चे को बोलिए कि हाँ बेटा, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें डर लग रहा है, घबराहट हो रही है. ऐसे समय में ये होना बहुत आम बात है. जब बच्चा जो फील कर रहा है, जो भी उसके डर, भय या एक तरह से आत्मविश्वास नहीं आ पाना, जो भी उसके इमोशंस हैं, अगर आप उन इमोशंस पे ध्यान दें और उनको एक्सेप्ट करें कि हाँ मेरा बच्चा ऐसा फील कर रहा है. और इनफैक्ट ये बात मैं बच्चों के लिए भी बोलूंगी कि जब आपको ऐसा फील हो कि मुझे घबराहट हो, तो बिल्कुल ही जैसे जिसको हम अपने टर्म्स में एक फेक पॉजिटिविटी भी कहते हैं
1: जी,
0: जिसमें हम कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं मुझे ऐसा नहीं फील हो रहा हूँ. क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब आप कुछ फील कर रहे हैं और आप अगर उसको दबाते जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो इमोशन शूट अप करेगा.
1: एग्जैक्टली.
0: तो जब आपको डर लगे, जब आपको एंग्जाइटी हो, हर बच्चे से भी मैं ये बोलूंगी, उनके माता पिता को भी ये बोलूंगी कि आप एक्सेप्ट करिए कि आपके बच्चे को डर लग रहा है.
1: जी.
0: बहुत नॉर्मल है. एंग्जाइटी हो रही है, हार्ट बीट्स बढ़ रही हैं, घबराहट हो रही है. आप अपने बच्चे को बताइए कि हाँ ये बिल्कुल नॉर्मल है. इसके लिए बच्चों को मैं एक बहुत क्विक टिप देना चाहूंगी.
1: प्लीज.
0: कि सबसे पहले तो जब आप अपने रिविजन के टाइम पे या नॉर्मल भी अगर आप पढ़ाई करने बैठते हैं, तो हमने देखा होगा कि बच्चे अमूमन क्या करते हैं कि वो 1.5 से 2 घंटे का पूरा शेड्यूल बना करके रखते हैं. और अगर 2 घंटे से पहले बच्चा कमरे से बाहर आ गया तो उसको घर के सारे लोग ऐसी निगाहों से देखते हैं जैसे कि उसने कितनी बड़ी कोई गलती कर दी. बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन स्पैन सिर्फ 35 मैक्सिमम 40 मिनट्स का होता है. उसके बाद अगर आपका बच्चा बैठ के पढ़ भी रहा है तो यकीन मानिए वो डिस्ट्रैक्टेड है, जिसमें उसको भी नहीं पता होता कि वो ऑलरेडी डिस्ट्रैक्शन में जा चुका है. बच्चों के लिए क्विक टिप ये है कि हर 30 मिनट पे एक अलार्म क्लॉक रखिए और उसमें अलार्म सेट करिए. जैसे ही 30 मिनट्स का टाइम पीरियड चला जाएगा, आपका अलार्म बजेगा, आप उसको बंद करिए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए और क्विकली आप अपने आप को ये एक ऐसे फेज में ला करके रखिए कि आप यहाँ पे रिवाइज कर पाए, देख पाए कि आप जब आपने अलार्म बंद किया तो आप पढ़ रहे थे या आपका माइंड कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्टेड था. ये एक अवेयरनेस क्रिएट करता है.
1: ठीक है.
0: बच्चा जितनी ज्यादा 35 to 40 मिनट्स के बाद जब एक क्विक राउंड लेके आएगा, घर में एक अच्छा माहौल देखेगा, माता पिता, भाई बहनों या आजू बाजू थोड़ा सा वो बाहर निकल के आएगा, तो वो दोबारा से रेडी होगा अपने कॉन्सेंट्रेशन स्पैन को शुरू करने के लिए.
1: बहुत ज्यादा बच्चों पर लोग बोलते हैं कड़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखिए हमारे जमाने में तो कहा था समझावन लाल होते थे, समझावन लाल छड़ी को बोलते थे हमारे मास्टर्स की, जब तक तुम्हारे ऊपर छड़ी नहीं पड़ेगी तब तक तुमको आएगी नहीं. कहते मुक्का पड़े घमाघम, विद्याए झमाझम, ऐसा बोलते थे. तो अब कहीं ना कहीं वो नैरेटिव्स बदल चुके हैं पढ़ाई के,
0: और मुझे लगता है ये बहुत अच्छा भी है, क्योंकि बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ इसके. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि किसी को आप डरा करके बिठा तो सकते हैं लेकिन पढ़ा नहीं सकते.
1: बहुत बढ़िया. करेक्ट.
0: और जैसे आपने मुझे बोला कि ऐसा क्यों माँ बाप को लगता है कि अगर वो डांटेंगे नहीं, अपनी आवाज को ऊंचा करके नहीं बोलेंगे तो उनकी बात सुनी नहीं जाएगी. हमेशा हमें अपनी बात बोलने के टाइम पे अपने टोन पे ध्यान देना चाहिए.
1: जी.
0: आवाज ऊंची करके, चिल्ला करके, यकीन मानिए आप उस टाइम बच्चे को, जैसे ही आप चिल्लाना शुरू करते हैं बच्चा का दिमाग ऑलरेडी बंद हो जाता है. उसे सुनाई देना, समझना सब कम हो जाता है. उससे ज्यादा बेहतर ये है कि आप अपनी एक फिक्स्ड टोन रखिए. सीरियसली, बेटा मैंने तुम्हें बता दिया है, ये समय पढ़ने का है, जाओ कमरे में बैठो पढ़ो. बात खत्म हो जाती है.
1: ठीक है. मान लिया अगर वो फिर भी नहीं मान रहे, देन
0: ये कंसिस्टेंट प्रैक्टिस के साथ आता
1: है.
0: आप ये एक्सपेक्ट करें कि एग्जाम्स के पहले बिल्कुल आपने अपने बच्चे के ऊपर प्रेशर करना शुरू कर दिया, यही मैं बोलना चाहूंगी कि आपका बच्चा किसी

0: क्लास में हो इस वक्त, ये टाइम है एज अ पेरेंट आपको ऑब्जर्व करने का,
1: ठीक है,
0: कि आपका बच्चा जो है वो बोलने पे भी पढ़ने जा रहा है या नहीं जा रहा, ये आपको रियलाइज कराएगा कि अब समय जो है अभी वाला रुक चुका है, फिर मैं बोलूंगी समय खत्म नहीं हुआ है,
1: एग्जैक्टली
0: ये वाले साल का जो समय था वो पूरा हो चुका है, अगला साल फिर आएगा। शुरुआत से ही आप एक कंसिस्टेंट प्रैक्टिस जो है अपने बच्चे का जो शेड्यूल है उसके ऊपर काम करिए। अमूमन हम लोग क्या करते हैं, हम सबसे बड़ी गलती यहाँ करते हैं कि हम हमेशा बहुत हड़बड़ाहट में रहते हैं। जब समय आ गया तभी करना है,
1: लास्ट आर
2: मतलब जब से सेशन शुरू होता है तब से हम पढ़ाई exactly. बच्चों के लिए आपने अप्रैल मई में सारी चीजें फिर से पढ़ाई एक बार शुरू हो जाती है और जुलाई से तो सभी फिर से कंटिन्यू हो जाते हैं, अब तो जून में ही क्लासेस शुरू होने लगी हैं। तो पेरेंट्स को चाहिए उनका शेड्यूल अभी से बनाना शुरू कर दे, चाहे वो 2 घंटे का हो या 3 घंटे का हो। और कहीं ना कहीं मैम ये भी जरूरी है कि बच्चों के साथ माता पिता को खुद भी बैठ के पढ़ना चाहिए या पढ़ाना चाहिए, क्योंकि मोबाइल का आज जो समय है
1: करेक्ट
2: वो कहीं ना कहीं बच्चों और माता पिता को डिस्ट्रैक्ट कर दे रहा है। आशीष जी आपका क्या कहना है?
3: नहीं, बिल्कुल सही कहा, स्क्रीन टाइमिंग बच्चों की बहुत कोऑर्डिनेटेड होनी चाहिए। मुझे लगता है कि रैंडमली अगर बच्चा फोन उठा ले रहा है तो मुझे लगता है उसको एक, जैसे आपने बोला कि फिक्स टाइम होना चाहिए कि बेटा अब उठिए, अब आपका टाइम हो गया, जाइए पढ़िए। इसी तरीके से अगर उनको मोबाइल देखना है या टीवी देखना है, क्योंकि आप रोक तो नहीं सकते उन्हें कि ऐसा मत करो क्योंकि आप उन्हीं के सामने मोबाइल देख रहे हो, तो बच्चों के आजकल अक्सर सवाल भी होते हैं, भावना आप तो कर रहे हो मुझे रोक रहे हो। तो
0: कैटेगरी के लिए देखिए, क्योंकि इसका जवाब हर एज ग्रुप के लिए बहुत डिफरेंट, मतलब जैसे जब हम छोटे बच्चों को केटर करेंगे तो अलग होगा, बड़े बच्चों के लिए इसलिए अलग हो जाता है क्योंकि आजकल काफी ज्यादा स्कूल्स भी डिपेंडेंट हो गए हैं मोबाइल फोन्स पे ही, बहुत सारे मैसेजेस हो गए, जो भी पढ़ना है ये सारी चीजें भी
3: कंटेंट आता है उसपे,
0: एग्जैक्टली, और कहीं ना कहीं बच्चों ने भी एक ये आदत बना ली है कि मैं मोबाइल पे पढ़ूंगा, मेरा ये पर्सनली मानना है। वैसे
3: कोविड ने तो ये सिखा दिया है कि पढ़ो
2: मोबाइल से पढ़ो,
0: लेकिन मेरा, फिर मैं बोलूंगी, मेरा ये एक बहुत पर्सनल ओपिनियन यही है कि जो भी पढ़ाई हो रही है, जितनी अच्छी पढ़ाई आप बुक से कर सकते हैं उतनी अच्छी पढ़ाई शॉर्ट नोट्स की तरह आप एक क्विक रिविजन तो यूट्यूब पे कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, आपको बैठ करके कंसिस्टेंटली पढ़ना है। जब हम किसी चीज को विजुअली देखते हैं तो देखिए ये तो बहुत डेफिनेट है कि विजुअल देखने में हमें वो चीज दिमाग में बैठ जाती है, लेकिन आपको एग्जाम्स ओरली नहीं देने होते, राइट, आपको बड़े बड़े लॉन्ग आंसर्स, शॉर्ट आंसर्स या मैं कहूंगी एमसीक्यूज भी आपको करने होते हैं।
4: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
5: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड मुरादाबाद।
6: के फ्रंट लाइन पे उनकी ड्यूटी लगी थी प्रोटेस्ट में, ऑन 25 मई @2 PM मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है। जब मैंने फोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4। जब मेरे पापा घर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि जो स्टूडेंट्स की प्रोटेस्ट, उसमें बस स्टूडेंट्स नहीं है, उसमें राउडीज है, उसमें एग्रेसर्स हैं, इस ऑपर्चुनिटी का यूज कर रहे हैं जस्ट टू क्रिएट केओस।
7: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों सहित 3300 सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना पर 5,070 करोड़ रुपए का व्यय आएगा।
8: प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना में जितने वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया है। 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में।
7: इसके अलावा मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए की संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में भी वृद्धि को मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये निर्णय युवाओं के विकास और राष्ट्र निर्माण के लिए खेलों की शक्ति का उपयोग करने के सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
8: कंप्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लिया जाएगा, स्टेडियम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो, मेंटोरशिप हो, उन सब के ऊपर एक बहुत केयरफुली क्राफ्टेड प्रोग्राम बनाया गया है। 29,000 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है 5 इयर्स के लिए और ये सीधा वीविन करेगी ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और आगे कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाले है 2030 में भारत में, उन सब के साथ ये वीविन करेगी।
7: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि राष्ट्रीय पांडुलिपि डिजिटलीकरण अभियान केवल एक सरकारी योजना नहीं बल्कि भारत की सभ्यतागत विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखने का राष्ट्रीय मिशन है। उन्होंने बताया कि ज्ञान भारत मिशन के अंतर्गत 12 लाख से अधिक पांडुलिपियों की पहचान और सत्यापन किया जा चुका है। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय देश भर के संस्थानों, संगठनों और पांडुलिपि संरक्षकों के सहयोग को दिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विद्यावाहिनी योजना के तहत सरकारी स्कूलों की 3,000 छात्राओं को साइकिलें वितरित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल से छात्राएं स्कूल आसानी से पहुंच पाएंगी और उनकी उपस्थिति तथा पढ़ाई में सुधार होगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि योजना के अंतर्गत दिल्ली के सरकारी स्कूलों की कक्षा 9वीं की 1,40,000 से अधिक छात्राओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है।
9: इस योजना के अंतर्गत चरणबद्ध तरीके से दिल्ली सरकार के विद्यालयों के लगभग 1,40,000 छात्राओं को निशुल्क साइकिलें दी जाएंगी। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि यह योजना छात्राओं के विद्यालय तक सुरक्षित और सुगम आवागमन को सुनिश्चित करेगी, नियमित उपस्थिति बढ़ाएगी तथा पढ़ाई बीच में छोड़ने की संभावना कम करेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने छात्राओं से यातायात नियमों का पालन करने और सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देने का भी आह्वान किया। वहीं श्री सूद ने इस योजना को प्रदेश की बेटियों की शिक्षा, सुविधा और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
7: दिल्ली सरकार की दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कल से शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता गीता कॉलोनी स्थित डीएम कार्यालय में योजना के ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ करेंगी। इसके साथ ही पात्र महिलाओं के आवेदन शुरू हो जाएंगे। योजना के अंतर्गत 21 से 65 वर्ष आयु वर्ग की 17 लाख से अधिक पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा और आत्मनिर्भर बनाना है। दिल्ली सरकार ने इस योजना के अंतर्गत रक्षाबंधन पर पहली किस्त जारी करने का लक्ष्य रखा है। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इस योजना के अंतर्गत करदाताओं का पैसा महिला सशक्तिकरण के लिए उपयोग होना चाहिए।
10: इससे लेकर 60 वर्ष की सभी महिलाएं अप्लाई कर सकती हैं। 10 साल से वो दिल्ली में रहते हुए जो नागरिक हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और 2,50,000 रुपए तक की आय वाले अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें जो पैसा डिसबर्स किया जाएगा, देखिए ये टैक्स पेयर का पैसा है। विमेन लेड डेवलपमेंट में विमेन के एम्पावरमेंट के लिए खर्च होना चाहिए।
7: उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज दिल्ली विकास प्राधिकरण के कमला नेहरू रिज और बोंटा पार्क रिज में पौधारोपण अभियान में भाग लिया। उन्होंने कहा कि यह अभियान दिल्ली में 76 अन्य जगहों पर भी चलाए गए। श्री संधू ने कहा कि इस अभियान के माध्यम से दिल्ली रिज पुनरुद्धार के संकल्प को और मजबूत किया जा रहा है।
11: एक पेड़ माँ के नाम, आपने देखा बच्चे भी आज पूरी तरह से इन्वॉल्व हुए हैं। आज कम से कम 75 और जगहों में यही ड्राइव हो रही है। सो टोटल 1,00,000 के पास DDA डिफरेंट पार्क्स में पेड़ उगाएगा। ये एक एनवायरमेंटल स्टेप ही नहीं बट इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं और कई बेनिफिट्स।
7: दक्षिण दिल्ली से सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने मास्टर प्लान, ओजोन तथा 69 इन्फ्लुएंट कॉलोनियों को नियमित करने जैसे कई मुद्दों को लेकर केंद्रीय आवासन और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार कार्य योजना पर विचार कर रही है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने साइबर धोखाधड़ी मामले में HDFC बैंक के एक मौजूदा और एक पूर्व कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी HDFC क्रेडिट कार्ड से संबंधित ग्राहकों की जानकारी का दुरुपयोग कर उनका मोबाइल नंबर बदलवाकर फर्जी क्रेडिट कार्ड जारी कराते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 7,15,000 रुपए नकद, 8 क्रेडिट कार्ड, 7 मोबाइल फोन और 16 इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत 34 मामलों में 44 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान 4 नाबालिगों सहित 5 लापता लोगों को सुरक्षित उनके परिजनों से मिलाया गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में जागरूक करना समय की आवश्यकता है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा चलाए जा रहे पॉक्सो जागरूकता अभियान के दौरान एक छात्रा ने अपनी शिक्षिका को बताया कि उसके साथ गलत स्पर्श हुआ।
12: एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते मुझे मालूम था कि बच्चों में गुड टच और बैड टच की ट्रेनिंग देना कितना जरूरी है, और ये शुरू होने के बाद लगातार दिल्ली के सभी स्कूल, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट स्कूल, बच्चों को अवेयरनेस दी जा रही थी कि गुड टच बैड टच क्या है। जिस तरीके से उन बच्चों को समझ में आए, आपके बच्चे यदि घर आकर भी आपको कोई ऐसी बात बताते हैं उसे ध्यान से सुनिए, उसे इग्नोर मत।
7: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह के 87वें शहीदी दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उधम सिंह के शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने कहा कि शहीद उधम सिंह का जीवन प्रत्येक पीढ़ी को देश के सम्मान और संप्रभुता की रक्षा के लिए प्रेरित करता रहेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने भी क्रांतिकारी उधम सिंह के शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री शाह ने उधम सिंह को अप्रतिम साहस और शौर्य का प्रतीक बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी स्वाधीनता संग्राम सेनानी उधम सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की है। रक्षा मंत्री ने कहा कि शहीद उधम सिंह का अदम्य साहस और देश को आजादी दिलाने के लिए उनका बलिदान भारतीय इतिहास का एक गौरवशाली अध्याय है। दिल्ली के उपराज्यपाल सरदार तरनजीत सिंह संधु और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी आज उधम सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराज्यपाल ने कहा कि जलियांवाला बाग नरसंहार का प्रतिशोध लेकर उधम सिंह ने अदम्य साहस, राष्ट्रभक्ति और औपनिवेशिक दमन के खिलाफ अटूट संकल्प का परिचय दिया। उनका सर्वोच्च बलिदान स्वतंत्रता संग्राम का स्वर्णिम अध्याय है। वहीं श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सरदार उधम सिंह का त्याग, पराक्रम और बलिदान राष्ट्र को सदैव प्रेरित करता रहेगा। राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC 79वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में रविवार को नई दिल्ली में 79 किलोमीटर की साइकिल रैली आयोजित करेगा। ये कार्यक्रम सुबह 5 बजे मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में शुरू होगा। कार्यक्रम को केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया झंडी दिखाएंगे। साथ ही रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी इस मौके पर उपस्थित होंगे। इस साइक्लोथॉन में NCC कैडेट्स और अन्य प्रतिभागी देश की आजादी के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों और गुमनाम नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली सचिवालय में वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने के उद्देश्य से रोहतास नगर विधानसभा के स्वयंसेवकों को वर्षा जल संचयन किट वितरित किए। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैच द रेन अभियान से प्रेरित होकर दिल्ली सरकार जन भागीदारी के माध्यम से वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। महिला और बाल विकास मंत्रालय कल देश भर में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाएगा। इस सप्ताह का उद्देश्य परिवारों, समुदायों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बीच स्तनपान के महत्व पर जागरूकता पैदा करना है। मंत्रालय ने परिवारों से आग्रह किया है कि वे सुनिश्चित करें कि प्रत्येक नवजात शिशु को जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान अवश्य कराया जाए। राजधानी दिल्ली में आज दिन भर मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली में कल बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। शहर का अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली दंगों के दौरान आसूचना ब्यूरो अधिकारी अंकित शर्मा हत्या मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को उम्र कैद। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विद्यावाहिनी योजना के अंतर्गत 3000 छात्राओं को साइकिलें वितरित की। दिल्ली सरकार की दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कल से। राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी शहीद उधम सिंह के 87वें शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और राष्ट्रीय कैडेट कोर 79वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में रविवार को नई दिल्ली में 79 किलोमीटर की साइकिल रैली आयोजित करेगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
3: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
3: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
1: कॉल 7500153841।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
2: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
1: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
3: हेलो जी, कैसे हालचाल है? नमस्कार, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6। मेरा नाम आरजे आनंद है और इस वक्त फिर से हम एक खास मेहमान के साथ स्टूडियो में हमने जो है एंट्री दे दी है, यानी कि मेरी तो एंट्री होगी और मेरे साथ ही साथ एक और बहुत ही कमाल के शख्स हैं, एक बहुत ही कमाल की पर्सनालिटी है जो यहाँ पर आ गई हमारे बीच में, हमारे स्टूडियो में आपसे गुफ्तगू करने। और ढेर सारी वो अपने साथ पूरा एक पिटारा लेकर आई है, ढेर सारी डायरी लेकर आई है, बहुत सारी उनके पास एक पोर्टल ही है पूरी जिसके अंदर बहुत सारा खजाना है। तो आज कौन है जो खजाने से भरपूर हमारे स्टूडियो में हमारे बीच में आ चुकी हैं, दस्तक देंगी अपनी आवाज के माध्यम से, आपको आज करेंगी ढेर सारा यू नो एंटरटेनमेंट का जो डोज है वो लेकर आई है, बहुत सारी बातें आपको बताने वाली है, बहुत कुछ सुनाने वाली है। एंड शी इज अल्टीमेट, जिन्हें कह सकते हैं एक पैकेट आज आपको हम देने वाले हैं। इसके अंदर क्या क्या होने वाला है मुझे खुद को भी नहीं पता, आई एम वेरी सरप्राइज। बस इतना पता था कोई आने वाला है, लेकिन वो लेकर आने वाला है ये भी नहीं पता था। एंड यूजुअली कई बार ऐसा होता है कि जब हमें पता लगता है कोई गेस्ट को हमें इंटरव्यू करना है तो उसकी डिटेल्स हमारे पास होती है, लेकिन ये जो मैम आई है ना, इनकी कोई डिटेल है ही नहीं हमारे पास। अब जो भी होगा एक्सक्लूसिवली लाइव होगा। सो सबसे पहले तो वेलकम बैक है मैम, हाउ आर यू, कैसे हैं आप?
4: हेलो एवरीवन, मैं अच्छी हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आनंद आपके साथ आकर।
3: थैंक यू सो मच।
4: आप भी का जो मुझे सुन रहे हैं, मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आपसे कहती हूँ कि जुड़े रहिएगा, बहुत दिल पसंद नगमे सुनने को मिलेंगे, कुछ दिल को छू जाने वाली नज़में और बहुत सारी बातें दिल से दिल तक।
3: क्या बात है, ब्यूटीफुल। ऐसा लग रहा है कि आज एक नहीं दो दो एंकर आपको सुनाई दे रहे हैं, दो दो अनाउंसर आपको सुनाई दे रहे हैं, बिकॉज मुझे ऐसे लग रहा है क्योंकि मैम बहुत कम सिचुएशन में ऐसा होता है कि जब किसी की एक तो आवाज इतनी अच्छी, ऊपर से उनकी बात इतनी अच्छी, फिर उनका फ्लो इतना बढ़िया, तो वो पूरा एक यू नो माहौल बना हुआ है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम दो एंकर यहाँ पे बैठ के आज श्रोताओं को एंटरटेन करने वाले हैं।
4: सो प्रोग्राम का टाइम एक्सीड हो जाने वाला है।
3: एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। मैम थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहेंगे, हमारे मुरादाबाद की जनता को हम जानना चाहती है, मुरादाबाद की ऑडियंस की, आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, आपके प्रोफेशनल लाइफ के बारे में थोड़ा बताएं।
4: मैं जो भी कहूंगी वो आप सब भूल जाएंगे, आपको याद क्या रहेगा, मेरी आवाज या जो कुछ

0: सुनाऊंगी। तो मुझे लगता है हमारी कविताएं, हमारी कहानियां, हमारी नज़में, ये जो हैं हमारे दिल से आती हैं और यही हमारी रूह का रिफ्लेक्शन है, आईना है।
1: Absolutely.
0: तो बजाय इसके कि मैं कुछ और इधर उधर का इंट्रोडक्शन दूं जो आप भूलें और आगे बढ़ जाएं, आप कविताओं से शुरू करते हैं और उसके जरिए आप मुझे खुद ब खुद जान जाएंगे। और हाँ, अगर आप मुझे दोबारा सुनना चाहेंगे तो फिर मेरी ये आवाज ही मेरी पहचान होगी।
1: एब्सोल्युटली, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। तो ये बहुत अच्छे तरीके से जो है मैम ने कर दिया, एक आपको हिंट दे दिया, एक क्लू दे दिया है कि वो क्या करने वाली, वो तो वही बताएंगी। तो मैम प्लीज, शालिनी मैम, मैं चाहूंगा कि इससे पहले मैं कुछ और बोलूं, कुछ आपसे ही शुरुआत हो जाए प्रोग्राम की।
0: बिल्कुल। तो एक छोटी सी बात है कि अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि आपने लिखना कैसे शुरू किया। तो उसी के बारे में कुछ लाइनें हैं, एक छोटी सी नज्म है, सुनिए। कि जब भी कोई एहसास मेरी रूह से सट कर बैठा,
1: वाह,
0: जब भी कोई एहसास मेरी रूह से सट कर बैठा, मैं तोड़ू उस खामोशी को, मुझसे ये हट कर बैठा, तब तब कोई नज्म किसी नन्हे पौधे सी मुस्काई, तब तब अल्फाजों ने धीरे से ली है अंगड़ाई, जब जब रूह खंगाली मैंने, जब जब रूह खंगाली मैंने, छन छन करके लफ्ज गिरे, जब जब रूह खंगाली मैंने, छन छन करके लफ्ज गिरे, मुंह पर उंगली रख कर उनको बिठा दिया खामोश परे, चुपके चुपके से, चुपके चुपके से वो सारे बन गए दोस्त हमराज मेरे, फिर नज्म ढली कविता पंक्ति, बन गए कहानी राज मेरे, बन गए कहानी राज मेरे।
1: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस मैम। आपने जो अपने आप को इंट्रोड्यूस किया है अपनी पंक्तियों के साथ, जो आपने अपने आप को किया है, लाजवाब, मतलब ब्यूटीफुल। लोग, मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि आप क्या स्पेशल करने वाले हो। कहते हैं ना, एक कलाकार की सबसे खूबसूरत बात होती है कि वो जब अपनी कलम से लिखता है तो उसकी लिखाई जो है उसके शब्दों में जब आ जाती है तो माहौल और भी खूबसूरत हो जाता है। वही आज आप कर रहे हो शालिनी जी, थैंक यू सो मच। सो जितने भी लोग रेडियो पे सुन रहे हैं, आई एम श्योर आपको मैम को सुन के डेफिनेटली मजा आने वाला है। ये तो अभी शुरुआत है, मतलब ये तो कह सकते हैं एक डेमो था, ट्रेलर था, पिक्चर तो भी बाकी है मेरे दोस्त। तो मैम, सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूंगा, आपको हमारे स्टेशन में आके कैसा लग रहा है?
0: आप? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। और स्टेशन में आने से पहले ही मुझसे पूछा जा चुका है, लोगों ने मुझसे पूछा आरजे आनंद के साथ रिकॉर्ड करने वाली हो।
1: क्या बात है, मतलब तो आपको उससे पहले नहीं पता था कि आरजे आनंद भी कोई एफएम पर है?
0: नहीं, मुझे पता था क्योंकि मैंने सुना था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इतने फैंस भी हैं आपके।
1: मैम ये तो बस कह सकते हैं ना कि जब हम अच्छा काम करते हैं और जब हम मेहनत करते हैं तो लोगों को धीरे धीरे पसंद आने लगता है। जैसे कि अभी आपका काम हमारे लिसनर्स को और हमें पसंद आने वाला है। सो मैम, मुझे सबसे पहले तो आप ये बताइए थोड़ा सा अपने बारे में कि आपको ये लिखने की क्यूरियोसिटी कैसे आई, कहाँ से आपको लगा कि मुझे ये करना चाहिए?
0: मुझे लगता है कि लिखना मेरे को जीन्स में मिला है। मेरे मम्मी डैडी भी लिटरेरी हैं, माँ मेरी लिखती हैं, बहुत खूबसूरत भजन लिखती हैं। तो लिखना शायद विरासत में मिला है मुझे, और शायद को हटा देते हैं, डेफिनेटली विरासत में ही मिला है मुझे। और धीरे धीरे वो, क्योंकि कहीं ना कहीं पढ़ने का शौक भी आपको लिखने की एक कुलाहट देने लगता है।
1: एब्सोल्युटली, बिल्कुल।
0: तो पढ़ने के शौक से ही ये शुरू हुआ है, किताबों की खुशबू से ही ये लिखना शुरू हुआ है। और मुझे लगता है कि जब जब जब मेरे, जो मैंने अपनी बात इसमें लिखी है कि जब जब कोई एहसास मेरी रूह से सट कर बैठा, एक्चुअली वही बात है
1: कि
0: जब भी मुझे कुछ ऐसा फील हुआ मैंने उसे लिखा, बस इस तरह लिखना शुरू हुआ है। मैं कोई ट्रेंड या प्रोफेशनल राइटर नहीं हूँ, मैं बस मन की बात को लिख पाती हूँ।
1: That's very nice. क्योंकि मैम लिखने के लिए भी आपको फील करना पड़ता है, आपको वो इमोशंस को, यू नो, कहीं ना कहीं अगर आप कागज पे उतार रहे हो तो उससे पहले आपको वो चीज को अपने जहन में लाना पड़ता है ना। जब तक आप उस फील को फील नहीं करोगी, उस मोमेंट को फील नहीं करोगे, तब तक आप वो लिख ही नहीं पाओगे, है ना।
0: तो इमोशन शब्दों में
1: जान नहीं आएगी, जाएंगी नहीं। एग्जैक्टली, तो वो चीज तो कहीं ना कहीं हर कोई नहीं कर पाता है ना।
0: हाँ, तो ये ईश्वर की कृपा।
1: हाँ, एग्जैक्टली,
0: कह सकते हैं आप।
1: ट्रू, नाइस। वैसे जी, ब्यूटीफुल आपकी आवाज है, आप खुद भी इतने ब्यूटीफुल है, नो डाउट।
0: सो
1: थोड़ा सा मैं आपके बारे में ये और जानना चाहूंगा कि मतलब प्रोफेशनली आप क्या करती हैं?
0: एजुकेशन आपका? सच बताऊं तो वो सब करती हूँ जिसका डेजिग्नेशन होता है कुछ नहीं।
1: ओ माय गॉड,
0: कहते हैं ना कुछ नहीं करते हैं टाइप, लेकिन मैं बहुत कुछ करती हूँ। वैसे मैं होम मेकर हूँ, मैं काफी सालों तक फोटो एडिटिंग्स में काम करती रही हूँ, वीडियो एडिटिंग्स में भी काम किया है और अब मैं होम मेकर हूँ, तो मैं 24 घंटे बाद 28 घंटे का काम करना चाहती हूँ। बहुत सारी किताबें पढ़ना चाहती हूँ, बहुत सारी किताबें पढ़ती हूँ, बुक रिव्यूज करती हूँ, पोइट्री करती हूँ और ट्रैवल की शौकीन हूँ, जो आपको मेरी कविताओं में भी मिलेगा, पता चल जाएगा।
1: क्या तो बात है, बहुत ही
0: ट्रैवल करती हूँ।
1: बहुत ही बढ़िया। और जब आप नए नए जगह पे ट्रैवल करते हैं तो आपको नया नया कंटेंट भी मिलता है।
0: बिल्कुल, है ना, लिखने की प्रेरणा। और मैं नेचर लवर हूँ तो हमेशा प्रकृति के करीब जाकर वो प्रेरणा लिखने का, जो अंदर से एक मन, अंदर से एक फील, वो सब अपने आप आ जाती है।
1: दैट्स वेरी नाइस। शालिनी जी हमारे साथ मौजूद हैं और एक स्पेशल सेशन में मैम आई हैं, बहुत सारी चीजें लेकर पूरी प्रिपरेशन के साथ आज वो आई हैं आपको खूब सारा एंटरटेनमेंट का डोज देने के लिए। मैम आगे बढ़ेंगे, क्या स्पेशल सुनाना चाहेंगे इसी बीच आप?
0: तो हम,
1: आपने अपना तारुफ तो करा दिया। यस हाँ, बचपन, एग्जैक्टली, मतलब फ्लैश बैक में लेके जाएंगे आज आप।
0: तो बचपन सभी के दिल के करीब होता है, तो एक छोटी सी नज्म सुनाती हूँ जो आपको बचपन की याद दिला देगी,
1: मतलब फ्लैश बैक में ले जाएगी आज हम सभी को। श्योर मैम।
0: कि बारिश अब भी बचपन साथ लाती है, बारिश अब भी बचपन साथ लाती है, वो कागज की कश्तियां जो पानी में उतारते थे, वो भीगती थी, डगमगाती थी, डूब जाती थी, फिर दूसरी बनाते थे ये सोचकर इस बार तो तैर ही जाएगी, वो भी डूब जाती थी, बनाते थे कभी उससे बड़ी कभी छोटी, कभी कागज बदलते थे, पर वो कोशिशें कम नहीं होती थी कभी, वो कश्ती दूर तक जाएगी ये उम्मीद कायम रही जब तक बचपन रहा, वो कश्ती दूर तक जाएगी ये उम्मीद कायम रही जब तक बचपन रहा। बड़े क्या, वो खूबसूरत कश्तियां जिंदगी से चली गईं। बना तो अब भी सकते हैं, जाहिर है बना तो अब भी सकते हैं, पर वो जज्बा कहां से लाएंगे कि तैरेंगी।
1: तैरेंगी, ट्रू।
0: वो जज्बा ही तो था, खूबसूरत वो कश्तियां नहीं थी, वो जज्बा ही था जो बचपन में तैरता था और बड़े होकर डुबो दिया हमने।
1: अरे बाप रे, मतलब मैम ये मुझे लग रहा है कि आपने ना एकदम असलियत से रूबरू करा दिया है हमें।
0: एग्जैक्टली,
1: एग्जैक्टली, मतलब एकदम सच्चाई का आईना दिखा दिया आपकी छोटी सी चार लाइनों ने। वेल टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ही धमाकेदार आपने सुनाया। अच्छा, ये आप खुद से लिखते हैं?
0: जी, ये सब मेरी खुद,
1: ये आपकी खुद की लिखी हुई है
0: जी।
1: क्या बात है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लिखने के लिए सबसे बड़ा जज्बा तो आपका यही होना चाहिए कि भाई आप पहले उस चीज को जाओ, उस चीज को देखो, उस चीज में घुसो, उसके बाद फिर उसे पन्नों पे उतारो। एंड आई थिंक इट्स नॉट इजी मैम।
0: नहीं तो, पर जो आपने जिया है,
1: हाँ,
0: उसे जो आपने देखा है, जिया है, जो आप महसूस कर सकते हो वो आप पन्नों पे उतार सकते हो।
1: Absolutely.
0: अगर आपने जीते समय महसूस नहीं किया, हाँ, अगर आप डूबे नहीं, ऊपर ऊपर से निकल गए, हाँ, तो फिर लिखना मुश्किल है।
1: लिखना मुश्किल है, करेक्ट करेक्ट, वही वही। शालिनी जी के साथ ढेर सारी बातचीत जो है चल रही है आज इस प्रोग्राम में और बहुत ही खूबसूरती के साथ जो है सेशन चल रहा है। मैं सोच रहा हूँ मैम बातचीत के बीच बीच में अगर कुछ अच्छे गीत संगीत हो जाए तो प्रोग्राम और भी खूबसूरत हो जाएगा। तो कोई एक ऐसा गीत जो आप हमारे श्रोताओं को सुनवाना चाहती है, जो आपके दिल के बहुत करीब है, कौन सा गीत है जो आपको सुनवा?
0: बारिश से मुझे वो याद आ गया, रिम झिम रिम झिम, रुम झुम झुम झुम।
1: वाओ, ब्यूटीफुल।

0: ये सुनवा सकते हैं।
1: क्या बात है, बहुत ही ब्यूटीफुल मैम ने गाया, बहुत मजा आ रहा है। आप तो मुझे लग रहा है कि मल्टी टैलेंटेड है, अच्छा बोल भी रहे हैं, अच्छा लिख भी रहे हैं और अच्छा गा भी रहे हैं भाई साहब, बहुत मजा आ रहा है। नो डाउट कि आपको भी अच्छा लग रहा होगा एवरीबॉडी। फिलहाल गाने की बात चली तो पहले ही गाना सुनेंगे, उसके बाद वापस मिलेंगे। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 आनंद विद यू लेडीज एंड जेंटलमैन। इस गाने के बाद वी कम बैक, डोंट गो एनीवेयर।

0: ना ऐसे एकदम से हम किसी को देखते हैं फर्स्ट टाइम ही हमें ऐसा लगता है कि भैया हमें तो प्यार ही हो गया, मतलब आई डोंट नो लव है या फिर अट्रैक्शन है, बट मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट टाइम में तो प्यार शायद मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में तो नहीं है, जैसे लो वो अट्रैक्शन जिसे हम कह सकते हैं वो हो सकता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मतलब अट्रैक्ट होना. तो जैसे हम फर्स्ट टाइम में किसी को देखते हैं कॉलेज में, मार्केट में, कहीं पे भी, आजकल के जेन ज़ी का है ही ये हाल, अगर वो अट्रैक्ट हो रहा है उसकी तरफ, उसको प्यार हो गया है, तो उसके लिए कुछ है आपके पास?
1: बिल्कुल. और ये जेन ज़ी का नहीं है, ये तो हमेशा से लव एट फर्स्ट साइट तो शायद हमेशा से चलता आ रहा है. लेकिन मैं तो ओल्ड स्कूल हूँ, तो अगर आप पहले देखें तो तो अक्सर ऐसा भी होता था कि हमने कुछ ऐसा देखा कि हमें अट्रैक्शन हो गया या हमें ऐसा फील हो रहा है कि बस यही तो चाहिए था, और हमने उसकी शक्ल भी नहीं देखी है अभी.
0: ठीक है, तो बस हम इमेजिनेशन में खोए हुए हैं.
1: हाँ, तो आप सुनिए, आप इमेजिन करिए, आंख बंद करिए और मेरे लाइनों के साथ साथ चलिए.
0: ठीक है
1: तो कहा है कि पहली बार देखा उसे नंगे पांव मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए. गुलाबी सी साड़ी शायद हाथ में थाम रखी थी, मखमली पांव झांक रहे थे, एक पांव में काले धागे में पिरोए काले मोती पड़े थे, नजर से बचाने के लिए होंगे शायद. बार बार भीड़ में गुम जाती थी वो, मैं उन्हीं पांव का पीछा करता फिर खोज लेता था उसे. उसके पांव मेरी आंखें, मेरी आंखें उसके पांव, लुका छिपी खेल रहे थे जैसे. गुम हो गई वो और मैं चेहरा ना देख पाया था, बस वो पांव आंखों में लिए घर लौट आया था. रात भर वो पांव जहन में चहलकदमी करते रहे, सुबह होते ही फिर वही मंदिर की सीढ़ियां और वही मैं. हर रोज सुबह शाम मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहा हूं, दुआएं मांगने लगा हूं, बंदगी सीखने लगा हूं. इसे मोहब्बत कहते हैं या इबादत?
0: क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार मैम. क्या खूब आपने लिखा, मजा आ गया इसको सुनकर, मजा आ गया वाकई में. आई एम श्योर दोस्तों आपको भी डेफिनेटली मजा आ ही रहा होगा, कॉन्वर्सेशन इतनी अमेजिंग चल रही है, बातें इतनी ब्यूटीफुल हो रही है, तो ऑफकोर्स मजा तो आना बनता है. वेल आगे बढ़ते हुए मैम आपका फिर से वेलकम बैक करेंगे, और बहुत अच्छे तरीके से जो है आप हमारे लिसनर्स को तमाम सारी अपनी लिखी हुई बातों से रूबरू करा रही हैं, वो ताज़ा तरीन बेहतरीन बातें जो है आप हमें वापस याद दिला रही हैं, जो छोड़ के आ चुके होंगे. बहुत सारे ऐसे हमारे लोग हमें सुन रहे हैं रेडियो पे जो आज अपनी उन यादों में वापस चले जाएंगे. बिल्कुल मैम, और मुझे लगता है कि यही एक खूबसूरत बात होती है इन कविताओं की, इन पोइट्रीज की, कि ये हमें फिर से जिंदा कर देती हैं. अगर हमारी कुछ चीज हमें खो भी गई है ना, मिस हो भी गई है, अगर हम इनको सुनते हैं तो लगता है कि वाह, हमारे सामने पूरी पिक्चर आ जाती है.
1: बिल्कुल.
0: तो ये खूबसूरत एहसास है, और जो आज वो एहसास को आप जगाने के लिए यहाँ आ गई है,
1: तो
0: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. एंड मुझे लगता है कि गाइस इस तरह का टैलेंट ना हर किसी में नहीं होता, और जिसमें होता है फिर तो बल्ले बल्ले. और यार मैम आपका गॉड गिफ्ट है आई थिंक.
1: हाँ बिल्कुल,
0: बस आपने इसको एनहांस कर दिया है,
1: इसको एनहांस कर दिया है. बिल्कुल, मैंने कहीं कुछ सीखा नहीं है, और बचपन से स्टेज पे मेरी मम्मी मुझे भेजती रही कुछ कुछ चीजें सिखा के, मुझे कविता पढ़ना सिखाया, मुझे बाकी चीजें डिबेट सिखाई, और उसके बाद वो चीज मैं शायद पॉलिश करती रही, उन चीजों को वक्त देती रही. और जिसमें आपका दिल लगता है ना, वो चीज अपने आप पॉलिश हो जाती है.
0: एब्सोल्युटली, जिस चीज के लिए आप डेडिकेटेड होते हो, पैशनेट होते हो ना, तो फिर आपका पोटेंशियल, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस अपने आप बाहर आने लगता है, और आप फिर उसमें आपको ये भी नहीं लगेगा मैं इससे बोर हो रहा हूँ, आप इंजॉय करोगे, इंजॉय लॉट. आप जितना ज्यादा उसमें घुसोगे उतना आपको मजा आएगा, और जिस चीज में आपको मजा आता है ना, वही चीज अगर आपको प्रोफेशन बन जाए तो फिर भी मजा आता है.
1: बिल्कुल,
0: है ना.
1: और जैसे कि अभी आपने कहा था कि कविताएं जैसे पीछे ले जाती हैं कविताएं, तो मैंने भी ऐसे लिखा था कि कविताएं जब पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है जैसे सब चिट्ठियां हैं.
0: क्या बात है.
1: तो वो चिट्ठियां जो या तो अधूरी रह गई और या अपने पते तक पहुंच नहीं पाई.
0: करेक्ट.
1: तो प्रेम हो या नाराजगी हो, इजहार हो, मनोहार हो, समर्पण हो, दर्द हो या टीस हो, या आक्रोश हो, इन सबको किसी ना किसी पते पर

0: पहुंचना था।
1: करेक्ट।
0: लेकिन ये रास्ते में खो गए। अगर ये सब अपने पते पर पहुंच जाते तो इनका सफर खत्म हो जाता।
1: खत्म हो जाता
0: और वजूद भी।
1: एब्सोल्युटली।
0: इन्हें कोई मोड़ मार के हवाई जहाज बना के उड़ा देता। कोई इसमें चना मुरमुरा खा लेता।
1: करेक्ट।
0: कहीं ये कूड़ेदान में जाती और कहीं अलाव में जल गई होती। हो सकता है कुछ वक्त के लिए इन चिट्ठियों को संभाल लिया होता किसी ने, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली इनका वजूद खत्म होना ही था।
1: होना ही था।
0: तो वो चिट्ठियां जो किसी पते पर पहुंच नहीं पाई वो कविताएं हो गई, और ये कविताएं आसमान में लटके सितारों की तरह टिमटिमा रही हैं।
2: ना को मंजूरी दी, देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और समुद्री क्षेत्र की विशाल संभावनाओं का दोहन करने के लिए राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को भी स्वीकृति। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अगले 5 वर्ष तक जारी रखने को मंजूरी दी। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर निर्मम कार्रवाई के लिए पाकिस्तान की निंदा की। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर, राहत और बचाव कार्य जोरों पर। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी और अंकुश पंघाल फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना को 5,070 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है।
3: प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना में जितने वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया है। 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में।
2: मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इस योजना में अपतटीय अन्वेषण मूल्य श्रृंखला से जुड़े कार्य शामिल हैं।
3: समुद्र मंथन भारत में ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन का प्रोग्राम है। 84,000 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम है। इसके 2 कंपोनेंट है बड़े, तो पहला कंपोनेंट है ऑफशोर सीज़मिक डेटा एक्विजिशन, 28,000 करोड़ रुपीस का ये प्रोग्राम है। दूसरा कंपोनेंट एक्सेलरेटेड ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम, ये 43,200 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम।
2: सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने को भी मंजूरी दी गई है।
3: पीएम किसान योजना को और आगे एक्सटेंशन दिया गया है। इस प्रोग्राम में देश के किसानों को क्रॉप साइकिल के हिसाब से बेनिफिट दिया जाता है। साल में 3 बार 2,000 रुपए इनकम सपोर्ट दिया जाता है। इसमें पिछले 5 वर्षों में क्यूमुलेटिव डिस्बर्समेंट अभी करीब करीब 3,10,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट किसानों के पास जा चुका है।
2: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे प्रत्येक प्रतिभाशाली युवा को उत्कृष्टता का स्पष्ट मार्ग मिलेगा।
3: कम्प्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लिया जाएगा। स्टेडियम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो, मेंटोरशिप हो, उन सब के ऊपर एक बहुत केयरफुली क्राफ्टेड प्रोग्राम बनाया गया है। 29,000 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है 5 ईयर्स के लिए, और ये सीधा वीविन करेगी ओलंपिक, पैरालंपिक और आगे कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाले है 2030 में भारत में, उन सब के साथ ये वीविन करेगी।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समुद्र मंथन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और विशाल समुद्री क्षमता का दोहन करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना से जलाशयों और अंतर्देशीय जल निकायों के अभिनव उपयोग से देश की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता का विस्तार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया योजना का विस्तार और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि से देश भर के युवा एथलीटों को बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक सुविधाएं और अपनी प्रतिभा को निखारने के अधिक अवसर मिलेंगे। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई।
4: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज फिर विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गई। हालांकि शोर शराबे के बीच लोकसभा ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को बिना चर्चा के पारित कर दिया। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के विलंबित पंजीकरण से संबंधित प्रावधानों को अधिक सख्त बनाना और इन घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करना है। विधेयक में यह भी प्रावधान किया गया है कि विलंबित पंजीकरण की अनुमति देने से पहले नामित प्राधिकारी को संबंधित जन्म या मृत्यु की सूचना की प्रामाणिकता का सत्यापन करना होगा। इस सप्ताह संसद ने दो महत्वपूर्ण विधेयकों लोक परीक्षाएं अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 तथा राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को पारित किया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को मजबूत करने में संयुक्त राष्ट्र का लगातार समर्थन किया है। लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री जयशंकर ने कहा कि ये समर्थन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की 8 बार की सदस्यता में भी दिखता है और वर्ष 2028-29 के लिए अगली उम्मीदवारी की औपचारिक घोषणा भी की जा चुकी है। सरकार ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी योजना के अंतर्गत आज तक किसी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का कोई बकाया नहीं है। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने VBG रामजी योजना को अधिसूचित कर लागू करना शुरू कर दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आज उम्र कैद की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने दलीलें सुनने के बाद सभी पांचों आरोपियों को सजा सुनाई। अदालत ने इस अपराध को समाज को झकझोर देने वाली बेहद गंभीर घटना बताया। इसी महीने की 13 तारीख को अदालत ने हुसैन और 4 अन्य को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी पाया था। दंगों के दौरान अंकित शर्मा पर भीड़ ने हमला किया था, बाद में उनका शव नाले में मिला था। पश्चिम बंगाल में विशेष कार्य बल के आतंक रोधी प्रभाग ने मोहम्मद हमीम मंडल उर्फ हमीम फिगो को आतंकवादी नेटवर्क से कथित संबंधों के आरोप में बर्धमान से गिरफ्तार किया है। आरोपी को बर्धमान के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने आरोपी को 14 दिन के लिए STF की हिरासत में भेज दिया। हमीम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों में शामिल था। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथा कथित चुनाव पाकिस्तान की नीतियों को सिरे से खारिज किए जाने का प्रमाण है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि पाकिस्तान द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में निर्दोष नागरिकों के खिलाफ लगातार दमनकारी कार्रवाई की जा रही है।
5: पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के तंत्र पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण नागरिकों के खिलाफ लगातार निर्मम बल रूथलेस फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है और इस सख्त कार्रवाई में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और कई एक और लोग घायल हुए हैं। एक हिंसक शासन का सामना करते हुए वहां के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन से गैर कानूनी हत्याओं की स्वतंत्र जांच की मांग की है। हम आग्रह करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान की हरकतों की बारीकी से जांच करनी चाहिए और उसके अत्याचारों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।
2: श्री जायसवाल ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने भारत के सभी साझेदार देशों और हितधारकों से इस क्षेत्र के लिए सही नामकरण का उपयोग करने का आग्रह किया। नेपाल में अधिकारियों ने भारत से सटे सप्तरी जिले के कुछ हिस्सों में अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। सुनसरी में सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में प्रदर्शन शुरू होने के बाद कर्फ्यू लगाया गया। सुनसरी, धनुषा और सिराहा जिलों में कुछ हिस्सों में पहले से ही कर्फ्यू लागू है। सल्लाही जिले के अधिकारियों ने सीमा पार से नेपाल में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए वैध पहचान पत्र रखना अनिवार्य कर दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में लगातार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि निचले जिलों में बचाव और राहत कार्य जोरों पर है।
6: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है क्योंकि महानदी और उसकी सहायक नदियां कई जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ का पानी बढ़ने से सैकड़ों गांव, सड़कें और हजारों हेक्टर खेती की जमीन डूब गई है और 15 जिले इसकी चपेट में आ गए हैं। हीराकुद बांध के 22 गेटों से अब बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी नुकसान का जायजा लेने के लिए कल बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर और केंदुझर जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे, जबकि एहतियात के तौर पर भद्रक के सभी स्कूल कल बंद रहेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
2: गुजरात से हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में आज सुबह से मूसलाधार वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है।
7: सूरत जिले के अंबिका में आज पूरे राज्य में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा भरूच, नवसारी, डांग, आणंद और खेड़ा जिलों के कई इलाकों में भी आज मूसलाधार बारिश हुई। निचले इलाकों में जलभराव के कारण राज्य राजमार्गों और स्थानीय मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। स्थिति को देखते हुए राहत और बचाव कार्यों को बड़े पैमाने पर तेज कर दिया गया है। आज सुबह से ही 8,300 से अधिक लोगों को सुरक्षित आश्रय में पहुंचाया जा चुका है। इस बीच भारी बारिश की संभावना को देखते हुए एहतियाती तौर पर सूरत, बनासकांठा और मेहसाणा सहित कई जिलों में कल भी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: इस बीच मौसम विभाग ने कल गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण कर्नाटक के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। इसी तरह का मौसम उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम में भी रहने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने के साथ आंधी तूफान और तेज हवाओं की भी संभावना है। दिल्ली में कल तेज वर्षा हो सकती है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज अस्मिता डे ने जूडो में स्वर्ण पदक जीत लिया। 48 किलोग्राम वर्ग में उन्होंने पहला स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस बीच भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी और अंकुश पंघाल ने फाइनल में जगह बना ली है। प्रीति ने महिलाओं के 54 किलोग्राम सेमीफाइनल मैच में जाम्बिया की कैथरीन मुआपे को हराया। जैस्मिन लंबोरिया ने 57 किलोग्राम और अरुंधति चौधरी ने 70 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में जगह बनाई। वहीं अंकुश पंघाल ने पुरुषों के 80 किलोग्राम सेमीफाइनल में कनाडा के जोशुआ ओफोरी को मात दी। भारत 4 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में 10वें स्थान पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी। देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और समुद्री क्षेत्र की विशाल संभावनाओं का दोहन करने के लिए राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को भी स्वीकृति। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अगले 5 वर्ष तक जारी रखने को मंजूरी दी। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्र कैद। और राष्ट्रमंडल खेलों में अस्मिता डे ने जूडो में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अखिल और आप सुन रहे हैं दिल से दिल तक अखिल संग। क्या हो रहा है और क्या मस्ती चल रही है ये तो आपको पता ही होगा कि इस समय मौसम जो है थोड़ा सा ना आज गर्मी वाला ऐसा हो गया कि भैया एसी वापस चलाने ही पड़ गए गाड़ियों के। तो कहीं होंगे फंसे तो ज़रूर हमें बताएं ज़रूर कि क्या है अपडेट ट्रैफिक का, चाहे वो एमटी हो, मानसरोवर हो या लाजपत नगर में ही फंसे हुए हो सकते हैं साहब। तो ज़रूर हमें अपडेट करें 9837896 96। और कहते हैं कि थोड़ा से मुस्कुराते रहना चाहिए, तो मुस्कुराना थोड़ा नहीं बहुत कुछ होना चाहिए। मुस्कुराकर हॉर्न भी बजाते रहना चाहिए, मगर हॉर्न इतना नहीं कि दूसरे वाले के कानों में ज़्यादा तेज़ आवाज़ पहुंच जाए। हॉर्न को कम बजाएं, इधर उधर देखें, आराम से अगर रास्ता निकलने वाला हो तो निकल जाए। कभी कभी नोटिस किया है कि आपने कि हमारी ज़िंदगी में भी ना बिल्कुल फिल्मों की तरह सीन आ जाते हैं। कभी लगता है वाह क्या सीन है, और कभी लगता है भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ। कभी ज़िंदगी कॉमेडी बन जाती है तो कभी रोमांस और कभी सस्पेंस, और कभी कभी तो लगता है डायरेक्टर ने बिना स्क्रिप्ट के ही शूटिंग शुरू कर दी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है और एक तरीके से सवाल भी है आप लोगों से कि कभी कभी पिक्चर जैसी लगती है ज़िंदगी, आपकी ज़िंदगी का कौन सा मोमेंट आपको किसी फिल्म के सीन जैसा लगता है? हो सकता हो कोई पहली मुलाकात हो, पहली नौकरी का सीन हो, या पहली सैलरी वाला, या किसी दोस्त से अचानक मिलना, या फिर कोई ऐसा ट्विस्ट जिसकी आपने कभी अपनी ज़िंदगी में कल्पना ही नहीं की। तो हमें मैसेज करें या कॉल करके बताएं कि आपकी ज़िंदगी का सबसे फिल्मी मोमेंट कौन सा है। एक शायरी कहते हैं स्टार्टिंग से, कभी कहानी बनकर मिली ज़िंदगी, कभी सवाल बनकर मिली ज़िंदगी, हमने तो बस किरदार निभाया अपना और हर मोड़ पर कमाल करती गई ज़िंदगी। और इसी खूबसूरत सोच के साथ चलिए सुनते हैं बढ़िया सा गाना। तब तक आप हमें करें या मैसेज करके बताएं 9837896896 पे कि कौन सा फिल्मी वाला सीन आपके साथ हुआ है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।

0: वेलकम बैक दोस्तों, एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। और आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा फिल्मी है, लेकिन कहानी जो है ना बिल्कुल रियल है। क्योंकि फिल्मों में तो होते हैं डायरेक्टर, लेकिन जिंदगी में डायरेक्टर कौन होता है? कभी किस्मत, कभी वक्त, और कभी हमारे अपने खुद के फैसले। तो चलिए सुनते हैं हमारे कुछ लिसनर्स के मैसेजेस। हमारे एक लिसनर हैं नेहा जी, उनका मैसेज आया है, मेरी ज़िंदगी का सबसे फिल्मी मोमेंट तब था जब कॉलेज में जिस लड़के से मैं बात करने से डरती थी, वही बाद में मेरा सबसे अच्छा दोस्त बन गया। क्या बात है नेहा जी, मतलब आपकी ज़िंदगी ने रोमांस की तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन डायरेक्टर ने फ्रेंडशिप वाला एंडिंग दे दिया। ऐसे ही होता है साहब, फिल्में वाली जो है ना, कभी कभी सीन जो हैं बिल्कुल सटीक बैठ जाते हैं। हमारे एक दूसरे लिसनर हैं राहुल जी, वो कहते हैं, मेरी पहली सहेली मिलने का दिन बिल्कुल फिल्म जैसा था। पैसे कम थे लेकिन खुशी बहुत ज़्यादा थी। सही कह रहे हो आप, ये वाला सीन तो आपके साथ हर महीने ही हो रहा होगा राहुल जी। तो पहली सहेली की जो खुशी वैसे शायद अमाउंट से ज़्यादा आपके उस एहसास से होती है जब लगता है अंदर से कि यार मैं आज अपने पैरों पर खड़ा हो गया हूँ। वो जो है ना सीन, कई बार फिल्मों वाले जो सीन है वो एकदम रिपीट भी हो जाता है अपने साथ। तो चलिए हम अपने एक लिसनर से भी बात करते हैं और सुनते हैं उनकी दिल की बात। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संघ, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? सभी को बताइए।
1: ये मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है, शाह गुप्ता साकिबुल्ला की जारत के पीछे नजदीक से थे।
0: क्या कर रहे हैं साहब इस समय उस्मान जी? आप
1: आपके प्रोग्राम सुन रहे थे साहब, रहने गए, फिर आपको फोन लगा दिया हमने सर।
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल ऐसी होता है जब आपके पास कभी रहा नहीं आता। एकदम आपके पास टच वाला मोबाइल है या कीपैड वाला मोबाइल है, ये बताइए पहले।
1: नहीं, हमारा तो ऐसे ही सादा है।
0: सादा है
1: जी सर।
0: तो एकदम नंबर मिल जाता होगा, 9837896896 है ना?
1: जी साहब।
0: चलिए तो आज क्या सुनाएंगे, पहले शायरी सुनाइए उस्मान जी, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे आपसे।
1: चलती है गाड़ी, उड़ती है धूल, जलते हैं दुश्मन, खिलते हैं फूल, फूल है गुलाब का खुशबू से लीजिए, खत है मुझ गरीब का जवाब तो दीजिए। फूल मोहब्बत के उधर खिल उठे, तुमने हंसती हुई नजरों से इधर देख लिया।
0: क्या बात है, क्या बात है साहब, आज
1: नजर में ढल के उभरते हैं दिल के अफसाने। ये और बात है, दुनिया नजर नाम पहचाने।
0: बहुत खूब, बहुत खूब। तो उस्मान जी, एक आज जो आपने शायरी जो कही है, मुझे लगता है बहुत ही लेटेस्ट लिखी है, या ये किसी कहते हैं पुराने शायर की शायरी है?
1: हम लिखते रहते हैं साहब ऐसे, आपके शेर भी सुनते रहते हैं हम लोग।
0: नहीं नहीं, बहुत बढ़िया बढ़िया, आप हमारे भी सुनते रहते हैं। कैसे लगते हैं हमारी शायरी?
1: शायरी अच्छी लगती है, और फिर आपके यहाँ गाने बड़े टॉप के अच्छे लगते हैं।
0: धन्यवाद साहब, धन्यवाद।
1: और प्रोग्राम आप इतना बढ़िया प्रस्तुत करते हैं, डायरेक्टर साहब को इनाम देना चाहिए आपको।
0: नहीं नहीं, उनका
1: बधाई हो इस बात के।
0: धन्यवाद साहब, धन्यवाद।
1: प्रोग्राम अच्छा प्रस्तुत करते हैं आप लोग।
0: धन्यवाद उस्मान जी, हमारी पूरी टीम का यही कोशिश रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे अपने प्रोग्राम जो है अच्छे से प्रस्तुत करें। और खुशी सर,
1: डायरेक्टर साहब को, डायरेक्टर साहब इनाम दे मैं आपको।
0: हमारे पास तो भी इनाम में आपकी शायरी आई है, और हमें शायरी बहुत अच्छी लगी है साहब, हमारे लिए तो वही सबसे बढ़िया इनाम। तो आज आज हम बात कर रहे थे उस्मान जी की, कभी कोई ऐसा सीन जैसे पिक्चरों में होता है ना कि कभी पिक्चर वाला सीन मेरे साथ भी हो गया, तो कोई ऐसा सीन हुआ आपके साथ पिक्चर वाला?
1: आपके चिमनियम की बात करी थी कि लंबी हो जाती तो खिंची चली जाती है, वो चिंगम थी।
0: वो चिंगम थी। तो आज एक पहेली एक आपसे भी पूछता हूँ सवाल, ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना ज्यादा खींचो वो उतनी छोटी हो जाती है? सोचिएगा और बताइएगा मेरे को। ठीक है।

0: धन्यवाद उस्मान जी, और बहुत अच्छा लगा आप जो है आपने हमें कॉल करी
1: जी सर।
0: और आपका फेवरेट गाना मैं प्ले कर दूंगा
1: जी सर। ठीक, पूरा गाना सुनवाएंगे सर?
0: हाँ सर, हम पूरा ही सुनाते हैं।
1: तो
0: धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ उस्मान साहब, आज बिल्कुल शायरी के मूड में और आज हंसी मजाक के मूड में थे हमारे साथ। तो बहुत ही अच्छे से बात करते हैं और अच्छी अच्छी बातें भी करते हैं, मतलब बता भी जाते हैं कि यार हो तो जिंदा दिल ऐसी हो, कुछ भी हो, एक बार तो फटाफट नंबर मिला लो झट से। मतलब झट से नंबर मिलाना अगर किसी को सीखना है ना तो वो उस्मान जी से ही सीखना है। पैसों से बड़ी वो पहली कमाई थी, चेहरे पे मुस्कान और आँखों में रौनक आई थी, रकम छोटी थी मगर एहसास बड़ा था, उस दिन लगा जिंदगी सच में मेरी अपनी थी। तो ये राहुल जी आप ही के लिए है एक शायरी कि आपने जो अपनी बात बताई कि सैलरी भले ही कम थी मगर खुशी सबसे ज़्यादा थी, तो ये बात सच में है सर, खुशी ज़्यादा है और सैलरी क्या है, आज नहीं तो कल बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ेगी तो आप तो पीछे बस कह देना जी मैं तो जा रहा हूँ छोड़ के दूसरी जगह देख लूँगा, मगर नहीं साहब ऐसे ही बढ़ जाएगी, प्यार से बढ़ जाएगी। तो चलिए सुनते हैं उस्मान जी का खाना नहीं गाना, और उसके बाद आते छोटे से ब्रेक के बाद।
2: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
3: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
2: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
3: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
4: कॉल 7500153841।
5: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
4: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
6: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना, आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
4: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
7: Hey, you're tuned into FM Moradabad 89.6 FM।

एक बार फिर से स्वागत है आपका FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन पर। अभी जो हमने पूछा था शायद कुछ ही लोगों को याद रहा होगा, हम एक बार फिर से बोल देते हैं। जो हमने उस्मान साहब से पूछा था, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे जितना ज़्यादा खींचो वो उतनी ही छोटी हो जाती है। तो हमारे पास मैसेजेस आए हैं लिसनर के। हमारे पास एक मैसेज में ये आया है कि रबर बैंड। नहीं जी, रबर बैंड नहीं है जवाब। शंकर लाल यादव जी और ये हैं लाइन पार मुरादाबाद अहिल्या बाई चौराहा से बता रहे हैं। इन्होंने एक मैसेज कहा है, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया आपने लाइनें लिखी हैं। जवाब मैं आपको दूंगा एक कहते हैं ना इस वाले ब्रेक के बाद दूंगा, मगर उससे पहले कर लेते हैं खूब सारी बातें। तो एक छोटा सा और क्वेश्चन है, आज जरा फिल्मी चल रहा है मौसम है, तो ऐसी कौन सी फिल्म है जिसमें हीरो हीरोइन होते हैं लेकिन कोई डायलॉग नहीं बोलता है? तो ये भी जवाब जो है मैं मैसेज करके बताएं 9837896896 पर। और क्या कभी आपने सोचा है अगर हमारी ज़िंदगी एक फिल्म होती तो उसका टाइटल क्या होता? किसी की ज़िंदगी का नाम होता कुछ तो लोग कहेंगे, किसी का होता मैं अभी बाकी हूँ, किसी का होता ये दिल मांगे मोर, तो और किसी की ज़िंदगी तो शायद होती पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। क्योंकि सच यही है दोस्तों, हम किसी भी उम्र में अपनी कहानी का आखिरी चैप्टर नहीं जानते। आज मुश्किल है, हो सकता है कल बेहतर हो। आज अकेलापन है, हो सकता है कल कोई अपना मिल जाए। तो आज अगर फेलियर है तो हो सकता है वही फेलियर कल आपकी सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी बन जाए। ज़िंदगी की फिल्म में हर सीन ज़रूरी है, कुछ खुशी के कुछ गम के भी ज़रूरी हैं। जो आज कहानी का मुश्किल हिस्सा लगते हैं कल वही यादों के सबसे खूबसूरत किस्से बन जाते हैं। तो दोस्तों अपने करंट सीन को देखकर पूरी फिल्म का फैसला कभी मत लीजिएगा, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। हमारे साथ एक हमारे लिसनर जुड़े थे इशरत साहब, अभी उनकी कॉल हो गई है डिसकनेक्ट, मगर उन्होंने अपनी फरमाइश बता दी थी, तो उनकी फरमाइश का ही गाना अभी हम लगाते हैं। और पूरी उम्मीद करते हैं कि जिस छत पर वो समय टहल रहे हैं वहाँ उन्हें थोड़ी सी ठंडी ठंडी हवा तो मिलती ही रहे। तो मिलते हैं छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद और करते हैं खूब सारी बातें। तब तक पहेलियों के जवाब फटाफट मेरे को कर दीजिए मैसेज, इंतज़ार है आपकी पहेलियों का के जवाब का। और फिर करते हैं लास्ट कॉल जिससे करेंगे खूब सारी बात। तो मिलाइए कॉल और करें दिल से दिल की बात।

0: ना यार।
1: एक बार फिर से स्वागत है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे, आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। तो अब थोड़ा सा मूड बदलते हैं और चलते हैं थोड़ी सी एंटरटेनमेंट की दुनिया में, क्योंकि जब जिंदगी पिक्चर जैसी लगे ना तो फिल्मों और वेब सीरीज़ की बातें तो बनती हैं। कुछ अपडेट्स जो हैं अपनी फिल्मों के भी होते रहने चाहिए। आजकल सिनेमा में सिर्फ कहानी नहीं, एक्सपीरियंस भी बिकता है। बिग स्क्रीन एक्शन, कॉमेडी, थ्रिलर, हॉरर और इमोशंस स्टोरी भी। हर जनरेशन का अपना अपना ऑडियंस है भाई। और फिल्मों के साथ OTT ने तो एंटरटेनमेंट की दुनिया की को और बड़ा कर दिया है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या देखना है, सवाल ये है कि इतना सब है कि आखिर शुरू कहाँ से करें। अभी एक मूवी आज रिलीज हुई है जिन्हें कहते हैं ना हम डांस के सुपरस्टार और कॉकरोच, तो ज़रूर आपको नाम तो अब उनका पता चल ही गया होगा, कुछ तो आप लोगों ने सोचा होगा। उनकी एक मूवी है और उस मूवी का नाम आप हमें मैसेज करें और बताएं कि हाँ आपके अंदर भी थोड़ा बहुत तो फिल्मी कीड़ा है। चलिए तब तक करते हैं अपने एक लिसनर से बात और सुनते हैं उनकी दिल की आज की बात। हेलो नमस्कार, दिल से दिल तक, कैसे हैं आप?
2: बहुत बढ़िया सर, आप सुनाइए।
1: बढ़िया सर, आपके आसपास बहुत आवाज आ रही है थोड़ी सी। जेठालाल जी,
2: नो सर, मैं बिल्कुल टावर पे आ गया।
1: क्या टावर पे ही चढ़ गए क्या आप?
2: बिल्कुल टावर पे चढ़ गया सर।
1: तो क्या कर रहे हैं इस समय, क्या मस्ती हो रही है?
2: अभी मस्ती क्या हो रही है, बस कुछ चल रहा है जिंदगी के, वही गाड़ी चल रही है।
1: तो आज शायरी से शुरुआत कीजिए जेठालाल जी।
2: शायरी?
1: हाँ जी
2: जी, सुनिए सर, शायरी भी
1: सुनाइए सुनाइए।
2: अब किसी से गिला नहीं करते, अब किसी से गिला नहीं करते।
1: हाँ जी,
2: अब किसी से गिला नहीं करते, जख्म दिल के सिला नहीं करते। अब किसी से गिला नहीं करते, जख्म दिल के सिला नहीं करते। जो लकीरों में लिखे ही ना हो वो कभी भी गिला नहीं करते।
1: क्या बात है, क्या बात
2: वो
1: है,
2: कभी मिला नहीं करते सर, जो नसीब में नहीं हो मिला नहीं करते थे, क्या करें।
1: बहुत सही कहा जेठालाल जी। आज हम बात कर रहे हैं कि आपके साथ कभी ऐसा कोई सीन हुआ जो पिक्चर में भी हुआ और आपको भी लगा है कि मेरी जिंदगी में हुआ वो सीन?
2: बिल्कुल हुआ था साहब।
1: कौन सा सीन हुआ था?
2: दो बार हो गया सर।
1: एक बार वाला बता दीजिए, अभी तो हम दूसरी बार वाला दोबारा पूछ लेंगे।
2: जी, ऐसा हुआ था, हम रह रहे थे तो पड़ोस में वो एक जल गई थी।
1: अच्छा। हाँ जी।
2: तो मैंने, आपने भी देखा होगा सर, जैसे आप मुझसे पूछा हो, आपने देखा होगा बहुत से लंबी लंबी छोड़ते हैं सर लोग बार कि मैं किसी की आग में कूद जाऊंगा, ये कर दूंगा कहते हैं।
1: हाँ जी हाँ जी हाँ जी।
2: अब वो साहब वो अंदर जल रही थी कमरे में। अब जन दिसंबर का महीना था, कितना ठंड होती है दिसंबर के महीने में। हम भी थोड़े छोटे ही थे। अब वो साहब मुझे ये लगा कि इन्हें बचाएगा कौन। अब वो मैं साहब जो था वो स्वेटर पहन हुआ था, वो मेरे घुट गया। अब मैं उन्हें बचाऊं तो वो जो है बाहर आ गई थी।
1: अच्छा, जलते
2: मैं, हाँ जलती भी कमरे के बाहर जहाँ मैं गया था, तो मैंने उनकी कॉलिया बदल ली।
1: ओके,
2: ताकि जी इनके आग जो बुझ जाए किसी तरीके से। अब वो आग तो बुझी नहीं, जो उनकी आग की वो जो है मेरे उस पर
1: लपेटे
2: पे लग गई, स्वेटर पे लग गई।
1: अच्छा अच्छा।
2: अब मुझे फिर जब वो उठाया तो मैंने कहा ये तो ऐसा है, ये तो फिर मैं भी जल जाऊंगा, मुझे कौन बचाएगा। तो सर मैंने जो था ना उन्हें जो है तो मैंने सर जी उन्हें जो है फिर भी आग सब बुझाई सर, और उन्हें लेके मैं चल पड़ा।
1: क्या बात है।
2: अब ये देखिए आज के मैं ये देखता हूँ कि लंबी लंबी सब छोड़ते हैं, कोई नहीं गया मेरे साथ
1: सर,
2: अकेले लेके चला गया उन्हें।
1: सर आजकल के समय में तो अगर ऐसा कोई इंसिडेंट हो रहा होता ना तो कोई फट से कैमरा निकल जाता है और वीडियो बननी चालू हो जाती है, बचाने का तो बाद में सोचता है इंसान।
2: नहीं नहीं सर, मैं तो सोचता हूँ मैं भी जान चले जाए मगर कोई बच जाए।
1: आपने जिस तरीके से इंसिडेंट सुनाया उसमें ना, एक बार हमने भी सुना है कि संजय दत्त के जो फादर हैं सुनील दत्त साहब ने नरगिस जी को एक बार शूटिंग के समय में ऐसे ही बताया था, हाँ मदर इंडिया की शूटिंग के समय में अपनी जान पे बिना परवाह करे वो भी एकदम कूद गए थे बचाने के लिए।
2: जी जी जी जी।
1: तो चलिए बहुत
2: महके तक में ये वाली बात पहुंच गई थी।
1: हाँ जी हाँ जी। अच्छा
2: तो हाँ तो उनके महके में रिश्तेदार थी हमारी जान पहचान थी, तो वहाँ से भी जो खबर आई बोले वो लड़का जो उनने जान बचा लिया था।
1: चलिए साहब ये तो बहुत ही अच्छा, मतलब आपके साथ भी एक फिल्मी सीन हो चुका है, इंसिडेंट आपने एकदम स्टंट मैन की तरह बहुत ही बढ़िया काम किया, एक जान बचाई और बहुत ही अच्छा काम
2: किया। बेकार है जब तक किसी काम में नहीं आया सर।
1: क्या बात कही आपने जेठालाल जी। तो कौन सा गाना सुनेंगे इसी बारे में आज?
2: भाई उसका गाना है सर अर्पण फिल्म का, मोहब्बत अब तिजारत बन गई है, तिजारत अब मोहब्बत बन गई है।
1: ठीक है साहब, जरूर जरूर ये भी फिल्म आ जाएगा। बहुत अच्छा लगा आज आपसे कॉल करी।
2: ओके सर, और जरा हमारा भी ध्यान रखना सर।
1: हाँ सर आपका भी ध्यान रखेंगे सर बिल्कुल।
2: हाँ पता ऐसा मत ध्यान रखना, आप कभी फोन करो बोले कहाँ हो, अब फोन नहीं उठा वो खुद ही
1: उठ गए। नहीं नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं होगा जेठालाल जी, और आप ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और सभी को हंसाते रहिए, बहुत ही अच्छा लगता है। धन्यवाद।
2: नमस्ते सर।
1: नमस्ते, शुभ रात्रि। तो श्रोताओं ये थे हमारे साथ जेठालाल जी, जिन्होंने बताया कि उनके साथ भी एक ऐसी फिल्मी सीन हो चुका है और आग की लपेटों में घिरी हुई उनके पड़ोस में जो भाभी थी उन्होंने उसे बचाया, और कहते हैं ना जहाँ लोग सोचते हैं वहाँ इतनी देर में ये पहुँच गए, और अपने आप को भी एक बार को तो उन्होंने भी सोचा कि शायद मैं भी इस आग में ज़्यादा कहीं जल ना जाऊँ, मगर तब भी बिना सोचे समझे ये उनको बचाने के लिए दौड़ पड़े। तो कोई ना कोई मैं कहता हूँ ना फिल्मी सीन आपके साथ ज़रूर घटता है, और अगर ऐसा कुछ घटा है तो बताओ ना साहब, हम हैं तो आज सुनने के लिए आपके लिए। 9837896896 पे। तब तक सुनते हैं इनका ये फेवरेट गाना और आते हैं इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। तो देखते हैं कौन है हमारा लास्ट लकी कॉलर जिससे हम करेंगे बात और कुछ करेंगे थोड़ी सी मस्ती भी। पहली का जवाब जो पहली वाली है ना, उसका जवाब है सिगरेट। जितना आप खींचो उतनी ही वो छोटी हो जाती, मगर भाई साहब पीनी नहीं है बिल्कुल, धूम्रपान जो है ना सेहत के लिए हानिकारक है। इसे लीजिए थोड़ा सा, बढ़िया सा गाना सुनते हैं, उसके बाद करते हैं खूब सारी दिल की बातें।

0: एक बार फिर से स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। कहते हैं ना, हंसते रहो तो ज़िंदगी आसान लगती है, रोते रहो तो हर राह वीरान लगती है। कहानी वही है, किरदार वही है, बस नज़र बदलो तो ज़िंदगी शानदार लगती है। हमारे पास मैसेज आया हमारे लिसनर पूजा जी का। कहती हैं, मेरी ज़िंदगी कॉमेडी फिल्म जैसी है, प्रॉब्लम्स आती हैं और मैं हंसकर निकल जाती हूँ। क्या बात है पूजा जी, यही तो आपने एकदम आज असली हीरो वाली बात कह दी है कि प्रॉब्लम्स कैसी भी आ रही हो, कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, बगल में लोन वाला क्यों ना खड़ा हो आपके पास आके, मगर हंसते रहो वो खुद ही निकल जाएगा साहब। क्योंकि ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं आएगी तो ऐसा तो कोई प्रॉमिस कर ही नहीं सकता, लेकिन प्रॉब्लम के सामने हमारा एटीट्यूड कैसा होगा ये हम ज़रूर तय कर सकते हैं। हमारे पास एक लिसनर हैं जो इस समय लाइन पे हैं, चलिए उनसे भी कुछ बातें करते हैं। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संग, कैसे हैं आप, क्या नाम है आपका? धैर्य जी, कैसे हैं आप? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, क्या कर रहे हैं इस समय?
1: बस सोने की तैयारी कर रहे हैं।
0: सोने की तैयारी कर रहे हो आप?
1: हाँ।
0: सोने की तैयारी कैसे करते हैं जरा सबको बताओ। सही है, तो सुबह सुबह उठ के वापस अपनी बेडशीट को प्रेस भी करते हो, मतलब अपनी तय बना के रखते हो, नहीं रखते हो? हाँ, इसका मतलब तो हर बार ऐसे ही रख देते हो। कभी कभी जब मम्मी पापा की नजर पहुंच जाती होगी ना, कह देते होंगे हाँ भी धैर्य क्यों नहीं अपनी चादर की तय बनाई, तभी लगती होगी तय, है ना। तो बताओ, आज तुम्हारे साथ कौन सा ऐसा फिल्मी हुआ है जो हमारे साथ शेयर करना चाहोगे?
1: पंजाब जा रहे थे तो हम लोग दिल्ली से थे। एकदम सामने सामने से मुंह बनता है, एक लेडीज कुंसी चेन्नई जा रही थी, वो पता नहीं कुंसी उस एक्सप्रेस से, तो वो एकदम सीढ़ी की जैसे उतरता नहीं है, आगे करके उतर रही थी और वो ट्रेन थोड़ी रफ्तार में आ गई थी, तो एकदम से वो उसका पैर एकदम से वो खिस गया उसमें वैक्यूम में।
0: अच्छा जी,
1: तो एकदम से शुक्र बनाओ भगवान जी की कृपा से वो बच गए, तो लोगों ने एकदम से खींच लिया उन्हें।
0: तो ये बिल्कुल एकदम एक फिल्मी सीन आपकी आंखों के सामने हो गया सारा।

0: चलो कम से कम लाइफ तो सेव हुई, बचा तो लिया लोगों ने। अभी आज थोड़े समय पहले एक रील भी ऐसी वायरल हुई थी कि एक स्टेशन पे एक लेडीज जो थी वो ट्रेन चलती हुई ट्रेन पे चढ़ने की कोशिश कर रही थी, उनका पैर स्लिप हुआ और वो एकदम ट्रेन के पास पहिए के पास मतलब उस गैप के बीच में फंस गई। तभी एक पुलिस वाला था वहाँ पे जो जीआरपी का रहते हैं पुलिस वाले, उनकी नज़र में आया और वो भाग के मतलब उसने भी बहुत ही फुर्ती के साथ उन्होंने अपनी वो कहते हैं ना एक्टिवनेस दिखाई और उस लड़की को खींच लिया, उस लेडीज़ को वहाँ से खींच लिया और उन्हें उसके लिए एक कहते हैं वहाँ पे इनाम भी दिया उनकी इस तेज फुर्ती के लिए। मतलब इतना साहसी काम किया कि क्योंकि चलती हुई जो ट्रेन होती है जब वो स्पीड पकड़ रही होती है और आपके पास प्लेटफॉर्म में बहुत कम गैप होता है तो कभी ऐसा रिस्क वैसे भी नहीं लेना चाहिए कि ट्रेन में भाई चलती हुई ट्रेन में चढ़ो। हर कोई जो है ना मतलब उस समय शाहरुख खान और काजोल बनने की कोशिश करता है मगर वो प्लीज़ ना बने तो ज़्यादा ही अच्छा है। समय से पहले पहुंच जाए, भले ही ट्रेन लेट हो जाए मगर आप अपने समय से पहले पहुंच जाए। तो बहुत ही बढ़िया धैर्य, आपने अपनी बात शेयर करी और हमें अच्छा लगा। तो अब आप भी समय से सो जाओ जिससे कल सुबह समय से उठो, समय से चादर तय करो और फिर अपनी तैयारी करके स्कूल पहुँचो। ठीक है, आपके लिए एक बढ़िया सा गाना मैं लगाता हूँ। बाय बाय, गुड नाइट। तो श्रोताओं हमारे साथ जुड़े थे धैर्य जो अब सोने की तैयारी में थे क्योंकि कल सुबह उन्हें टाइम से स्कूल जाना है और उन्होंने बहुत जो कहते हैं ना जो फिल्मी इंसिडेंट होते हैं जो आपकी आंखों के सामने किसी फिल्म के द्वारा आपको एकदम बैठ जाते हैं, वैसे ही इंसिडेंट अगर आपके साथ रियल लाइफ में आंखों के सामने हो जाए तो वो तो और भी आपको इफेक्ट करता है। तो ये जो उन्होंने सीन बताया जिस पे हमारी बात हुई वो सच में हो जाता है कभी कभी। अगर आप ट्रेन पे हम खुद ही नोटिस करते हैं, हम कभी स्टेशन पे लेट पहुंचते हैं और हमारे सामने से अगर वो ट्रेन जा रही होती है तो पहली कोशिश ये रहती है कि कैसे भी करके कोई भी एक खाली डब्बा देखो जिसका दरवाज़ा खुला हुआ है और फटाफट उसमें घुसने की कोशिश करो, मगर ये रिस्क ना लें साहब, समय से पहुँचें और कोशिश करें कि समय पर सीट भी मिल जाए। तो चलिए आज के लिए कहते हैं ये हमारा जो टॉपिक था बहुत ही एकदम फिल्मी रहा, पूरी सारी फिल्मी बातें अपनी अपनी याद आई, किसी ने अपनी जान पे खेल के किसी को आग की लपटों से बचाया और किसी ने ट्रेन का इंसिडेंट बताया। तो कहते हैं ना पूरी घूम फिर के जो रियल लाइफ और रियल लाइफ है आपके आसपास ही रहती है। एक फाइनल शायरी जाने से पहले इस आज के इस शो में, कुछ सीन जिंदगी ने खुद लिखे हैं, कुछ हमने अपनी मर्जी से चुने हैं, कुछ किरदार रास्ते में छूट गए, कुछ हमेशा के लिए दिल में बस गए। फिल्म अभी ख़त्म नहीं हुई है दोस्तों, अभी तो ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत सीन आने बाकी हैं। तो मैं हूं आपका अखिल और आप सुन रहे थे दिल से दिल तक अखिल सिंह। कल फिर मिलेंगे नई बातों नई कहानियों के साथ, कुछ नए टॉपिक्स के साथ और कुछ नई शायरी के साथ। हमारे पास शायरियों का तो साफ पिटारा है जेठालाल जी और उस्मान जी, जब भी हमसे रूबरू होते हैं तो कुछ ना कुछ बढ़िया सी शायरी सुनाई जाते हैं। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, अपनों का ख्याल रखिए और हाँ याद रखिए ज़िंदगी अगर पिक्चर है ना तो आप उसके हीरो हैं। तो धैर्य आपके लिए भी प्यारा सा सॉन्ग और हम सभी पूरे सारे श्रोताओं के लिए भी बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग और कल फिर मिलते हैं आपका ये अखिल ठीक 9 बजे सोमवार को। कल हम करेंगे थोड़ी सी मस्ती, हमारे साथ एक गेस्ट होंगे स्पेशल गेस्ट, गेस करेंगे कि कौन है बताइएगा, मैसेज करिएगा, आप भी उनकी शायरी सुनते रहते हैं। और जो लास्ट वाली पहेली थी ना कि वो कौन सी मूवी है जिसमें हीरो हीरोइन बिल्कुल बिना बोले पूरी पिक्चर कर देते हैं, वो है साहब साइलेंट पिक्चर। हाँ जी, जिसमें किसी डायलॉग की ज़रूरत ही नहीं, सिर्फ इशारों से ही वो पूरी पिक्चर हो जाती। तो चलिए इशारे आप भी करिए आराम से अब सोने वाले। तो मिलते हैं आपको सोमवार को अखिल के साथ दिल से दिल तक में।
1: तेरे जाप के बिना चले ये सांस
2: और मंजूर खींच ले अब दिल।

0: पांडवों ने पश्चाताप के लिए तप किया था महाभारत युद्ध के बाद। अब भोलेनाथ भैंस के रूप में थे जब भीम ने उनको आगे पकड़ लिया। अब उनका सर वो नेपाल में और धड़ी आ रही है। जय साहब।
1: जय हिंद।
0: बस दो 7 किलोमीटर हो गया, 7 किलोमीटर बाकी।
2: अरे किस माटी का बना है, सकता नहीं तू।
0: महादेव की बूटी खा रखी है।
2: अरे टहल टहल के हमें थाली में ना फेंक दे।
3: रहेगी तेरी आस्था क्या समय।
0: राधा राधा दो बोल गया रुस्तम।
3: दोनों में तेरी महानता महानता।
2: अब इधर किधर चल दिए।
0: अरे तो इधर अपना इलाका है, चाय पानी मौसम नहीं।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: Hey, you're tuning to FM Moradabad 89.6 FM.

जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सांसें सही, जिंदगी सही।

जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।

आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन की मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।